0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सुप्रभात आप सभी लोगों को। सबसे पहले हम स्थानीय स्तर की बात करते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आने वाले युवाओं और किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे के प्रति चेतावनी दी है। सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कानून को और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत जुर्माना और जेल की सजा दोनों बढ़ाई जाएंगी। ट्रेड यूनियन जगत ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे श्रमिकों की अभिव्यक्ति और विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने बजट बहस के दौरान वर्ष 2026-2027 के लिए कानूनी सुधारों और संविधान के आधुनिकीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि अब ब्रिटिश संसद की मंजूरी का इंतजार है। शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा एक बार फिर ब्रिटेन में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। ग्रेट ब्रिटिश पीएससी ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एल कॉन्स से मॉरिशस को शागो सौंपने से पहले जनमत संग्रह और समझौते की वित्तीय शर्तों पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा। उभरती और दोबारा फैलने वाली बीमारियों के खतरे को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया है। मॉरिशस में आज क्षेत्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और साझा रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक कैंपस स्थापित करने की मांग उठी है। वहीं बजट में 2220 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति और चिकित्सा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई है। और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में मॉरिशस ने अपनी विशेषज्ञता अफ्रीकी देशों के साथ साझा की है। अध्ययन दौरे पर आए प्रतिनिधियों ने संपत्ति घोषणा प्रणाली और वित्तीय निगरानी

0: तंत्र का अवलोकन किया है। और इस्लामी नववर्ष 1448 के दसवें दिन मुसलमान यौम अशूरा मना रहे हैं, जो इस्लाम के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हुए श्रद्धालु इबादत और दुआओं में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में राजधानी काराकास के निकट आए दो शक्तिशाली भूकंपों में कम से कम 188 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं कई देशों ने सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल आम हालत, दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल हमारे इलाके पर अस्थिर बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर सुबह के समय बादल घिर आएंगे और वर्षा होती रहेगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल भी गरजेंगे। चंद इलाकों में कोहरे छाएंगे और दृश्यता कम होगी। दिन के दौरान बारिश कम होगी पर ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होती रहेगी। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और दक्षिण पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, विशेषकर बारिश के समय। प्रवाह रेखा के पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण की ओर से 3 मीटर की लहरें उठेंगी। खुले समुद्र में विशेषकर दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। दिन के दौरान बाद में समुद्र में सुधार आएगा। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे जनता को सलाह दी जाती है कि आप घर के अंदर रहें, खुले मैदानों में तथा समुद्र में न निकलें और पेड़ों के नीचे भी पना न लें। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर।
1: RM3 रेडियो।

0: मुअज़्ज़ज़ सामईन, यौम आशुरा को इमाम आली वक़ार हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाहु तआला की शहादत हुई। ये वो लम्हा था जब तारीख ने अपने सबसे दर्दनाक मगर सबसे रोशन हकीकत को अपने सीने में महफूज किया। करबला की ज़मीन महज एक मैदान न था बल्कि एक ऐसा आईना बन गया जिसमें कयामत तक हक और बातिल के फ़र्क को महसूस किया जाता रहेगा। सलाम हो इमाम हुसैन रदी अल्लाहु तआला अन पर, सलाम हो उनकी इस्तकामत पर, सलाम हो उनके सब्र पर और सलाम हो उस पैगाम पर जो रहती दुनिया तक हक के मुतलाशियों के लिए मशगले राहे।
1: बिल्कुल गलत लिखा हुआ तारीख में है ये।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, वाक़िया करबला 61 हिजरी को माह मुहर्रमुल हराम में पेश आया, मगर आज कई सदियां गुजर जाने के बाद भी उसकी याद दिलों में तरोताज़ा है। शहदाए करबला की शानदार और बेमिसाल कुर्बानियों का तज़किरा सुनकर दिलों पर सोज की कैफियत तारी हो जाती है। और क्यों ना हो, फर्जिंद रसूल हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन और उनके जानिसारों ने दीन की सरबुलंदी की खातिर राह खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।

0: सामईन कराम, आशुरा के दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए। आशुरा की रात दुआएं कबूल होती हैं। आशुरा एक ऐसा मुकद्दस दिन होता है कि इंसान तो इंसान, चरिंद तो परिंद, हत्ता के वहशी जानवर भी इस दिन का एहतराम करते हैं और इस दिन की ताज़ीम करते हुए रोज़े रखते हैं। सामईन, यौम आशुरा के मुकद्दस मौके पर आइए जामा मस्जिद पोटलुई के खतीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामद बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक ईमान अफरोज खताब समात करते हैं।
1: نحمدللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفی وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الازکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم ہمارا آج کا عنوان ہے

0: अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती है तो उसकी आजमाइश भी होती है, आजमाइश में फिर तकालीफ भी आती हैं, मसाइब भी आते हैं। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु को भी इस तरह के मुसीबतों का सामना हुआ, चैलेंजेस आए, और सबसे ज़्यादा फिर सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को फिर वाकया करबला रूनुमा हुआ, अहले बैत की सहाबा की उसमें शहादतें हुई, अहले बैत और सहाबा के बच्चों की शहादतें हुई, फिर आप शहीद हुए और वो अजीम शहादत नसीब हुई कि आपके सर अनवर को आपके बदने अतहर से अलग किया गया, बदने आपके बदने अतहर से उसको जुदा किया गया, फिर नेज़ों पे आपके सर मुबारक को चढ़ाया गया, गलियों में जुलूस निकाले गए, अहले बैत पर जुल्म हुए, सितम हुए, लेकिन नाम बाकी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, इसलिए कि मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपका पैगाम पैगाम ईमान है, आपका पैगाम पैगाम तकवा है, आपका पैगाम पैगाम हक है, पैगाम सब्र है, और यही नए साल का पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के लिए। ईमान, अमल सालेह, तकवा, परहेज़गारी और हक पर इस्तेकामत, सब्र और ज़िक्र, इसको अपनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको दोनों जहां की कामयाबी अता फरमाएगा। और सबको आला हज़रत ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनका इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आना, फिर करबला में ये क़ुरबानियाँ, ये शहादतें, ये तकालीफ बर्दाश्त करना, ये सब उसकी रज़ा के लिए था। अल्लाह ने उनसे वो काम लिए जिनसे अल्लाह भी राज़ी, उसके हबीब भी राज़ी। इसलिए सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, उसका सिला अल्लाह पाक ने दुनिया में भी दिया और इंशाअल्लाह आखिरत में भी। अल्लाह का अजीम इनाम उनके लिए है। अल्लाह पाक हमें उनके नक्श कदम पे चल कर दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।
1: मुअज़्ज़ज़ सामईन, उर्दू प्रोग्राम सबा अल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आपका खैर मकदम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले आपने जामा मस्जिद पोटलवी के खतीब व इमाम मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामद बरकातुहु मालिया का खताब समात फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सामईन, अब ये नाज शरीफ मुलायजा फरमाइए।

सामईन ज़ीवकार, यौम आशुरा को अम्बिया कराम से खुसूसी निस्बत हासिल है। यौम आशुरा को हज़रत सैदना मूसा कलीमुल्ला अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई गई। उसी दिन हज़रत सैदना नूह अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। ये हज़रत सैदना आदम अलैहिस्सलाम की कबूलियत तौबा का दिन है। यौम आशुरा ही को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए।

मोहतरम सामईन, आशुरा के दिन हज़रत सैदना ईसा रूहुल्ला अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उसी दिन आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। आशुरा ही के दिन हज़रत सैदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। यौम आशुरा ही को हज़रत सैदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। उसी रोज़ अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत सैदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश दूर फरमाई और उसी दिन को हज़रत सैदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत हासिल हुई।

सजदे तो सब ने किए, तेरा नया अंदाज था। सजदे तो सब ने किए, तेरा नया अंदाज था। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज था। मोहतरम सामईन, इसी शेर के साथ हमारी आज की सबाल खैर नशरियात अख्तताम पजीर होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मुख्तसर से वक्त में आशुरा के वाकयात और उसके अजीम पैगाम को समझने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह तबारक व ताला हमें आशुरा के फ्यूज़ व बरकात से मालामाल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व रियाजत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सामईन, आपका मेज़बान निसार अख्तर अब इजाज़त का तलबगार है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। पर वादा है कि अगले जुम्मे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

में शक्ति। प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। कहते हैं कि मनुष्य के मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं होती हैं जिनका त्याग हमें करना चाहिए, और तभी ये संभव है जब हम भक्ति में लीन होते हैं, जब हम परमात्मा को पूजते हैं, आराधना करते हैं भक्ति और आस्था के साथ। आइए इसे विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना के साथ।

शुक्रवार माता रानी को समर्पित है और कहा जाता है कि वह शक्ति का स्वरूप है। जिसने भी माता रानी को पूजा है पूरे तन मन से, उनकी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर रहती है। किसी न किसी रूप में अवश्य अवतरित होकर आपकी सहायता अवश्य करेगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी।

क्यों कहा जाता है कि भक्ति में इतनी शक्ति है? क्योंकि जब भी हम परमात्मा का नाम जपते हैं तो हमारे सभी विघ्न हट जाते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ हम भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। आशा है आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को प्रणाम और शुभ दिन।

睡前问

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से आशिता आपको नमस्कार
1: नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में आने वाले युवाओं तथा किशोरों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है हर आंकड़े के पीछे एक परेशान किशोर संघर्ष कर रहा एक परिवार और जोखिम में पड़ा एक भविष्य छिपा हुआ है नशीले पदार्थों की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उसके सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी गंभीर

असर डालती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के अवसर पर रोकथाम दिवस के अवसर पर जागरूकता, रोकथाम, समय पर उपचार और परिवार तथा समुदाय के योगदान के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। मौसम के बारे में बात करें, पूर्व से आने वाले बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है और यदि बारिश के बारे में बात करें तो पिछले 24 घंटों में विशेषकर सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच आज बगातेल में 45 मिलीमीटर, पोविदांस में 50 मिलीमीटर, वाकुआ में 33, वुटन में 36 मिलीमीटर बारिश हुई है। सेंट्रल प्लेटों पर ज़्यादा बारिश हुई है, जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर पानी जमा होने का खतरा बना रहेगा और बादल के गरजने की भी संभावना रहेगी। शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा ब्रिटेन में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रेट ब्रिटिश यानी कि पॉलिटिकल एक्शन कमिटी PAC की चीफ एग्जीक्यूटिव क्लेयर बुलिवान ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एल कॉन्स को पत्र लिखकर शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर उनका पक्ष जानने की मांग की है। एल कॉन्स ने हाल ही में ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। गत 13 जून को द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक लेख में एल कॉन्स ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटेन को अपनी शासन व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। क्लेयर बुलिवान ने अपने पत्र में ये भी पूछा है कि शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता के किसी भी हस्तांतरण से पहले क्या शागोस वासियों को जनमत संग्रह का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने समझौते के तहत प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों की उपयुक्तताओं पर भी सवाल उठाया। नर्सिंग के बारे में बात करें, नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादिक का कहना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय की आवश्यकता बन गई है। उनके अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में जून महीने की अभूतपूर्व लू और भीषण गर्मी का दौर आज भी जारी है। मध्य दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के लिए रेड एक्सट्रीम हीट चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने वहां ने अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ने और बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी जताई है। और अंत में वेनेजुएला के बारे में बात करें, वहां के राजधानी काराकास के निकट आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4,300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राजधानी काराकास और तटीय शहर में ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे फंसे लोगों की मदद की पुकार सुनाई दे रही है। आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं जबकि कई लोग क्षतिग्रस्त और असुरक्षित इमारतों में लौटने के बजाय सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ में सुन पाएंगे शोक समाचार। एवेन्यू दे रोजिये सैरेमी फ्लाक में 82 साल के 82 years old के श्री कोलांडे पानिकेन जिन्हें राजन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर सैरेमी फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 2 PM। रिवरव्यू लेन वेदर में 75 साल के 75 years old के श्री राजेश्वरन पीले नालातोंबी जिन्हें इंदिरन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सेवा क्योंवादी नालातोंबी के घर वेदर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपियक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। रॉयल रूट प्लेन दिगोश में 60 साल के 60 years old के श्री ननराज सिंह दीनू जिन्हें पोम्पे के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर प्लेन दिगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोलिक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Retro. Center 95.5. North, South 95.6. 95.6. East, West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 12:07 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। ये रेडियो मनोरंजन है, वैसे आपका भरपूर मनोरंजन होने वाला है इस समय से दोपहर के 2 बजे तक। तो चलिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब आप सभी सुनने वालों को। आज का जो कार्यक्रम थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम आपको ले जाएंगे मौसलमा सेंट आंद्रे कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पर एमबीसी की एक पूरी टीम वहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो कुछ ही घड़ी में उनसे हम मिलेंगे, स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है। तब तक ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं।

0: तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत आप सभी सुनने वालों के नाम मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में। चलिए हम आपको ले जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, आज का जो प्रोग्राम जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। हम आपको ले जाएंगे मौसलमा सैंत कम्युनिटी सेंटर, और वहाँ पे हमारा जो है एमबीसी की एक टीम है, तो चलिए उनसे मिलते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। हेलो
1: हेलो, नमस्कार रोशनी और M3 रेडियो मनोरंजन के जितने भी हमारे लिसनर्स हमको सुन रहे हैं, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने कहा रोशनी, यहाँ पर हम हमेशा हर महीने के जो आखिरी लगभग आखिरी जो फ्राइडे होते हैं, शुक्रवार, हम लोग निकलते हैं अपने, हमारे जो अपने होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे हम भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल है। और हमेशा अकेले तो जाते नहीं, हमारी पूरी रेडियो टीम हमारे साथ है, और हमारे साथ इस वक्त है उषा और गिरिशा।
2: आप सबको, और आप जो सुन रहे हैं हमें इस समय घर पर, तो आपको याद दिलाने के सुहाना सफ़र कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यहाँ पर मौसलमा सैंत एंद्रे, और ये कार्यक्रम लाइव चलेगा अभी से और 2 बजे तक, तो आप भी साथ दीजिएगा। और यहाँ पर गिनिशा भी है।
3: गुड आफ्टरनून जी, नमस्ते, प्रणाम सभी को, कैसे हैं सभी लोग, सब ठीक है? अरे ज़ोर से बोलो, आप ठीक हो? और भी ज़ोर से बोलो, कैसे हो? हाय हाय, अब तो आवाज़ आ गई हमारे प्यारे प्यारे लेडीज़ के। तो आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन रेडियो मनोरंजन, और जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमें लाइव देखें ऑन लाइव टिकटॉक, यानी कि R&3 रेडियो मनोरंजन का जो पेज है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर ये जो पूरा का पूरा शो है आप उसको लाइव देख पाओगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल, हम आज आए हुए हैं आज मौसलमा सैंत एंद्रे, लेकिन ख़ास तौर से मौसलमा सैंत एंद्रे कम्युनिटी सेंटर, और हाइचा पर इतना जोली जोली साड़ी पहनते हुए हमने के चाची दादी लोग चौचक लगा हवन जा, चाचा लोग भी हवन जा, तो सब कोई के हम की स्वागत करत है जा, है जा परी 2 घंटा के एगो प्रोग्राम खाली तोहर खातिर है। और अग्निशा और उषा, हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम करने आए हैं, जो सबसे पहले प्रभु का नाम लेंगे।
3: बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं,
1: तो चलिए सबसे पहले गणेश वंदना है देव नारायण राय सभा और शारदा रामायण मंडली मौसलमा सैंत एंद्रे से।

धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को। और ताली की गूंज कम है, हमें और ज़्यादा चाहिए क्योंकि वहाँ पर रेडियो पर सब आपको सुन रहे हैं इस समय। और जितना आप ताली बजाएंगे उतना ही ये कार्यक्रम और खूबसूरत हो जाएगा। और यहाँ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे देनारायण राय,

0: सभा और शारदा रामायण मंडली मोसेमो सैतौंद्रे को। और हमने सुना कि यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं, एक एक करके यहाँ पर आकर परफॉर्म करेंगे। और अभी के लिए हम स्वागत करना चाहेंगे रिद्धि सिद्धि रामायण मंडली ऑफ मोसेमो सैतौंद्रे, जो एक भक्ति गीत हमारे लिए पेश करेंगे।
1: यहाँ पर हम जब आए थे ना, परसों आए थे, आज भी आए हैं उषा, यहाँ पर इतने सारे कलाकार हैं। देखो, हमने सेलिब्रेट किया 21 जून को म्यूज़िक डे, आज भी ये जो म्यूज़िक डे है इसको हम जारी रख रहे हैं, क्योंकि संगीत जो होता है वो हम रोज़ हर सुबह शाम हर वक्त हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं उन्होंने गिनिशा, यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना, इतने सारे प्रोग्राम्स उन्होंने तैयारी की है, गान है, नृत्य है, गीत गवाए, और भी जो हमारे जो लोकप्रिय पारंपरिक जो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी,
2: देखना है
1: देख, जितने भी लोग टिकटॉक पर,
2: जितने भी हमारे ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ पे मौजूद हैं, एक्सक्यूज मी मैडम जी, प्लीज थोड़ा धीरे बोल दीजिए, क्योंकि दिस ये जो शो है ना, ये अभी लाइव चल रहा है हमारे रेडियो पर और हमारे टिकटॉक पेज पर, सो प्लीज थोड़ा धीरे बोल दीजिए।
1: तो बस यहाँ पर हमारे जो अगले मंडली हैं रिद्धि सिद्धि रामायण मंडली मोसेमो सैतौंद्रे से एक और यानी कि भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। चाची लोग, अच्छा हुआ जा, मजा हुआ था। अभी तो शुरुआत हमने कर ले ली सर, एगो गणेश वंदना हो गल, प्रभु का नाम लेके हमने आगे बढ़त है, जब तो सब कुछ अच्छा वे हो। चाची के देखा है जब अरे जोली जोली लहंगा पहन के, टीका पहन के, बार में रोज सब डाल के आए हवन का होल हाथ के हो। अरे बाप रे बाप, तो चल पाफी नए हर जो तालाबों में तोहर ई कबो खत्म न हो, तो ऐसने हमने के संगे जुड़ल रहिया। और जितनी भी हमारे श्रोता है इस वक्त रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं, जी हाँ, दो घंटों का सफ़र है, सुनहरा ये जो है सफ़र, सुहाना सफ़र हमारे अपनों के साथ। और आज हम आए हुए हैं एट मोसेमो सैतौंद्रे कम्युनिटी सेंटर, और जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग लाइव हैं रेडियो पर, और लाइव जितने भी हमने के चाची लोग अभी बजाइयान जब ढोलोक तनि सुन सुनत हुआ, जब हमने के श्रोता अभी सकेला तनि सनी सुनत हुआ, पाछे अभी सेटिंग करत हुआ जा आई गुलाई को वो गिनिशा, एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, चलिए अच्छा लग रहा है कि हमारी संस्कृति को वो लोग अभी भी जीवित रख रहे हैं। और गीत गवा हो चौटा, चौटा के बारे में ढेर जाना हबी सकेला भूल गए लंजा, तो हबी देखब सुनब टिकटॉक पर देखब और सुनब इसके बारे में।
2: एक चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
1: क्या हुआ?
2: ऐसे बैठ के देख रहे हैं ना जैसे टीवी देख रहे हैं ये लोग,
1: हमको टीवी पर देखते हैं, हमको तो लगा
2: अभी
1: हम टीवी
2: अभी
1: पर है।
2: लाइव है ना, आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, मुस्कुराइए, और जब हम कहेंगे ना कि जोरदार तालियां, तो जोरदार तालियां हो जाए, तो हम ये जो हमारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो लेडीज़ हैं, जो मिसेज मोसेमो सैतौंद्रे हैं, उनके लिए जब जोरदार तालियां, चिल्लाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो चलना करना चाहिए ना।
0: और वैसे गिनिशा,
2: हाँ जी,
0: जो लोग टिकटॉक लाइव देख रहे हैं वो सोच रहे काश हम भी वहाँ होते।
2: बिल्कुल जी,
0: और आप लोग यहाँ पर हैं,
2: यू वोंट बिलीव, बहुत सारे लोग जो हैं जो मुझे जानते हैं मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोग मेरे यहाँ पे हो, मोसेमो सैतौंद्रे में हो? बिल्कुल जी, कम्युनिटी सेंटर में आप सभी लोगों को हम बता रहे हैं, अगर आप पास में हो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो हमारे खूबसूरत खूबसूरत लेडीज, चलिए अगर आप तैयार हो तो थोड़ा सा शोर मचा दीजिए। आप लोग तैयार हो नाचने के लिए, झूमने के लिए, गाएंगे? तो चलिए तैयार है नीटू,
0: तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं।
1: चलिए तालियों के साथ और रिद्धि सिद्धि रामायण मंडली मोसेमो सैतौंद्रे संगे हमने के ढोलक चिमटा सब पारे उगाला सा, तो चला स्वागत करी ला जा आप लोगन के।

0: तो शैले जी जोरदार तालियां हो जाए या हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत लेडीज के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि सिद्धि रामायण मंडली के, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे गिनीशा जौटा, जानेला कौन चीह जौटा?
0: नहीं जाने लगे,
1: नहीं जानेला,
0: नहीं।
1: अभी देखबा कौन चीह जौटा, तो हर पाछे देखा। जितने भी लोग शायद इस वक्त हमें देख रहे टिकटॉक पर, हैजा परी जौटा, हैजा परी देखा हमके लौकता घाम बाते चावल बाते तरी सुन भुंजल जन दाल बाते और कौन सी बातें लौची बाते हाय हाँ जौटा हाय जन होसवा बाते। आगे हमने के दादा दादी लोग ऐसे पिसत रंज ऐसे जोर लगा के हाय या हरी बाप रे बाप हबी लेक जोश बहावर में चला। यह जौटा, जौटा क्या है? आज की जो हमारी जनरेशन है शायद उन लोगों को पता नहीं है। आगे जैसे कि मैंने कहा वो लोग पीस रहे थे,
0: मतलब कि पीसना
1: लोढ़ा सिल जैसे कहते। आज तो बहुत ही मशीन है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आगे हमने के दादा दादी लोग जब आ रहा
0: रोजकारी और बाबा रोजकारी
1: रोजकारी बाबा रोजकारी ई रोजकारी नहीं है, एक बोलल जला जौटा।
0: अच्छा,
1: तब आप पकड़ेंगे इसमें, अरे बाप रे,
0: अरे बड़े जोर लगाना पड़ता है बहन, मैंने कोशिश की है।
1: चले हम बाद में कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर जो हमारी मंडली है वो लोग तैयार हो रही है। तो मोसलमों से तौगे कम्युनिटी सेंटर की हमारी जो प्रधाना है श्रीमती उमा बसगित, हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमको मौका दिला और हैजा परी आके हमने के टीम के तनी सुन अपन बारे में बताओ और हबी जौटा जन बातें दादी चाची लोग करियन सा जौटा कौन चीह जितना जना तोहरा सुनत होवन सकेला जन जिने सुसब होवन जन नहीं जाने लन कौन चीह जौटा एकर जन महत्व कौन चीह और हबी चाची दादी लोग कौन ची करियन जा।
2: हाँ, जौटा जो है सब कोई कोई जानेला कोई नहीं जानेला, लेकिन हमने के पूर्वज जब आ रहन जा तक कौन चीज ले ले आ रहन जा, अपन संगे वो गठरी ले ले आ रहन जा, थोड़ा बहुत अपन चबेना खाई पिए के थोड़ा चीज ले ले आ रहन जा हुआ पर ही, तो कैसे खैन जा तो एक है जौटा है एकर संगे पीसा तलन जा। सात गो चीज रहेला एकर में चना चाउर मटर लाची मकई तो ई सब पीस के सतुआ बनावल जाता हल, सतुआ बनावल जाता हल तो हवे सतुआ लेके जातलन जा काम करे, तो जब हुआ पर ही भूख लगी तो पानी से सांग के खा तलन जा और उही से अपन भूख मिटावत अलन जा और आगे अपन काम में जुट जातलन जा। तो ई रहल जतवा जाता, खाली सतुआ ही नहीं एकर में मसाला पिसात हल, एकर में कसार पिसात हल, एकर में और जौन चीज रहल ओकर में पीसल जातल हैजा परी, सिल लोढ़ा तो नहीं रहल जौटावे रहल ओकरे से अपन काम निकालत अलन जा। तो चला सुनिया जा जौटा के ई जौटा काहे जब धरल दिन भर लोग परिश्रम करे वो लोग के समय नहीं मिले, हये एगो मौका मिले कि जहाँ बैठ के वो लोग अपन दुख सुख गावत अलन जा बजावत अलन जा और बोलत अलन जा ओकर में, नहीं तो खाली समय खोजब कि कहाँ बैठ के कुछ बोले सकब कि ऐसे बीतल कि ऐसे बीतल कि कैसे कहा, तो हये एगो जरिया रहल जहाँ चलावत अलन जा और अपन दुख सुख वही साथ में गावत अलन जा।
1: तो चाची उमा, आज तो हमनी मोदियन जमाना में है जब तो मशीन बातें कोई तो जौटा नहीं चलावे लन सा पीसे लन जा, पर है जो परम्परा हमनी के जो ताजिशों में बातें हबी लेक जीवित बा,
2: तो ये जीवित बा, ये चाहेला जीवित रह के जाता ई खातिन हमनी बतावत हई जा ताकि नई पीढ़ी जोन रही तो एकर से अवगत हो कि हमनी के पुरनिया लोग कैसे दुख सहत अलन जा, कैसे जाता पीस के अपन जीवन व्यापन करत अलन जा। तो एक बारे में दो शब्द मानती जिसे सुन ल जय गीतवा गयन।
1: तो चल दादी मानती आओ, दादी मानती ई हमनी के बुजुर्ग हवन पर उनका दिल हबी लेक जवान बाते, जितना जाना हमनी के देखा तो वन जा टिकटॉक पर आप हमको देख रही है, आपको पता नहीं है क्या है जौटा। यहाँ पर देखिए ये जो जैसे एक रॉक है, यहाँ पर जो पत्थर है और इसमें एक जैसे लोहा इसमें चिपका हुआ है और इसमें डालेंगे जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी चाची उमा अभी बोले हवन सात को चीज बाई में कले कले दलियन सब पीसियन सा तब सतवा बनी कसार बनी सब बनियन सा। दादी दादी शांति तनी सुन एक बारे में बताओ।
3: जौटा में सबको के नमस्ते, कहने वहाँ से भूल तो माफ़ करिया जा। हाय, जौटा में जौटा पिसल जाला, पहले के सबको पिसा चलन जा, पिस्तास के है चना के दाल के मेथी के और सब चीज़ डला तहल घर में, तो डला के पिसा तहल तो हवे पर एगो गीत लिखल बा जौटा के गीत।
1: तो चला आज हमनी तोहरा देखब जा और तोहरा सुनब जा, जौटा कैसे पिसल जाला और वो हमनी सिखब जा, कि निशा वो सीखी वो जौटा पिसन।
4: Yeah.

0: बहुत बहुत धन्यवाद चाची लोग और उहैचा परी गिरीशा के मन नहीं भरल वह बोल हमू पिसब आज सतवा पिसब कसार उसब। गिरीशा कैसा लग रहा है?
1: बहुत ही अच्छा यार, पहली बार मैंने ये किया लाइफ में।
0: यही तो है मैजिक जब हम बोलते हैं सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूजिक, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर हम लोग सिर्फ मस्ती करने नहीं आते हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा है, सभ्यता है, इनको हम लोग जीवित रखते हैं। और हैजा परी चाची शांति हमने के बोला हबी कौन ची गए
2: मिखो में जाता के गीत गई ली हबी कैसे जाता घूमता ई के गीत गवाल हो तो बहू जब जाता घुमावत हन तो उनका पसेना छूटता तो कोई नहीं बा पसेना पूछे के जाता घूमते घूमते उनका बहुत प्यास लगल कोई नहीं बा पानी पियाई के तो उनका भाई रहतलन सात नदी आतर तो भैया ओत नहीं आवतलन तो सास आ ननद तो नहीं जानल उनका भाई हो जवाल हन तुनकर पसेना पहुँचलन ओके पानी पियलन सास ननद तो देखलक तो सास ननद के नहीं अच्छा लगल तो सास ननद तो ओके अछरंग लाता अब ओके घर से निकालता आर उनकर स्वामी तो गल हन परदेश 12 बरिस के 12 बरिस पर जब आल हन तो बैठल हन चनन के छाँ पर बैठल हन तो रोवत हन बहुत घर में से निकल के रोवत हन एजार बिजार के तो ओकर भाई तो पानी पिया के चल गल तो सास ननद तो अछरंग डाल दिलक तो ओके मन करता जाके जमुना में धंस जाई जमुना में जाके धंस जाए तो जमुना के धंसल ओकर अछरंग लग जाए आ नैहर जब जइहन तो उनकर बाप भाई के पगड़ी नीच हुई हलुक होइन जा तो इ कारण से उ रोवत हन अंगना में तो उनकर स्वामी जब देखलन तो पूछत हन तब बता सासू ननद घर में से निकाल दिलक कहाँ जाब तो उनकर पति उनकर हाथ धर के अब घर में बैठलन बोलन इ त हवन उनकर भैया बीरन सातों नदी आतर हन उतना नहीं आवेलन लेकिन उनकर भाई हो तब जाके ओके घर में बैठलन तो किन होगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया चाची जी। वैसे मैं इतना तो बता सकती हूँ कि जब से ये सुहाना सफ़र का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है हम जो MBC में काम करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये जो मौसलमा सैतौद की जो कम्युनिटी सेंटर हैं इनके जितने भी स्टाफ हैं मेंबर्स हैं सबका हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक ही बार दीपशिका ने फ़ोन किया एंड आप लोगों ने ये बाहें फैला के बोला कि हाँ जी आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे, तो हमारी स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगा कि आज हम यहाँ पे आए आप लोगों के यहाँ पे धमाल मचाएंगे हम। अभी तो नाचना बाकी है मेरी जान।
0: तो गिनी यहाँ पर सतवा तैयार है, इसमें चाची बोला थवान तनी सुन चीनी दा के खाइबा, इसमें बहुत ही पौष्टिक जो हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स है, तो खुशबू भी उतनी ही अच्छी है क्योंकि इसमें पिस्ताश वगैरह है, मूंगफली है। बाद में खिलाऊंगी, अभी उषा को सुनते हैं। क्या बोले ला जा चाची लोग, एगो गीत हो जाए
1: तो चलिए शुरू हो जाते हैं। कौन गाएगा अभी? उषा, उषा के लिए जोरदार तालियां हो जाए।

0: थैंक यू।
1: क्या बात है उषा, क्या गाना है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर पल गुनगुनाना ही पड़ेगा कि निशा।
2: और सुहाना सफर एक ऐसा सफर है जो सबके साथ, इस सफर में आप लोगों का साथ देना पड़ेगा।
1: और आज खास हम आए हुए हैं आप लोगों के गांव में, यानी कि कम्युनिटी सेंटर में। चाची दादी लोग कैसे लगे था? नहीं तो नहीं सुन उन लोग के भीड़े जाके चाची

0: लोग कैसे लगे था?
1: खुशी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: जोली जोली साड़ी पहन के आया हुआ है। तनी सुन, हमके साड़ी बा पते कर दिया है, बाद में कब लेवा? बाद में लेवा। चलिए, यहाँ पर ये लोग गैनिशा बहुत ही कैसे कहते हैं स्वीट है, और इनसे बातें करते हुए बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं।
2: नीतू, जब उषा गा रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि सभी लोग जो है ना गुनगुना रहे थे, कि जैसे इनको ये जो गीत है ना दिल से बहुत ही अच्छा लगा, एंड दे वर एंजॉयिंग। क्या आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे? पक्का? तो इतना फीका हाँ क्यों? आप लोगों को अच्छा मजा आ रहा है?
0: तो चलिए एक गेम हो जाए इसी बात पर।
2: बिल्कुल, एक गेम हो जाए। और कितने 6 लेडीज को बुलाना चाहूंगी मैं। 6 लेडीज जो यहाँ पे आएंगे विल बी हैविंग अ गेम। ये जो गेम होता है ना, हम उसको टोपी गेम कहते हैं, एक दूसरे को टोपी पहनाना। आप रियल लाइफ में तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते होंगे। तो चलिए, आज मौका मिलेगा आपको कि ये आप इन खूबसूरत लेडीज को आप टोपी पहना सके। आप आना चाहोगे आ जाइए, मुझे 6 लेडीज चाहिए। एक जो जीतेगा उनको गिफ्ट भी मिलने वाला है। सो जस्ट इमेजिन, हमारे पास गिफ्ट भी है आपको देने के लिए। तो 6 लेडीज कौन आना चाहेंगे? मैंने आऊंगी उठाने के लिए कि भाई आप उठ जाइए, आप अपने आप आ जाइए। मैडम आपको आना है, आना है, आ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5 एक और चाहिए। आप खड़े हो गए ना मैडम, आ जाइए, खड़े हो गए, अब आ जाइए। ये गलती कर ली आपने खड़े होकर। चलो 1, 2, 3, 4, 5 है। आपका नाम जल्दी जल्दी बताइए।
3: रानी,
4: स्वस्ति,
5: देवी,
6: देविना,
7: देविका,
8: संगीता।
2: संगीता जी, चलिए आप यहाँ पे आ जाइए। ये यहाँ पे एक हम एक गोल चक्कर बनाएंगे, सर्कल बनाते हैं। आ जाना मेरी जान, मैं आपको मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं है, मैं काटूंगी नहीं अभी, ठीक है? आप यहाँ पे एक सर्कल आपने बना लिया ऐसे खड़े होके। म्यूजिक बजेगा तो टोपी आपके सिर पे आएगी, ठीक है? मैं समझा रही हूँ। फिर आपने ऐसे करना है, टोपी को पहनना है। ये नहीं है कि यहाँ पे आए हवा में से ही आपने पकड़ के दूसरे के सिर पे रखा, नहीं, ऐसे आएंगे, ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे करके। और जब म्यूजिक रुकेगी, जिसके सिर पे टोपी वो आउट हो जाएंगे, ठीक है? एंड में जो रह जाएगी वही जीतेगी, वही होगी आज का सिकंदर। तो चलिए चाची जी, आप ये पकड़ लीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, और जितने बार ये म्यूजिक बजेगा आप लोगों को तालियां बजाना है, ठीक है? तो चलिए डीजे वाले बाबू रेडी हो म्यूजिक के साथ। चलिए 1, 2, 3 म्यूजिक।

ये पसंद। नहीं नहीं नहीं नहीं पूरा पहनना है चाची, पूरा नहीं, ये अभी उन्होंने गड़बड़ किया, फिर से चलाओ म्यूजिक, चलो आप पहन लो फिर इनको पहना।

आंटी जी आप आउट हो गए। आंटी जी आपका नाम क्या है? खूबसूरत वाली आंटी संगीता आउट हो गए। संगीता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन पे, आपको याद दिला दे, अगर आप देखना चाहोगे कि यहाँ पे कितना मजा आ रहा है, द शो इज लाइव ऑन TikTok RM3 रेडियो मनोरंजन म्यूजिक।

ना ना ना ना ना ना, हाय हाय, स्पीड बढ़ा दी आपने, स्पीड बढ़ा दी। देवी आउट हो गई, ओ यूटी आउट, देवी आप भी आउट हो गए। आप जो हमारे तीनों जो लेडीज हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। ये आंटी ना बार बार कर रही है, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, आपको गिफ्ट भी तो मिलेगा ना आंटी। चलिए म्यूजिक। तालियां तालियां।

नहीं ये एक मिनट, ये क्या बात हुई? एक ही हाथ से मैं पहन रही हूँ, दूसरों को पहना रही हूँ, और वही हाथ तीसरे को पहन, ये नहीं, आप पहना के छोड़ दीजिए, फिर आप दूसरे को पहनाइए, ठीक है? ठीक है, हाथ नीचे भी तो करना है। चले म्यूजिक, तालियां।

आंटी जी आप तो आउट हो गई। बाय बाय आंटी। आंटी का नाम क्या है? देविका जी। बाय। चलिए म्यूजिक।

0: हो आंटी, आप ना जीत गए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन खूबसूरत प्यारे प्यारे आंटियों के लिए। आपका नाम क्या है?
1: देवीना।
0: देवीना, आप हार गए, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, अब हम विनर को देखेंगे। आपका नाम क्या है?
2: इंद्रानी कैफा।
0: अरे इंद्रानी जी, पता है ये जब दोनों एक दूसरे को टोपी पहना रहे थे तो ये ले ये तेरे सिर पे, मौका मिला ना, सब सारी कसर आपने निकाल दी। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एंड आप यहीं के रहने वाले हो? अच्छा जी, तो बस आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारी जो इंद्रानी।
2: आपको भी बहुत धन्यवाद।
0: अरे हमारी पूरी टीम आई है, हमारे अरे जा, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ ना, गिफ्ट भी तो मिलेगा, इसी के लिए तो टोपी पहना रहे थे।
3: एमबीसी की तरफ से,
0: एमबीसी की तरफ से आपके लिए
3: बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ। और जिनकी अभी जीत हुई नहीं है, तरह कैसे नहीं करा सर, अभी और गेम्स बांटे और गिफ्ट बांटे। तो हमने के जो प्रोग्राम है, हमारा सुहाना सफ़र हमारे अपनों के साथ, और आज हमने आल हैजा मो सेलमों सैत औंद्रे कम्युनिटी सेंटर, और हैजा परी तीन दिन एसोसिएशन बांटे मो सेलमों सैत औंद्रे, साथ में बेज टोम्बो और कोयगाची एसोसिएशन। एगो ताली अपन खातिर मार दो, का बात बांटे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर गीत संगीत हम बुलावा बसंती। ए बसंती आवा हो, इतना जोली जोली साड़ी पहन के उषा नहीं आवत हो वन।
4: आगे की जो लाइन है आप बता दीजिए बसंती।
3: उनको आने तो दो, मैं अकेले कैसे बोलूं। बसंती तुहर नाम का हो?
4: कौन बसंती,
3: कहाँ के बसंती हो वह बोला था?
4: मुसलमान से तान
3: इतने प्यार से बात करिए मुसलमान से तान। तो चलिए अभी बसंती एगो गीत गयन, और बहुत ही जुली गीत है सफ़र फिल्म का जो गाना है, और आप गए बता चला हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे पर, आज तक आप लोग हमने के हो गए ला जा, और हमनियो हजा परी आके बहुत ही अच्छा लगा था। तो चला संगे संगे हमनियो गाब जा ये खूबसूरत गीत।

0: थैंक यू।
1: अनिल चौहान कराओ।
0: बहुत खूब हाजा परी चाहेला बोले के हमनी के जो नकलाकार हवन जा हाजा परी वो लोग प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन हाँ दिल से गाते हैं और यही जो फीलिंग है जो जज्बे है वो हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं जितने सुनने वाले
2: और इसी को कहते हैं सुहाना सफर। तो अभी के लिए नीड टू गेम शुरू कर लें।
0: चलिए गिफ्ट्स बहुत सारे हैं तो गेम भी होने चाहिए।
2: कार्डो किसको चाहिए? कार्डो किसको चाहिए? कोई बात नहीं अभी मैं टोपी नहीं पहनाऊंगी कुछ और कराऊंगी।
0: सबको गिफ्ट चाहिए लेकिन हाँ नहीं बोल रहे।
2: अच्छा लो गिफ्ट किसको चाहिए? आपको चाहिए? आइए आइए आपको भी चाहिए आ जाइए। किसको चाहिए गिफ्ट? चाहिए? गिफ्ट नहीं चाहिए? अरे कुछ तो करेंगे जब आ जाइए। चाची जी आप भी आ जाइए। एक दो तीन चार टन टन टन आइए आइए आपका भी स्वागत है मैडम। आप भी आ जाइए जितने भी अपने बैग्स वैग सब कुछ रख के आप यहाँ पे आ जाइए क्योंकि अभी मेरे पास एक गिफ्ट है आपको देने के लिए। आपको तो पता है एमबीसी लोग जो है कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम खाली हाथ कभी नहीं जाते। आप इधर आ जाइए थोड़ा बीच में। आपका नाम क्या है?
3: ज्योति।
2: ओहो इतनी सुरीली आवाज़ ज्योति। कैसे हो ज्योति जी?
3: ठीक हूँ।
2: ठीक हूँ अच्छी बात है। और आपका नाम?
3: रानी।
2: अरे मेरी जान रानी के लिए तैयार हो जाए। मुझे नहीं पता था रानी के लिए ना जोरदार तालियां हो जाए पहले क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुसलमान सहित में रानी भी और मेरे को रानी से मिलने का मौका मिलेगा। सो आपका नाम?
4: कमला।
2: कमला जी और आप?
5: चंपा।
2: चंपा और आप? चमेली।
6: आपने बुलाया मैं चला।
2: अच्छा मैंने बुलाया और आप चले। आपका नाम क्या है?
6: देविका।
2: देविका और आपका?
5: नहीं नहीं मैं
2: नहीं, नहीं हो तो बैठ जाइए ना। चलिए आप इस तरफ आ जाइए थोड़ा सामने। कार्डो चाहिए आपको? हाँ ठीक है तो चलिए जल्दी जल्दी हम एक चीज़ सिखाएंगे आपको। आप जल्दी से मुझे सिखाइए कि जब झाड़ू लगाते हैं घर पे तो कैसे लगाते हैं झाड़ू ऐसे। चाची जी आपको भी आना है हमारे टीम में? नहीं नहीं तो आप थोड़ा पीछे हो जाइए पीछे हो जाइए। अभी सिर्फ ये रानियों के जगह है अभी। चलिए हाँ एक दो तीन चार पाँच एक और मिलेगा आप भी। ओहो आप भी आ जाइए। आपका नाम?
7: देवी।
2: देवी आप भी लाइन में आ जाइए। चलिए मैंने बोला ना ऐसे झाड़ू लगाते हैं। चलिए जब घास लंबे हो जाते हैं तो सिजाई के साथ कैसे काटते हैं? सिजाई सिजाई फूसी से नहीं सिजाई से। अच्छा जब ये हमारे बल्ब

0: ग्लोब जो है ना खराब हो जाते हैं घर पे, तो जो जब उसको चेंज करना होता है तो कैसे करते हैं ऐसे, अरे हाय सारे स्टेप सबको आते हैं। यहाँ पे म्यूजिक बजेगा, ठीक है, एक अच्छा सा भोजपुरी गाना हो जाए, फिर आप फॉलो कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। वो दीपशिका जी को वो बोल रहे हैं कि एंगल ठीक से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप बस फॉलो कर लीजिए। म्यूजिक बजेगा जब मैं बोलूँगी बालिए तो बालिए, जब मैं बोलूँगी ग्लोब तो ग्लोब, जब मैं बोलूँगी गाजो तो ताई गाजो, ठीक है। चले डीजे वाले बाबू, म्यूजिक इज रेडी, चले जारू ये क्या बात हुई, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जुबेदा वाला गाना ढूंढ के लाना मेरे लिए प्लीज, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन एक एक प्रॉब्लम है, मैं बोल रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए सभी ऐसे, आप घर पे ऐसे झाड़ू लगाते हैं, मतलब एक ही जगह पे झाड़ू लगाते हैं? अरे पूरे पूरा जो घर है ना सब जगह लगाना है, इधर उधर हर जगह, ठीक है। चले म्यूजिक और थोड़ा हाई कर लीजिए, झाड़ू लगाओ, झाड़ू झाड़ू झाड़ू बालिए बालिए बालिए बालिए बालिए, आप देखना है कि सबसे बढ़िया कौन कर रहे हैं, ठीक है। विस ग्लोव ग्लोव ग्लोव ग्लोव ग्लोव ग्लोव ग्लोव, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। चाची आपका नाम क्या है?
1: कमला।
0: कमला ना जब इनके घर में ये बल्ब खराब हो जाते हैं ना तो ऐसे चेंज करती है नागिन डांस करके, अरे उसको पकड़ना होता है, उसको ऐसे घुमाना पड़ता है। आप इधर भी आ सकते हैं, इधर भी जगह है, एक ही जगह गंदी नहीं है, एक ही जगह पे झाड़ू नहीं लगाना है, वहां पे भी लगा सकते हो, ठीक है। चले म्यूजिक, झाड़ू झाड़ू झाड़ू झाड़ू झाड़ू, आहा आहा आहा, ओए ओए आहा, वाह जी वाह, अरे क्या बात,

0: रुको रुको रुको रुको, ये वाले गाजों कैसे काटते हैं मुझे समझ में नहीं आता है।
1: गिनी गिनी वो गाना सुना है, ताये गाजे,
0: ताये आए हाय। और ये वाली आंटी पता है ना, जैसे मैंने बोला ताये गाजों, ऐसे रिवर्स में चली गई। ये क्या बात है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, थोड़ा सा गाजों इनके यहाँ पे भी काट सकते हो। कोई बात नहीं, परोसन है सब, मुसलमान सतौदे सब एक ही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आप काट सकते हैं, वहाँ पे भी काट सकते हो। एक्चुअली ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये लोग जज हैं, ये अभी देखेंगे कि सबसे बढ़िया कौन करता है, तो काटो उसी को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए म्यूजिक। कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, रुको रुको, वाह रे वाह, क्या बात है चाची, इनके गाजों का तरह, वाह, आपके यहाँ गाजों नहीं है, हैं? गाजों इनके यहाँ पे ज्यादा हो गया। आप उसको जानते हो, क्या नाम है इनका?
2: नाम उसका,
0: आपका नाम क्या है?
2: विद्वानती चौ।
0: अरे ये खुद डर गए कि मैंने पूछा आपका नाम, चो। ये क्या बात हुई, आपका नाम क्या है?
2: विद्वानती चौ।
0: बी20 जी के यहाँ उनके घास इतने लंबे हो गए, और ये चाची ऐसे नहीं कात रहे, ऐसे कर रहे थे, हाँ। ये क्या बात हुई, लेकिन देखो इनका दिल बहुत बड़ा है, मैंने बोला आप अपने आंगन में गाजों काटना, लेकिन वो दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, अच्छी बात है। चले म्यूजिक, गाजों कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे, हाँ कुपे, हाय हाय, ये काफी एक्सपीरियंस लग रही है दादी, कुपे दादी कुपे कुपे, बालिए बालिए बालिए दादी, बालिए बालिए दादी, दादी बालिए दादी दादी, आहा दादी दादी, आहा दादी, रुक जाओ रुक जाओ, लगता है दोनों हाथों से बालिए बालिए बालिए बालिए, मैं तो बोल ही रही थी दादी बालिए दादी दादी, अरे मेरी जान, ऐसा लग रहा है जैसे कागोजी जी में गए, पकड़ लो भाई, सब कुछ लेके जाएंगे आज, ठीक है, अच्छी बात है। आप देख रहे हो ना कि सबसे अच्छा कौन कर रहा है, जज हो आप बोलेंगे बाद में कि सबसे अच्छा किसने किया, उसी को गिफ्ट मिलेगा। चलो लास्ट राउंड म्यूजिक, ग्लव ग्लव, विसे विसे विसे विसे विसे विसे विसे विसे विसे, डांस करो विसे विसे, हाँ हाँ हाँ,

0: Balier, balier, balier, balier, balier, balier, aha, balier, coupé, coupé, coupé, coupé, pas du va, coupé, zon le gake, coupé, pas, aha, aha. ध्यान से देखो है, अभी ध्यान से देखो, ये लास्ट राउंड है. कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे कुपे बस. अच्छा मैंने बोला बस, आंटी भी उठी बस. ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा. मेरे पास कोई कार्डो नहीं आपको देने के लिए, आप जा सकते हो. नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मजा आया ना.
1: ला सांते है
0: उनका तोहफा, उनका ला सांते है, जिसके लिए मैं हाथ उठा के प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से कि आप हमेशा सलामत रहे, खुश रहे. तो चलिए, आपका नाम क्या है, आपको क्या लगता है देविका जी ने अच्छा किया, हाँ या नहीं? अरे आप लोग बताएंगे तभी तो मैं जज कर पाऊंगी ना. आपका नाम क्या है दादी? रानी. आपको क्या लगता है रानी जी ने कैसा किया, ठीक किया या नहीं? यहाँ पे तो सब ठंडे पड़ गए, मैं तो घर जा रही हूँ. और अच्छा, और आपका नाम?
2: कमला.
0: कमला जी ने कैसा किया, वो तो मुझे भी बताया, अच्छा किया. कैसा किया, अच्छा किया, हाँ या नहीं? और आपका नाम?
3: ज्योति.
0: ज्योति जी ने कैसा किया, और आपने?
3: चंपा.
0: चंपा ने कैसे किया, अरे मैं बार बार चंपा बोलते ही मुझे चमेली की याद क्यों आती है. लेकिन आप लोगों के ख्याल से किसने सबसे अच्छा किया, चलो एक ही बार में बताना, किसने अच्छा किया? चंपा ने. हमारे जो व्यूअर्स हैं टिकटॉक पे वो क्या बोल रहे हैं, किसने अच्छा किया? चंपा ने. चंपा के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा. तो चलिए नीटू जी, गिफ्ट कहाँ है हमारी प्यारी चंपा, चंपा रानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बाकी जितने भी हमारे चाचीज हैं आप लोग यहाँ पे आइए, दिल से धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. उबिया को इनको प्लेयर अच्छा सा काटते हो, अच्छा सा विषय करते हो, अच्छा सा झाड़ू लगाते हो. हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करके उनके पास गए, वाह वाह वाह. तो चलिए शेयर, थैंक यू सो सो मच.
4: चंपा को हम गिफ्ट देंगे और उसके लिए एक गाना है.
0: चंपा के लिए गाना,
4: चंपा सुनो तारा, कोई हारा. चलिए बहुत धन्यवाद आपको और ये गिफ्ट आपके लिए.
0: सुविनय फोटो के लिए, आप उधर देखिए चंपा. हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी. वैसे ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ये जो जितने आंटीज आए हैं यहाँ पे नाचने के लिए. वैसे अभी कार्डियो की कमी नहीं है, कार्डियो अभी भी है, आप सोचेगा ज़रूर करवाएंगे कुछ ना कुछ आप लोगों से. तो नीटू आप लोग तैयार हैं एक खूबसूरत सा गाना गाने के लिए?
5: मैं तो हमेशा तैयार हूँ, लेकिन
0: एवर रेडी.
5: लेकिन आज हम इनके यहाँ आए हैं आत्मो सेलमो सैतौंद्रे कम्युनिटी सेंटर. और जैसे कि हमने बोली जा हाइजा पूरी ढेर कलाकार हवन जा, अभी देख ली हाइजा चंपा जी रहलन ढेर जना हवन. और अपन मधुर संगीत में अभी के गायन, तोहर नाम का है बहन? संगीता कन्हाई. एगो गीत गबा, ये कौन आया, बहुत ही जोली गीत है. तो चल इनका खातिर जोरदार ताली हो जाए.

बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कन्हाई संगीता जी. ये कौन आया आज हमारी टीम रेडियो मस्ती टीम आई हुई है और आप लोग हमको देख भी पा रहे हैं, बल्कि रेडियो मनोरंजन टीम आई हुई है मस्ती करने के लिए आपके साथ मोसेलमोंस सेंट एंड्रे कम्युनिटी सेंटर में. हमारी पूरी टीम यहाँ पर एम बी सी रेडियो हमेशा आपके साथ है और आज बहुत ही अच्छा लगा था हैजा परी आके. आप लोग गावत हवा जा संगे संगे हमने खेला था हैजा और गिफ्ट बस बहाना है और हैजा परी तो लोग के प्यार आशीर्वाद मिला था है. ये बहुत ही जबरदस्त बात है. तो चला एक और गीत हमने आगे बढ़ा जा का कि 1:15 हो गल बातें, 2 बजे खत्म हो जाए पर गीत वन खत्म नहीं होता. तो हम बुलाब श्रीमती संगीता, लेकिन इस समय श्रीमती संगीता बुधु जल्दी जल्दी भागते भागते आवा एगो गीत गब कहाँ हवा हो आवा. चलो संगीता बुधु आ रही है और वो जब आ रही है बंधु तो आ रही है, तैयार हो रही है गाना गाने के लिए. मैं चाहूँगी एक गाना है, आप सब जानते हैं इस गाने को और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग मिलकर मेरे साथ ये गाना गाए. ठीक है, सिर्फ स्थाई जो है शुरुआत जो है साथ मिलकर गाए. मैं शुरू करूँगी, अभी शुरू हो जाए.

0: चलिए जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। बैठे बैठे आप सब लोग ने गा लिया हमारे साथ, देखा मैजिक।
1: मैं सोचती थी कि गाना गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोसलमा सैतान्द्र में आके मुझे पता चला कि यहाँ तो सारे सिंगर्स बैठे हैं, तो मैं तो कहूँगी उषा उनको बोलेंगे खुद के लिए जोरदार तालियां।
0: जोरदार तालियां
1: लीडू तैयार,
0: और जोरदार तालियां हो जाए श्रीमती संगीता और श्रीमती सरस्वती के लिए।

0: क्या बात है, हम सफर है सभी। हमारी तीन देवियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लाइव फ्रॉम मोसेलमा सैत अंतरी कम्युनिटी सेंटर, सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। हैजा परी एगो भौजी आल ओकर कंधा में ओकर साक लेके भक्ते भक्ते आल हमु गाब। आपका नाम क्या है?
1: वृंदा।
0: वृंदा कहाँ से हुआ?
1: कोई
0: रांची से आल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। उपया को दोस्त होती, आपको बहुत गाना पसंद है?
1: हाँ, बहुत पसंद है।
2: कुछ लिख के आए हैं ना हाथ में?
0: फरमाइश लेकर आई है हथेली पे। अच्छा, अजीब दास्ता एक प्यार का नगमा।
2: एक ही गा सकते हो? कौन सा गाना गाओगे आप?
1: अजीब दास्ता।
2: अजीब।
0: अच्छा, दो लाइन आप जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी वक्त बहुत सारे गेम्स है और भी कलाकार है यहाँ पर। जल्दी जल्दी आपने गाना गा लिया, जल्दी जल्दी एक गाना आप भी गा लीजिए ऐसे ही।
3: अजीब दास्ता है

0: यहाँ पर मैसेज शुरू हो गया
1: है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये कार्यक्रम 12 बजे शुरू हुआ।
0: वृंदा ने गाना गाया, वृंदा ने गाना गाया तो उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए,
1: तालियां हो जाए वृंदा जी के लिए।

0: खूबसूरत कहानी हम लिख रहे हैं आज मौसलमो सैतोंद्रे में, जोरदार तालियां हो जाए या ब्रिंदा के लिए। थैंक यू सो सो मच। एंड नीटू, नीटू अभी क्या करना है? ब्रिंदा
1: जी, ब्रिंदा जी, ब्रिंदा जी, कादू में आपको आपका बैग वापस मिल रहा है।
0: नहीं, आपका बैग मिल गया और भी कुछ मिलने वाला है आपको।
1: यस, आपने इतनी खूबसूरती से गाया है, इतने प्यार से यहाँ पर आप आई है, तो चलिए एक गिफ्ट आपके नाम एमबीसी की तरफ से आपको दिया जाता है, एक वाउचर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: और ये उनको एक वाउचर दिया जा रहा है फ्रॉम एस्थेटिका स्पा स्पुटे, जहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे फेशियल करा सकते हैं, अपने नाखून करा सकते हैं, अपने बाल करा सकते हैं, एवरीथिंग। तो आप और भी खूबसूरत बन जाएंगे। सो ये रहा आपके लिए, कंग्रेचुलेशंस।
2: और गिनिशा, ये लोग जो बैठे हैं अब सोच रहे हैं काश हम भी कुछ तैयार करके आ जाते, देखो गिफ्ट मिल गया उनको।
0: तैयारी की है किसी ने यहाँ पे, कुछ करना है?
1: ये तो मजा है बिना तैयारी के गिफ्ट मिलना।
0: चलिए, मेरे पास एक सवाल है, आसान सा सवाल है, एक गेम शुरू करते हैं। मैं पूछूंगी एक सवाल, आपको देना है सही जवाब, और जिसने सही जवाब दिया उसको मिलेगा एक गिफ्ट। ओहो, ऑलरेडी गिफ्ट तैयार है। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे बताइए कौन कौन सुनता है रेडियो मनोरंजन। ओह, आप सुनते हो। तो एक सवाल है, RM3 रेडियो मनोरंजन पे दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शो आता है ऑन द रेडियो, उसका नाम क्या है? शो का नाम क्या है 12 से 2? आपको पता है चाची जी, आपका नाम क्या है?
3: संगीता।
0: इनका नाम सुहाना सफर है। खड़े हो जाइए, सुहाना सफर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपका नाम?
3: संगीता।
0: संगीता, जवाब क्या है?

0: एग्जैक्टली सुहाना सफर। तो ये रहा आज का लकी विनर। बहुत ही आसान सा सवाल था एक्चुअली, देखा जाए तो अगर बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं आता था तो आज से ज़रूर सुनेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आएंगे कौन से सवाल पूछेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस, आप जीत रहे हो, एक आप आगे जाइए, एक गिफ्ट ऑफर टू यू बाय MBC, तो उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। आप बस बैठ के तालियां बजाते रहो और मुस्कुराते रहो, आप लोग भी गिफ्ट जीत सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं आपको देने के लिए, तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम फिर से शुरू करेंगे एक और प्यारा सा जो गेम है। अभी कोई और है जो हमारे लिए कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे? कोई है? नहीं है? मैं तो बोलती हूँ म्यूज़िक चलाओ, सब नाचते हैं, क्या बात है। तो चलिए, अभी आप रेडी हो? कौन है रेडी?
1: यहाँ पर एक प्यारी सी लेडी है, लेडी इन रेड, आपका नाम क्या है?
2: देवरानी नक्षेदी।
1: देवरानी नक्षेदी के लिए जोरदार ताली हो जाए। यहाँ पर आप दो लाइन एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाना चाहती हैं। हैजा परी आके सब कोई के गाना गाए के बाद पसंद बातें, तो चल सब कोई के हमने मौका दे हुआ था, हैजा दो लाइन सब खातिर।

0: धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। और नीतूषा यहाँ पर उन्होंने गा लिया हमारे लिए, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, क्या जादू किया है।
1: जादू इतना बड़ा है कि हर कोई गाना चाहता है एक के बाद एक, तुम ही मेरी मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तोहरो, तो चला तू ओलान तू ही गा दे।

0: और धन्यवाद उन लोगों को जो जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर गाना हमको सुनाया है। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, गिफ्ट वाउचर। और आपका नाम क्या है?
1: योगेश्वरी रामनारायण।

0: बढ़िया हो जाए योगेश्वरी जी के लिए। और यहाँ पर इस्तेचिका की ओर से 500 रुपीज़ का वाउचर। और यहाँ पर आपका नाम
1: देवरानी नागचेदी।
0: देवरानी जी के लिए भी एक जोरदार तालियां। तूने और रंगीले कैसा जादू किया और यहाँ पर जादू कर दिया उन लोगों ने। और गिनीशा कुछ कहना चाहेगी?
2: बिल्कुल, क्योंकि अभी टाइम आया है कि हमारी नीतू जी भी अपने आवाज का जादू चलाए सबके ऊपर। तो चलिए नीतू के लिए जोरदार तालियां हो जाए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। चले, गानों का सिलसिला अभी हम लोग जारी रखते हैं। उषा, एक और गाना हो जाए।
1: चलिए जी, एक और गाना हो जाए। और यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि हम क्या गाएंगे।
0: गाना ही गाएंगे।
1: इतने सारे अच्छे अच्छे गाने क्या सुनाएं आप लोगों को, लेकिन जो भी सुनाएंगे बहुत ही मजेदार गाना है और आपको मिलकर साथ गाना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा?
0: दौड़ेगा
1: दौड़ेगा।
0: तो हम लाइव हैं अभी एट मोसलमान सेंट अंद्रे कम्युनिटी सेंटर, जहां पर मोसलमान सेंट अंद्रे, बेजू टोम्बो और कोइराती एसोसिएशन जो हैं यहां पर मिलकर इस सुहाने सफर को और मजेदार बना रहे हैं। आहा हा हा, दिल दीवाना हो गया।
1: धुन को पकड़ना
0: मुश्किल ही नहीं।

0: पहले माइक ऑन कर लीजिए. थैंक यू सो सो मच. जोरदार तालियां हो जाए उषा के लिए.
1: थैंक यू.
0: कैसा लग रहा है हमारे प्यारे प्यारे जितने ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ पे बैठे, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ये क्या बात हुई? हाँ अच्छा लग रहा है. क्या हम ऐसे पूछ रहे? हम पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को. अरे मेरी जान, ये हुई ना बात, पता है मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है. यहाँ पे तो गर्मी भी बहुत है, ऐसा लगता है कि पता नहीं है यहाँ पे तो सर्दी पहुँची नहीं है. तो अभी नीतूषा, हमारे जो लेडीज हैं क्या वो तैयार हैं?
1: बिल्कुल तैयार है, स्टेज एकदम से तैयार है और बेजतोबों की जो एसोसिएशन है. चला चाची मौसी लोग तैयार हो जाए, शुरू हो जाए.

दे। बहुत बहुत धन्यवाद चाची लोग, चाची बहन का, अर्जुन ग्रुप भवन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ग्रुप हो जाओ, बड़ी बात है, सब कोई के हमने मौका देवा था ऐसा, हमने बोला सच सब कोई के मौका। प्रोग्राम जन बातें अभी समाप्त हो,

0: होली हवन बिच दोबो से और हाइजा परी अब हमनी बुलाब जा स्टेज पर इंदु किस्टू और जो नटोली हवन जल्दी जल्दी हमनी के जितना जना हाइजा परी आके गावत हवन अच्छा लगा था तो लोग के सुन के और हमनी के जन भाषा हमनी के भोजपुरी जन भाषा बातें संस्कृति हमनी के लोक संगीत जन बातें उषा हमनी के गीत गवाए हबिलेख जीवित बातें और हमने सीखा था ऐसा हमने गावब सा चाची लोग की उम्र लेख पहुँचते पहुँचते हमने ऐसने गावब सा का बोले ला तो चला हमी जन टोली हवन तैयार हुआ था हवन और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे श्रोता इस समय रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं। ये है सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ मोसलमान सैतंद्रे कम्युनिटी सेंटर जहाँ पर तीन तीन जो एसोसिएशन हैं यानी कि मोसलमान सैतंद्रे बिज टोंबो और कोयगाची एसोसिएशन ये लोग अपने आप में ही बोल रहे हैं मैं गाऊंगी
1: जी बहुत ही उत्सुक है अपने आप को साबित करने के लिए जैसे इनके पास टैलेंट है और रोज़ ऐसे मौके नए मिलते हैं इसीलिए आज उनको ये मौका मिला है और हमारे साथ जो है एमबीसी टीम आए हुए है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है
0: एक और यहाँ पर एक टोली तैयार हो रही है इंदु किस्टू और जो टोली है वो लोग भी तैयार हो रहे हैं एक भोजपुरी यानी कि एक गीत गवाए गाय के और वो हाइजा परी जितना जना हमने के देखा था वन सुनत हवन आज एक खास मौका बा हाइजा परी क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं शाम को 6:30 बजे कम्युनिटी सेंटर में भी तो आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आएंगे मस्ती करेंगे और ये जो अपनापन है जो फीलिंग्स है वो लोग शेयर करेंगे।
1: और जाते जाते हम धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे जो पूरे टेक्निक टीम है आवी है गिनिशा है उषा नीतुषा और डोम है और इकलास भी है और पूरे टीम यहाँ पर
0: अविनाश है अविनाश है
1: और मैं चाहूँगी कि आप लोग एक ताली दीजिए उन सभी लोगों के लिए थैंक यू सो मच और ज़रूर हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। और क्या करें शुरू करें आप लोग रेडी हैं

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमी के चाची दादी लोग खातिर ऐसे ही हमी के जो परंपरा बाते एक जीवित रखिया जा। और उहाजा परी गिनिशा वक्त हो चला है हमारे जाने का।
1: अभी तो हम आए थे नीटू, पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया। और हमारे जो जितने भी प्यारे प्यारे चाची मौसी सब बैठे हैं यहाँ पे, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज
0: सचमुच।
1: आज में वाकई में कुछ अलग सा ही था, यहाँ पे कुछ अलग सा ही प्यार है ना।
0: लेकिन अभी ये जो था ना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी जलसा होने वाला है
1: उसके बाद।
0: ओए, ये तो।
1: ओए। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सभी लोगों का जो यहाँ के हैं, मौसलमान सैतंद्रे कम्युनिटी सेंटर के हैं। आपने हमारा स्वागत किया, MBC RM3 रेडियो मनोरंजन का आपने यहाँ पे स्वागत किया, दिल से शुक्रिया। लेकिन हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सभी लोगों का, सो थैंक यू सो मच। आपके लिए जोरदार तालियां।
0: चलते चलते यहाँ पर वंस अगेन हमारी जितनी भी टीम है, यहाँ पर टेक्निकल टीम है, गिरीश आपको, उषा, दीपशिखा, नवनी, डोमिनिक, अवि, क्लास, अविनाश, दावन, एंड थैंक यू सो मच हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से, हमारे जो OIC है नर्मदा खेदना, हमारी मैनेजमेंट टीम, एडमिनिस्ट्रेशन टीम, रोशनी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हैजा परिचित ना जाना आके पार्टिसिपेट कर ले हवन गायला हमने संगे संगे जो दो घंटे के जो खुशी के पल हमने बिताई ली जा तोहर संगे, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यादगार बातें। चलते चलते यहाँ पर दीपशिका हमारे साथ है, श्रीमती उमा बसगीत यहाँ की प्रधाना है, यानी कि मौसलमान सैतंद्रे कम्युनिटी सेंटर की प्रधाना। चलते चलते आप कुछ कह सकती हैं प्लीज़।
2: धन्यवाद। मैं पहले आप MBC लोगों सभी लोगों को धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने आकर अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे मनोरंजन के लिए यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी लोग बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए और चाहते हैं कि आप लोग बार बार ऐसे आए और हमारा मनोरंजन करते रहें। बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। और जोरदार तालियां हो जाए हमारी इस खूबसूरत प्यारी सी आंटी के लिए। और साथ में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन सब लोगों का जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमें देखते रहे, साथ देते रहे ऑन TikTok RM3 रेडियो मनोरंजन। और थैंक यू जो हमने बोल दिया, लेकिन उनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी है ना।
0: जी हाँ, इतने सम्मान से उन्होंने हमें अपनाया, यहाँ पर बुलाया, और जितने जो खान पान जो भी जो कुछ हुआ, इतना प्यार लेकर जा रहे हैं यहाँ पर गिनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल से पुकारेंगे वापस चले आएंगे एक और सुहानी सफर में, और ये छोटा सा जो टोकन ऑफ लव जैसे कहते हैं MBC की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती उमा एंड बसगीत जी। और यहाँ पर जितना जना हमने के संगे जुड़ल रह जा रेडियो के माध्यम से, TikTok के माध्यम से, और जितना जना हम के आज देख ले हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और जाते जाते सुहाना स

0: मौसम हसीन।
1: आज बाकी में मौसम हसीन है, सुबह जैसा मौसम था मोका में, और यहाँ पर ही आके इतना सुहाना मौसम, इतना प्यार जो हमको मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मौसम मौसम तंद्रे, थैंक यू सो सो मच एंड हैप्पी म्यूजिक डे टू ऑल ऑफ यू।
0: बाय बाय।

उतरती यान जवाम जंती एम्बे से जी यान जवाम जी एम्बे से जी यान फूलों से जो आप बैठती हाते हाते हाँ हम फूलवा बैठती हाते हाते हाँ से

बहुत बहुत धन्यवाद चाची एम्बेसी के बुलाइला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा बुलाएबा ना हमने हमेशा आपसे। आले एगो और टोली हवन ना स्टेज पर आता आता ना एगो स्टेज पर कौन ना टोली अभी जाइयन परफॉर्म करियन के रहल कोई गाची लोग बोलत रहन जा बेच तो वो को गाची हम तो बोलब सब कोई आशा बाप सब कोई आशा है जा परी सब कोई संगे संगे

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। फेडरेशन ऑफ पब्लिक सर्विस सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन यानी यूनिवर्सल पेंशन बनाए रखने का समर्थन किया है। आज सुबह पोर्ट लुइस में लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। विजय बंधन ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े पब्लिक गैदरिंग एक्ट में प्रस्तावित सुधारों की भी आलोचना की। मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटजी 2026-2030 का मकसद लाइसेंस पाने में आसानी और डिजिटल एसेट्स विकसित करके अफ्रीका में मॉरिशस को एक प्रमुख फिनटेक हब के तौर पर मजबूत करना है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की तकनीकी मदद से तैयार की गई इस दस्तावेज को का मकसद लाइसेंस पाने में आसानी और डिजिटल एसेट्स विकसित करके अफ्रीका में मॉरिशस को एक प्रमुख फिनटेक हब के तौर पर मजबूत करना है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की तकनीकी मदद से तैयार की गई इस दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर कल लॉन्च किया गया। ये रणनीति 6 स्तंभों पर आधारित है, रेगुलेशन, मूल ढांचा, प्रतिभा, निवेश, सहयोग और समावेश। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह यूके भी भीषण गर्मी का कहर झेल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज उत्तरी वेल्स में बारिश पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में बिजली की आंधियों का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया, दीजिए नमस्कार।

0: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत है। आप सब जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम है गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, जैसे पिछले दिनों हमने संगीत दिवस मनाया, नृत्य दिवस मनाया, लोगों ने बहुत से प्रशिक्षण लेकर इस मंच को सजाया भी और अनेक मंचों को सजाया संगीत दिवस पर। पर जो हमारी गीत गवाई की परंपरा है उसमें वो फिनेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये रॉ है, बिल्कुल हमारे देश का धरोहर है। और इसमें जो बिना पढ़े हुए भी कंठस्थ किए गीत गाते हैं उनका प्रचलन है, क्योंकि हमारी दादी नानी भाभियाँ सब गीत गाती हैं गीत गवाई के दिन। पर केवल गीत गवाई के दिन नहीं, ललना भी गाती हैं, झूमर भी गाती हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में भी गीत और नृत्य की चर्चा होती रहती है और वे मंच सजाते रहते हैं। इन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हुए गीत गवाई की आज दो महिलाएं जो यहाँ पर जुड़ी हैं वे हैं रानी मंगर जी, आपका स्वागत करते हैं, और साथ में हैं श्रीमती शीला गोपाल जी। आप दोनों कौनेवास पावे की रहने वाली हैं, आपका हम आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं महादेवन जी प्रोडक्शन सीट पर, उरुसा भी हैं हमारे साथ, और कविश आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। फेसबुक लाइव जो हमारे साथ श्रोतागण जुड़े हैं वे भी, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही जो इस समय सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से श्रोतागण, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, आज दो अतिथियों के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है, आपको आभार प्रकट करते हैं आपके जुड़ने के लिए। श्रीमती रीता जी, रानी जी, माफ़ी चाहती हूँ, रानी जी, आप कब से गीत गवाई में जुड़ी हुई हैं?
1: 40 वर्ष से
0: आप गीत गवाई में जाती हैं। हाँ। और ज़्यादातर मॉरिशस में देखा जाता है कि शुक्रवार के दिन गीत गवाई होती है। हाँ। अब क्योंकि हॉल उपलब्ध नहीं है, वेन्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए अलग अलग दिन पे भी होती है गीत गवाई, पर शुक्रवार के दिन गीत गवाई मनाई जाती है, जो कि सारी महिलाएं मिलकर दूल्हे के घर या दुल्हन के घर मिलते हैं और गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। तो आप 40 वर्ष से गाती हैं, पर इसके पूर्व जब आपका विवाह नहीं हुआ हुआ था और आप अपनी माता पिता के यहाँ थी, तब भी क्या आप गीत गवाई से जुड़ी थी?
1: मुझे जाता थी,
0: आप जाती थी?
1: जाते हैं।
0: तो आप 40 वर्ष से गा रही हैं, 40 वर्ष पूर्व कैसे गीत गाए जाते थे और आज की तिथि में कैसे गीत गाए जाते हैं, थोड़ा सा अंतर हमें बताएं।
1: थोड़ा सा डिफरेंस होगल बा, आगे गीत जो रहल बहुत सही लेके चलत हैं जब बाद लोग दादी लोग मामा लोग तो जहन जता आगे जे पहला गीत अथी करियन से लगन खोलियन से पुरानी के गीत गयन से तो लगन लेके अथी लगन नहीं खुल अहन जा पाँच में बैसे से सभा में तो बैस के अति वो लोग आए थे पहले हम करब से गायत्री मंत्र, तीन बार गायत्री मंत्र हो गल तब तो संझा से लेब से संझा हो गल पाँच गो तो पाँच गो देवता पाँच गो महादेव और शादी के पाँच गो तब ओकर में एगो सुहाग रही ओगो सुमिरन रही तब धरती माँ के पूजन करब से ढोलो के पूजन करब से तब उनका से आज्ञा मांगब से।

0: धरती माँ से, जे धरती माँ आल है सत तोहरा जगह द, हम लोग नाचब स तोहर पर, ताल बजाब स, ढोलक बजाब स, ओकर से आज्ञा मांग के तो हमनी अपन कुमार से करी से नाचे गाई के।
1: ये आज्ञा मांगनी आवश्यक होती है?
0: हाँ, तो कैसे बिना मांगते ओकर से जइबा। हम पहला गेहूँ ले जाके रखी ला सकर पान फूल सिंदूर टिकली और चीनी, ओकर पान के पत्ता में रख आगे के रखत जा धरती माँ पर सिंदूर टिकात रहल, टिकली सिंदूर चीनी सबके जा रखा था। तो अब कहे डाली ला स पनवा के पतवा उठा के एगो गाछी तरह रख देव स तुलसी,
1: तो उसका सम्मान है ताकि वो पैरों के नीचे ना आए।
0: नहीं रखे अब धान।
1: बहुत सुंदर है। तो ये देखिए श्रोताओं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि हम कुछ भी करने से पहले, कुछ भी आयोजन हो या कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, तो सबसे पहले हम ईश्वर से आज्ञा मांगते हैं, धरती माँ से आज्ञा मांगते हैं, फिर अपने बड़े जनों से आज्ञा मांगते हैं, तब जाके कहीं कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया हमें कि गीत गवाई 40 वर्ष पहले जो आपने शुरू किया होगा गीत गाना, तब के जो गीत हैं और आज के जो गीत हैं उसमें फर्क आ चुका है, उसमें अंतर आ चुका है।
0: पुराने कहते हैं ये आगे के गीत है, आगे के।
1: हाँ,
0: और वैदिक में दूगो है, एगो वैदिक एगो पुराणिक। तो अभी पुराने के बारे में बोलिए सर
1: जी।
0: अब अभी वैदिक में बैसब से सब पांच सात जना जितना जना रहे सब कोई बैसब परिवार लोग बैस रहे हैं अंदर से
1: जी।
0: अब वो लोग अपन लगन लेके हैं जा, तो लगन में बांध के चाहिए मुसवार में डाल के और लगन के हरदी धान और दुपिया बांध के तब बस। अब पाँच जना ऐसे लेके आई से पास सात जना तो के बोलब से ठाड़ हो, ऐसे ठाड़ से तक अथी बोलब से श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः करके तब लगन रखियन जा, तब कपूर बराई, तब ऊपर कपूरवा पर थाली रख के तब ओकर लगन खुली ले से।
1: बहुत सुंदर आपने बताया। कवीर से हम मांग करेंगे कि कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए एक गीत से हम कार्यक्रम को सजाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी आपके लिए।

0: गीत नृत्य और परंपरा।
1: श्रोताओं आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत नृत्य और परंपरा से, और आज के हमारे दो अतिथि हैं शीला गोपाल जी और रानी मंगर जी। रानी जी, आप आजकल गीत सिखाती भी हैं, वहाँ पर एक विद्यालय है कौने बस पावे में, एक सेंटर है जहाँ आप सिखाती हैं गीत, और रामायण पाठ भी होता है वहाँ पर। थोड़ा उसके बारे में हमारे को जानकारी
2: दीजिए। के बारे में
1: रामायण किस दिन होती है और गीत?
2: लंडी के दिन सोमवार को।
1: सोमवार के दिन आप रामायण पढ़ती हैं वहाँ पे, उसके बाद?
2: उसके बाद शांति पाठ, उसके बाद अधिक सोशल मीडिया सतह गीत गवाई कर।
1: तो कितने छात्र हैं जो सीखने आते हैं
2: वहाँ पर? 15 जाना ना,
1: 20 लोग हैं जो सीखते हैं वहाँ पे। ये कब से प्रारंभ हुआ आपका सिखाना?
2: दो वर्ष से यहाँ पे संस्कृत में जाते।
1: आप वहाँ पे की गुरु माँ हैं, आप गीत लिखती भी हैं यहाँ के, खाली कंठस्थ गीत सिखाती हैं?
2: कंठस्थ करते हैं मई, वो लोग अपन लिखते हैं,
1: वो लोग लिख लेते
2: हैं।
1: वो आपके साथ
2: गावत
1: जहाँ पर जाती हैं आप नाचने, गीत गवाई के दिन जाती हैं तो वो साथ जाते हैं आपके?
2: हाँ जाते हैं। हाँ
1: आप शीला जी ढोलक बजाती हैं, मैंने आपकी तस्वीरें भी देखी फेसबुक पर कि आप ढोलक बजाती हैं, कब से?
3: मैं बचपन से ही ढोलक बजाती हूँ, बचपन एक 5-6 साल से। मेरे यहाँ पर मेरे बहनें थे, भाई थे, हम लोग बहुत बच्चे थे, मेरे भाभी के भी बच्चे संगे साथ साथ थे, तो हम लोग सब बच्चे मिलकर गीत गाते के बहुत खुश रहते थे। तो मैं ढोलक अपने से सीखी।
1: आप ढोलक बजाना अपने से सीखी?
3: हाँ, मेरे पिताजी।
1: और ढोलक सबसे अच्छा यंत्र है जो कि बजाया जाता है गीत गवाई में, ढोलक के बिना कहाँ गीत हो पाएगा, नाचना नहीं हो पाएगा।
2: ढोलक बजाते हैं
1: ये, बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं। आप गीत सीखती भी हैं?
3: सीखती हूँ, हमारी गुरु माँ ही हैं, उन्हीं से मैं सीखती हूँ। जब जब मुझे मौका मिलता है तो मैं जाती हूँ।
2: ढोलक जब सीखती हूँ, गीत पर बजावे लग जाना, गीत पर जैसे गीतवा गई बा तो वही सिर पर लगी पर ताल दे।
1: अच्छा, अब जैसे कि मैंने शुरुआत में पूछा कि 40 वर्ष से आप गीत गा रही हैं, उससे पहले, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रही थी तो मैंने जाना कि आप 80 वर्ष की हो चुकी हैं और 40 वर्षों से गीत गवाई से जुड़ी हुई हैं, नाचने जाती हैं शुक्रवार के दिन या जब भी गीत गवाई होती है आप जाती हैं, पर उससे पहले क्या आप गीत गवाई में नहीं जाती थी और क्यों?
2: कब क्यों नहीं जाते हैं, मेरे बेटी के कुसर कर
1: पहले 40 वर्ष
2: पहले होने से जी होने अथी मर बूढ़ा नहीं जाए दे ना
3: पिताजी,
2: हमारे पति नहीं जाए दे कहूँ गीत गावे के।
1: तो उससे पहले आपके पिताजी जाने देते थे?
2: किसके? मेरे पिताजी छोटे में।
1: हाँ
2: छोटे में, हाँ वो लोग जाते
1: कभी कभी माँ के साथ जाते।
2: भाई नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं,
1: भाई नहीं जाने देते थे?
2: भाई नहीं,
1: भाई कहते थे नहीं जाना।
2: नहीं भाई बड़ी मूवी।
1: क्यों
2: क्यों बोले बेटी लोग के घर में रह के गीत नहीं गावे जाना,
1: गीत गवाई को बुरा मानते थे?
2: हाँ
1: ऐसा क्यों, क्या कारण था?
2: मालूम नहीं, मालूम नहीं।

0: जी, अब आप स्वतंत्र हैं, आप जाती हैं, पति ने जाने दिया जब आपका विवाह हुआ?
1: हाँ, तो पति लगता नहीं जैन रहन सना जैनेस रहन सना
0: हाँ।
1: तन नहीं जाई दी हम सब बढ़िया से घरे रहो जाई खोजे तो बढ़िया समय घर नाच गाओ तब जाइ हमारा बताओ नाच बे कैसे कैसे गई बे तब बोला कैसे नाचब जाब तब न सीखब
0: हाँ।
1: नहीं नहीं जाए के बा तब ना एक गो फामी में जात रहनी सही से रही त अब हम बोलूँ कि गैला कितना
0: रिश्तेदारी में आप जाती हाँ
1: अब ओकरो तो हो गल कागन तो आजा हम के छोड़ के चल गल तब मौका मिलल चल चल जाइए लड़का लोग के लेके पीते पीते लड़का रहा पापा लड़का लोग के लेके जब गीत गावे
0: आप पाठशाला नहीं गई हैं पर आपको गीत सभी आते हैं आप एक गुरु माँ हैं आप अन्य छात्रों को सिखा रही हैं
1: हाँ,
0: छात्र का मतलब है कि हाँ, जैसे बहनें जो जाती हैं
1: हाँ,
0: उनको आप सिखाती हैं
1: हाँ,
0: पर कंठस्थ है आपको सभी गीत
1: हाँ,
0: तभी आप सिखा पाती हाँ, हैं क्योंकि लिखती नहीं है आप पर वो लोग लिख लेते हैं आगे से वो लोग लिख लेते हैं।
2: दीदी का उनका गीत भी है वो रेडियो पर गई थी वो पुदीना कहाँ पसरे
0: अच्छा,
2: उनकी लिखा हुआ गीत है
0: आपका लिखा हुआ गीत है मतलब आपने सोचा और आपने वो गा दिया।
1: मैंने गा दिया क्यों एगो पुदीना पसर ले प्लॉट लगता पुदीना तो ताले हुए सगरो ना तब घरवा में एगो लड़का जन्म ले ललक।
0: अच्छा
1: जब घरवा में जन्म ले लक तब बोलब से कौन चीज करब अब गीत तो अब है पर एगो गीत निकाल देनी
0: आपने स्वयं अपना हाँ, गीत अपने हाँ, निकाला
1: मारे दादा बा दादी बा भाई बहन लोग बा ते पर एगो ललनाल बा गोची बा बाल बा तो पर गीत निकलनी बोली पुदीना तो इतना पसरता तो का कर से पर एगो गीत निकलनी बोली पुदीना कहाँ पसरे पुदीना कहाँ पसरे ओकर दादा के अंगना हुए पसरे ओकर दादा के अंगना हुए पसरे बबुआ कहाँ खेले बबुआ कहाँ खेले ओकर दादी के गोद में हुए खेले ओकर दादी के गोद में हुए खेले।
0: बहुत अच्छी बात मतलब आपने अपना गीत निकाला। आप विश्व हिंदी सचिवालय और इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र प्रवासी घाट जैसी संस्थाओं में भी आपने गीत प्रस्तुत किए हैं ये गर्व की बात है क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है और आप ऐसे स्थानों पर गीत गवाई के प्रचलन हेतु वहाँ पर पहुँची और आपने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया और साथ ही गीतों का भी प्रदर्शन किया। पर अब मैं जानना चाहूँगी कि आप अंतर कहाँ पाती हैं 40 वर्ष पूर्व हमारे जो लोग थे वे कैसे गीत गाते थे और आज आपने 40 वर्ष की लंबी यात्रा तय कर ली है उसके बाद आज की तिथि में गीत में क्या अंतर आया है?
1: बहुत फर्क भाभी बहुत फर्क।
0: कैसा?
1: आके रिस्पे से गीत गवात रहल रिस्पे से सबके रिस्पे से इज्जत पानी से गीत गवात रहल और हबी जौन बात कौपावे नहीं हुई बात सुनिए ना ये अतिमी गावेलन से उत्ताप में गीत कौपा नहीं वो गीता में कौन चीज बोला था आप जस्ते मरद लोग गावा था ना हो धपक डुप हो हाँ ये नहीं समझ लगेला कौन चीज गावत हो अब हमने जो गावत है अपन क्लासे करके गीत गाइल से कैसे देवता के गाव से तो देवता के जानब से कौन देवता के गईते गईते कहाँ फिनिशों करब से महादेव कैसे गईते गईते कहाँ फिनिशों करब से शादी के गईते गईते कहाँ फिनिशों करब से।
0: मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी हमारे श्रोताओं के लिए कि शादी के गीत पहले कैसे रहे और आज की तिथि में कैसे थोड़ा सा गीत थोड़ा सा मुखड़ा या अंतरा जो भी आप सुना पाएं ताकि लोगों जो हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं जो देख रहे हैं उनको ये अंतर मालूम हो कि पहले कैसे गीत गाए जाते थे और आज की तिथि में क्या परिवर्तन आया है।
1: शादी के देवता के
0: कोई भी जो आप जाने
1: देवता के दादा दुअरिया चानन एक गछिया, दादा दुअरिया चानन एक गछिया, कोयल बोले लागा हा गही, कोयल बोले लागा हा गही, कोयल के बोलिया सुन के निकले लन दादा, कोयल के बोलिया सुन के निकले ला दादा,

0: अब कैसे गाया जाता है? ये पुराना था
1: अब पुराना था ना ही अभी क्यों अभी के हो
0: तो पहले कैसे गाते
1: पहले के ऐसे बोले पहले के गीत ए ची छोटी मोटी सीता जे हाई छोकड़ी के हैं ए जी छोटी मोटी सीता जे अंगिया के पातर लिपेला धर्मा दुआर जी ए जी धर्मा दुआर सीता लिपाऊ न पहले दुआर।

0: दुलारी भैया के लिपिला दुआर जी। ये मैं भी लंबा बा
1: बहुत लंबा गीत है, पर आज परिवर्तन आ चुका है, हम घर लीपते नहीं हैं, तो हाँ, वो अंतर भी हमारे गीतों में आता है, पर जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनमें घर लीपे जाते थे, क्योंकि पहले घरों में टाइल्स नहीं होती थी, आज तो घर घर में टाइल मौजूद है।
0: अब आगे तक घर घर में गोबर खोज गाय के गोबर से माटी खोज स्थान के अपन घर लीप
2: जाके भी
0: जाके घर सब रोज घर समेन के परे लीपे के।
1: आपने वो सब काम किए हैं? आपके कितने बच्चे हैं?
0: पांच।
1: पांच बच्चे हैं। जब पैदा हुए होंगे तो ललना भी गाया होगा, थाली भी बजी होगी, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं।
0: ललना तो ढेर बा, कौन ललना तोरा फासिल बोला
1: बोला जोन तोहरा अच्छा लगी।
0: दादा

0: सोट पीपर खैला पलंग चढ़ी बैठला हमारो छेकेला सब लोग हमारो छेकेला सब लोग।
1: अच्छा अब आप दोनों झूमर का प्रशिक्षण लिया है आपने इनसे, तो थोड़ा सा झूमर हमारे श्रोताओं के लिए बताएं कैसे गाती हैं।
0: पहला झूमर को गाईला सा, पहला झूमर तो बोली ना देवता लोग के महादेव के गा के सुहाग बोली ला सा
1: जी।
0: तो जब होश हम हई सुहाग के को बोलत है
1: बोला
0: छोकरा के है, जब हो सोहगवा बोआ न लागे, जब हो सोहगवा बोला न लागे, सोहगवा हो अपन रच के बनावल, सोहगवा हो अपन रच के बनावल, सोहगवा हो अपन रच के बनाव, जब हो सोहगवा जमाना लागे, जब हो सोहगवा जमाना लागे, सोहगवा हो अपन रच के बनाव, सोहगवा हो अपन रच के बनाव, जब हो सोहगवा बढ़ा न लागे, जब हो सोहगवा बढ़ा न लागे, सोहगवा हो अपन रच के बनावल, सोहगवा हो अपन रच के बना। सोसे गा देखे जब हो सोहगवा।

0: गावा हो अपन रच के बनावल सोहगावा हो अपन रच के बनावा।
1: बहुत सुंदर आपने अपने गीत को प्रस्तुत किया। अब हम जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन से वाद्य यंत्र लेके जाते हैं। ढोलक है, लोटा चम्मच है, वो तो बजाते ही हैं, उसके अलावा
0: लीला लगी ना करताल चिमटा बाटे,
1: चिमटा बजाते हैं,
0: चिमटा बजाते
1: और करताल है,
0: करताल है,
1: और
0: मंदिरा
2: और वो है भी जो कापसे से हम बनाते हैं
0: बना।
2: वो खूब बजते हैं
0: बनावे ना,
2: वो जो बोतल के कैप्सूल है
1: हाँ।
2: वो उसे हम लोग डाल के बनाते हैं तो वो बचती है,
1: बचते हैं। तो ये सब आप अपने लेके जाते हैं जब गीत गवाई पे जाते हैं, या के जो जिनके घर पर कार्यक्रम है वे आपको उपलब्ध कराते
0: नहीं,
1: हैं?
0: हम लोग लेके जाते हैं, अपन
1: अपना लेके जाते हैं
0: सब,
1: क्योंकि आदत जो है
0: हाँ।
1: अपने यंत्र पे ज्यादा अच्छे से बजा हाँ। पाते होंगे
0: हाँ।
1: जैसे आप ढोलक बजाना हाँ। पसंद करती हैं तो अपनी ढोलक लेके जाती हैं और उसको कसे रहने के लिए क्या करती हैं?
2: वो उसमें अब तो वो जो रस्सी थी अब नहीं है, अब लोग ढाल कहे कैसे कहते हैं नाल की तरह है वो ढोलक, तो वो विष है उसे हमें
0: शेरे करते हैं तो
1: पहले रस्सी से कसते थे
2: हैं, अभी तक है भाई, अभी जब मैंने खरीदी तो वो नाल की तरह है
1: तो
2: उसमें विष है जो कहते हैं
1: तो
2: उसे हम लोग को अब रस्सी वाला नहीं मिलता उतना नहीं है,
1: उतना नहीं मिलता। देखिए यंत्र में भी परिवर्तन आ गया
2: हाँ।
1: पहले रस्सी थी
2: हाँ।
1: अब वो
2: हाँ।
1: नट बोल्ट वाला हाँ। हो गया
2: तो रस्सी वाला थे मेरी बस।
1: कौन सा अच्छा बजता था, वो या ये?
0: वो वाला
1: पुरानी चीज फिर भी ओल्ड इज गोल्ड।
2: बहुत अच्छे से बजते थे, उसे जोर से बजाना भी नहीं पड़ता था, थोड़े से बजाओ तो बजते थे अच्छी तरह बजते थे।
1: अच्छा हाँ। और आज परिवर्तन हो रहा है, कई लोग जो हैं गीत गवाई में जांबे बजाते हैं, आप क्या सोचते हैं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
2: जो नाचती है अभी के जो नाचने वाली हैं वो लोग चाहते हैं कि वो जांबे ज़रा खूब तेज से बजते हैं ना, इसलिए वो लोग कहते हैं थोड़ा जांबे भी बजाओ तो वो लोग उसका नाचना वो पैर अच्छी तरह घिस सके हैं। और हम लोग कहते नहीं ढोलक से तो इंसान बहुत अच्छे से नाच सकते हैं
1: हाँ, तो परिवर्तन हाँ, नहीं
2: परिवर्तन,
1: चाहते हैं
2: हाँ।
1: अच्छा अब हम आते हैं कि परिधान, जब आप जाते हैं कहीं कार्यक्रम में तो आपके कपड़े कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे से आप साड़ी पहन के जाएं, लहंगा चोली भी पहने तो अच्छे से ओढ़नी ओढ़ के जाएं, या के आज जैसे प्रचलन है कि बहुत छोटी सी स्कर्ट पहन के नाचना, या कैसा होना चाहिए परिधान?
2: नहीं, हमारे जो ग्रुप है वो रानी दीदी जी है, मेरी गुरु माँ है
1: जी।
2: हमारे ग्रुप में सब कोई साड़ी पहनते हैं, जो नाचती है वो लोग दो हैं पहनती हैं लहंगा, अच्छी तरह पहनती हैं,
0: अच्छी तरह
2: अच्छी इज्जत के साथ, वो ज़रा कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, उसका होड़नी भी है, कभी भी होड़नी भी अधिक सिर से डाल लेती हैं, नाचती है अच्छी से, और हम लोग साड़ी पहन के जाते हैं।
1: आप लोग साड़ी पहन,
2: हम लोग साड़ी,
1: आपको अच्छा लगता है?
2: हमें अच्छा लगता है।
1: और आप नहीं चाहती हैं कि इसमें कोई परिवर्तन हो?
2: और हम लोग तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जो नाचती हैं वो चाहती हैं कि वो लोग लहंगा पहन के नाचे,
1: वो लहंगा पहन के नाच,
2: लेकिन
1: लहंगा भी तो सुंदर
2: सुंदर
1: रूप से पहने, अपने शरीर को पूरा ढक के पहने तो अच्छा लगता है।
2: लहंगा से अच्छी तरह नाचती हैं वो लोग,
1: वो लोग नाच पाते हैं।
2: हमारे चार हैं, चार जो
1: तो हमें वाद्य यंत्रों का ध्यान रखना है कि हम अपने अच्छे से वाद्य यंत्र जो पारंपरिक यंत्र बजते थे उनको लेके बजाना है गीत गवाई में। हमारा परिधान सबसे अच्छा होना चाहिए ताकि हम इज्जत से सम्मान से गीत गवाई में जाएं और अपनी गीत गवाई को संजो के रखें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का भाग है, ये हमारी परंपरागत प्रारूप बदले ना उसका।
0: देखना ना हो अथी में फेसबुक में दिखता है कैसे नाच होता है ना
1: जी, आप देखती हैं फेसबुक?
0: एक दूध निकल जाता है हमें
1: फेसबुक पर देखते हैं
0: कब कब देखते हैं, मौका खोज के कुछ नहीं पापा देख ही ला सक क्या होता है यहाँ पर कौन सी होता है।
2: तो अब हम लोग जाते हैं गीत गाने, तो पहले उतना लोग गीत गाने देखने नहीं आते थे, आप सभी परिवार बैठकर गीत गाना गीत गवाई
1: देखते हैं, हाँ, उसमें भाग लेते हैं।
2: हाँ, वो लोग चाहते हैं कि देखे क्या हो रहा है क्या नहीं। कभी कभी परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं, वो लोग कहते हैं वो देवता देवी गीत गाते रहते हैं तो हम लोग परंपरा दीदी हमारे पाँच पाँच देवता देती है, वो महादेव गाते हैं शादी के, हम लोग 15 गाते हैं।
1: अच्छा।
2: फिर अपना सुमिरन जो है वो शुरू करते हैं।
1: फिर जो लोग वहाँ बैठे होते हैं उनकी मांग पे भी कोई गीत गाती हैं?
2: हाँ,
1: कि उन्होंने कहा आज हमें ये वाला गीत सुना दीजिए।
2: हाँ, कभी कभी है,
1: कभी कभी सुनाते हैं
2: तो हम लोग सुनाते हैं।
1: और उसमें हिंदी के गीत जो हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं वो भी गाती हैं?
2: गाती हैं, समय बाद में गाती,
0: बाद में
2: पिछला में
1: बिल्कुल अंत में,
2: अंत में
1: कार्यक्रम समाप्त होने की बारी आती है तब गाते हैं,
2: सभी भोजपुरी ही गाते हैं।
1: चलिए एक गीत के साथ कविश कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी।

0: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Geet, Nritya aur Parampara.
4: श्रोताओं चर्चा जारी है गीत नृत्य और परंपरा में. आज हम दो महिलाओं से बात कर रहे हैं जो कि गीत गवाई का हिस्सा हैं. अलग अलग स्थानों पर इन्होंने अपने गीतों का प्रदर्शन किया है, स्वयं गीत की रचना करके भी प्रस्तुत की है. अब हम

0: जानना चाहेंगे रानी जी से कि आप इतने वर्षों से गीत गवाई से जुड़ी हैं, जो कि शादी से पहले एक दिन गीत गवाई होती है, उसमें अंतर भी आ चुका है जो आपने हमें बताया, पर आप ललना के लिए भी जब किसी महिला को के घर में संतान का जन्म होता है वहाँ पर भी आप ललना गाने जाती हैं, तो ललना गाने के लिए कोई अलग विशेष प्रावधान है या के जैसे गीत गवाई में होता है वैसे ही है?
1: सौजे करे चाहे राग ललना के लल संझा के गई बो तो संझा के चाहे ललना में गवे के इस बोलिए
0: हाँ
1: संझा

0: आवाना।
1: अब संतान में अंतर होता है, जैसे किसी के घर में पुत्री का जन्म हुआ है, किसी के घर में बेटे का जन्म हुआ है, तो उसमें भी गीतों में अंतर पाया जाता है।
0: हाँ, थोड़ा बहुत किसी
1: थोड़ा सा
0: कैसे राम के दलबा तो प्लस पर सीता
1: के बोलबा।
0: जनकपुर में बाजेला बधाई सीता मैया जन्म ले ले हो, जनकपुर में बाजेला बधाई श्री सीता मैया जन्म ले ले हो, अहो लला झुनो अहो नहीं भुला गई तेरा मासो तो नहीं ना मासो तो है।
1: चलिए, बहुत सुंदर आपने अंतर बताया कि जहाँ पर पुत्र का जन्म होता है वहाँ पर राम का उदाहरण दिया जाता है, और जब पुत्री का जन्म होता है तो सीता
0: जनक घर में
1: सीता मैया का आगमन हुआ।
0: तरुण अम्मा झुलाई।
1: आप देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं रामचरितमानस या रामायण से कैसे जुड़ी हुई हैं। श्रोताओं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा परंपरागत है कि हमारे पूर्वज जो आए इस देश में, वे अपने साथ कंठस्थ करके जो गीत लाए, जो गीत गवाई में आज चलते हैं, उनमें परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन भी अच्छे के लिए होता है, पर उसका प्रारूप नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। और हमारी संस्कृति में रामचरितमानस, रामायण कितना आज भी, आज के परिवेश में भी कितना सम्मानित है, और हम उसी के मार्गदर्शन पर अपने कार्यक्रमों को, अपने घर में संस्कृति को संजोते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। आप कौनेमास पावे में प्रचलित हैं कि आप गीत सिखाती हैं, ये दो वर्षों से आप सिखा रही हैं और आप इनसे सीख रही हैं, तो क्या आज कोई पुस्तक है जिसमें से आप सीखती हैं, या आपने तो कहा कि आपको तो सभी गीत कंठस्थ हैं, आप उनको सिखा देती हैं, वे आगे से वो लिखें, फोटोकॉपी करें, या के उसको रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल पर रिकॉर्ड भी कर लेते हैं जो भी गुरु माँ सिखा रही है, फिर घर जाके आप अभ्यास करती हैं?
2: अभ्यास करते हैं
1: रोज
2: है, पुस्तक है।
1: अच्छा, पुस्तक है,
2: जैसे दीदी गाती है वो पुस्तक में बराबर नहीं है
1: जी,
2: वो थोड़ा सा चेंज है,
1: थोड़ा अंतर है।
2: हाँ, अंतर
1: उसमें
2: है।
1: अंतर क्या अंतर पाती हैं आप?
2: वो बोल अंतर, उसमें बोल,
1: बोलों में अंतर है।
2: बोलों में अंतर है, कहों कहों पर बोलों में अंतर है, तो हम जो गुरु माँ हमें सिखाते हैं वही सीखती हैं।

0: जो उसमें लिखा हुआ है वो
1: नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाता है ना।
0: अच्छा, क्योंकि आप इनके साथ गीत गाने जाती हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
1: एक ही तरह के गीत जो गुरुमा हमें सिखाते हैं वही गीत
0: वही सीखते हैं। आपने कहा कि आपके 15 से 20 छात्र हैं जो आप सीखते हैं, हर सप्ताह तो नहीं होता होगा ये?
1: हर सप्ताह है, छोटा सा एक स्कूल में जाती है वो साउथ सुशांत में, वहाँ हर सप्ताह है,
0: सप्ताह में एक दिन आप जाती हैं, घर के काम जल्दी जल्दी किए और फिर वहाँ जाकर सिखाती हैं।
2: घर पे काम नहीं ना ढेर माँ।
0: अच्छा,
2: मेरे बेटा है तो घर बाहर जाता है, सब घर बाहर देते हैं, सब चीज धो धा के पूजा करके अपन काम पर जाता है
0: जी।
2: पतो भी है तो वो उठ के अपन पारे स्नान करके जाते हैं, काम पर
0: जाते हैं, सभी काम पर चले जाते हैं। आप घर में सब देख के फिर उसके बाद
2: सोशल में
0: जाके सिखाती हैं, आप समय निकाल पाती हैं। इसमें आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, गीत गाना, नाचना,
2: सब
0: या के प्रशिक्षण देना?
2: सब कुछ
0: क्योंकि आप उससे जुड़ी हुई हैं। आपकी जड़ें वो
2: मज्जर है, जड़ी हम रासीन।
0: बहुत अच्छा आपने कहा। आप सीखने जाती हैं, हर सप्ताह जा पाती हैं?
1: अभी तो हर सप्ताह नहीं जाती हूँ, जाती हूँ अभी तो बीमार थी
0: जी,
1: अभी ठीक हूँ तो अब जाऊंगी
0: जी।
1: और आगे जाएंगे और सीखेंगे दीदी से। अब एक है झूमर सीखी है, एक दो झूमर हैं वो लोग हम जानते हैं, और एक आध दो गीत है देवता देवी के जानती हूँ, झूमर अच्छे तरह से जानती हूँ,
0: झूमर अच्छे से जानते हैं। अभी मेरी बातचीत हो रही थी आपसे तो आपने कहा कि पहले पुरुष नहीं आते थे गीत गवाई में, तो पहले कैसा था और आज तो सभी मिलके बैठ के गीत सुनते हैं सुनाते हैं, पर पहले कैसा था?
2: पहले के जमाने बहुत सही रहा, बहुत निमन रहा।
0: सही से आपका क्या मतलब है?
2: सही कौन ची सब लोग अहन सा अपन लगन खोल के नचियन सा, सब पुरुष जो आंगना में एक जना रिदो हटा के देखियन सा ना, अब वो बोली ए तोर मैडम नाचत हल, ए तोर औरत ऐसे नाचत रह, वहाँ नाचत हल देख ले रही कहीं जाए देवे लगे आगे के आदमी लोग, दादी नानी जो रह
0: कमरा बंद हो जाता था।
2: हाँ, कमरा बंद हो जाए तो तुरु पर देखियन से ना
0: आंगन में अंदर ये आयोजन होता था।
2: हाँ,
0: आजकल तो पंडाल लगे होते हैं,
2: तो हाँ, पंडाल में होता है,
0: पंडाल में होता है, पर पहले आंगन में होता था, आज तो हॉल भी है,
2: अब तो हॉल में जाती है
0: क्योंकि फ्लैट सिस्टम आ गया, छोटे छोटे घर हैं तो हॉल में होता है ये प्रावधान, पर पहले अपने आंगन में अपने घर में होता था।
2: घर में कुछ छोटे गीत अपन छोटे घर बा जवन, हाँ। तो आदमी बोला नहीं हम अपन गीत गवा के घर में से अपन लड़का निकाल के हॉल में लेके जा शादी करे, कहे बोले ओकर देवता देवी ओकर बड़ा छोटा के जगह के अंगना में बैसा के
0: अपने घर में। हाँ, जी, हॉल में प्रावधान करने से पहले अपने घर में गीत गवाई करके देवी देवता,
2: हाँ, देवी देवता के बोले सा देवी माँ हमारे धरी भर

जी लिपिला धर्म दुआर जी अब याव धरती मैया बैस मोरे अंगना हो बैस मोरे अंगना हो आज घरे पहिला बियाह जी। तो फिर बोली अब याव सूर्य देवा बैठ मोरे अंगना हो बैस मोरे अंगना हो आज घरे पहिला बियाह जी। अब या

0: जी आप सब देवता देवी के जगावा, दुर्गा माँ के बैसावा, लक्ष्मी माँ के बैठावा, तब अपन लेका लेके निकलवा शादी करे।
1: खातिन के मजा जस्सी के मजा सब मिशे लोग जितना मर्द लोग रहल वो लोग के नहीं रहल दुआ के मजे सब जिस स्त्री लोग सब जितना वो लोग के थी रहल करे कि सब लोग नाच गाना सब स्त्री
2: महिलाओं से हमारी परंपराएं, महिलाओं से हमारी संस्कृति जिंदा है, भाषा जिंदा है, क्योंकि महिलाएं सशक्त रूप से अपना योगदान देती हैं हम अपनी संस्कृति को बचाने में, अपने परिधान से हो

0: चाहे संस्कारों से हो, चाहे नियम हो, जो कि गीत गवाई के नियम भी तो बने हुए हैं, उनको संजोते हुए अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और अपनी परंपराओं से जोड़े रखते हैं, जड़ों को सशक्त करते हैं। पर आपने बहुत अच्छा कहा कि पहले 40 वर्ष पूर्व या 45 वर्ष पूर्व, क्योंकि आज आप इस आयु में आ चुकी हैं, 45 वर्ष का आपका अनुभव है, तो वे अनुभव आप महिलाओं में बांट रही हैं, संजो रही हैं। ये तो अब 10-12 वर्ष से गीत गवाई हमारी हाँ। यूनेस्को की धरोहर हाँ। बनी है
1: हाँ।
0: पर आप लोगों ने इतने वर्ष मेहनत करके इसको संजोए रखा
1: संजो
0: है
1: रखे हाँ।
0: आपको इस पर गर्व है? बहुत खुश हैं
1: हाँ, बहुत खुश
0: और इसको आगे बढ़ाना चाहती हैं
1: हाँ।
0: तो आप
1: बढ़ाना चाहते हैं हम
0: जी।
1: जब हमने जन जानी ला तो संगत का लड़का लोग के बोले सीख लो बांट सर बांट दो थे लो सर तो के काम है एक दिन नहीं रहा तो तुम के काम ही सब लेके चलो सर।
0: अच्छा आप जिस सौंत सोशल या जहाँ भी आप सिखाती हैं वहाँ पर कोई ऐसी महिला है कल आप उसको देना चाहेंगी कि वो सिखाए?
1: हाँ बोल गल बा बोल रही सर ये तू सीख ले वो तक छोटा बुके तो लूँ सिखाया कोई के।
0: आप अपने लोगों को आगे बढ़ा पाएंगी और ये धरोहर मतलब समाप्त नहीं होनी
1: नहीं,
0: चाहिए
1: समाप नहीं
0: ये बढ़ते रहनी चाहिए
1: नाम चली हम लोग का नाम चलते रही बड़ा छोटा सबके हमने के बड़ा दादी लोग के नाम हमने अपने से नहीं सीख ले हमके बड़ा दादी लोग दादा मामा लोग नानी लोग सीख गई बात तब थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते अब इतना पर तब अब हमने बाँटा थे सर तो तू लोग लो सीख भरसक बैला लिख सीख लेके चल
0: और वो करती हैं आपका कहना मानती हैं
1: मानती
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आप आज इन लोगों को सिखा रही हैं कल ये लोग आगे बढ़ाएंगी क्योंकि ज्ञान तो बांटने से और बढ़ता है बढ़ता जाता है और आप अपनी परंपराओं को बचाकर अपनी संस्कृति को बचाकर इसको एक धरोहर का सम्मान तो दिए हुए हैं पर उसको बढ़ाए रखने की भी ललक है आप में कि आप गीत गवाई के साथ चलते रहना चाहिए आपको। बहुत अच्छा लगा आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ बांटी कि ललना किस प्रकार है झूमर किस प्रकार है और देवी देवता के गीत किस प्रकार हैं जिनसे आवाहन करके हमारा कार्यक्रम हमारे घर में जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आज गीत गवाई बहुत बड़े लेवल पे भी होती है और गीत गवाई 10 महिलाओं के साथ भी हो सकती है क्योंकि आजकल पूरा परिवार बैठता है तब गीत गवाई के लिए लोग आते हैं अपनी अपनी रचनाएं सुनाते हैं। कोई ऐसी रचना है जो कि लोग मांग करते हैं कि आप ये सुना दीजिए कौन सा ऐसा गीत है?
2: वो मांग करते हैं वो जो जवान है वो नाचना चाहते हैं तो वो मांग करते हैं
0: कौन सा गीत
2: माँ से वो है
1: पुदीना के गीत मांगता है ना
0: पुदीना वाला गीत मांगते हैं जो आपने लिखा
2: पुदीना वाला और जुबेदा
0: जो रामबाराम तोहल जी ने गाया है
2: गाते हैं और खूब नाचते हैं
0: युवा पीढ़ी उस गीत को की मांग करती है और उसके बाद वो गाते हैं तो इतनी सारी गीत गवाई में गीत हैं पर एक दो गीत ऐसे हैं जो कि बहुत प्रचलित हैं और युवा से लेके बड़े लोग उस पर नाचते हैं गाते हैं प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सब ने इतनी सारी जानकारियाँ बांटी और गीत गवाई पर गर्व है आप लोगों को कि आप उससे 80 वर्ष की होते हुए भी आप 70 वर्ष की होते हुए भी गीत गवाई से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है कि आज की महिलाएं इतनी उम्र होते हुए भी गीत गवाई से जुड़ी हुई हैं गीत को सिखा रही हैं गीत गवाई के लिए आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगा इन जानकारियों के साथ आप लोग ने अपना सहयोग दिया अपना समय दिया यहाँ आकर। रानी जी आपको धन्यवाद देंगे शीला जी आपको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे कि आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़ी। कार्यक्रम में कविश उरुसा और महादेवन जी हमारा सहयोग दे रहे थे आप तक श्रोताओं ये कार्यक्रम पहुंच पाए। फेसबुक लाइव से भी जो जुड़े हुए थे उनको भी मेरा आभार है और श्रोतागण जो RM3 पर जुड़े हैं आपको भी आभार प्रस्तुत करती हूँ। आज के लिए शुभ संध्या
2: धन्यवाद।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। डीपीपी दफ्तर ने इंटरमीडिएट अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के उस फैसले के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अपील दायर की है, जिसमें डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई है। ये अपील 14 आधारों पर की गई है, जिसमें अदालत के कानूनी तर्क और उसके निष्कर्ष दोनों को चुनौती दी गई है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के वकीलों को अपील के नोटिस की कॉपी मिल चुकी है। डीपीपी ने ये भी संकेत दिए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई तय करने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि अपील की तेजी से समीक्षा करना न्याय के हित में है। फेडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन यानी यूनिवर्सल पेंशन बनाए रखने का समर्थन किया है। आज सुबह पोर्ट लुइस में लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। विजय बंधन ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े पब्लिक गैदरिंग एक्ट में प्रस्तावित सुधारों की आलोचना की। मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटजी 2026-2030 का मकसद लाइसेंस पाने में आसानी और डिजिटल एसेट्स विकसित करके अफ्रीका में मॉरिशस को एक प्रमुख फिनटेक हब के तौर पर मजबूत करना है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की तकनीकी मदद से तैयार की गई इस दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर कल लॉन्च किया गया। ये रणनीति 6 स्तंभों पर आधारित है: रेगुलेशन, मूल ढांचा, प्रतिभा, निवेश, सहयोग और समावेश। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह यूके भीषण गर्मी का कहर झेल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज उत्तरी वेल्स और उत्तरी यूके में बारिश की चेतावनियां जारी की गई हैं। कई इलाकों में बिजली की आंधियों का अनुमान है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड बेल्वेडेयर में, रॉयल रोड बेल्वेडेयर में 42 साल की 42 इयर्स ओल्ड श्रीमती ज्योति चतुआ पैदाशी नाम सुकन, जो करिश्मा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के सवा ग्यारह बजे इनके पिता श्री राजेंद्र सुकन के मकान रॉयल रोड बेल्वेडेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदवास की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट क्वार्टर पास्ट 11 AM। कालीमाई रोड रोशनवामी 63

0: साल की, 62 years old है श्री कृपाचार्य ठाकुर सिंह, श्री कृपाचार्य ठाकुर सिंह जो मेहतानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमार रोड गुशनौर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गुशनौर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। मामबहाल रोड बुआशेरी में, मामबहाल रोड बुआशेरी में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती भानुमती माताओ, श्रीमती भानुमती माताओ जो भानु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके भाई श्री विजय माताओ के मकान मामबहाल रोड बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गाँव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: आज की चर्चा।
5: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से एक बार फिर नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में जो कि आज की चर्चा। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हम एक नए विषय के साथ आते हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है घरेलू हिंसा। और हमारा ये कार्यक्रम जो है इसमें आज हम महिलाओं के ऊपर हुए जो कहते हैं ना वायलेंस, जो हिंसा है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज की हमारी जो मेहमान हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, स्वागत करते हैं हम हमारी आज के कार्यक्रम में हमारी वकील साहिबा दूरदर्शनी रूप सुधा, सुधा जी का नमस्ते।
6: नमस्ते विदिता जी,
5: कार्यक्रम में स्वागत है आपका एक बार फिर से।
6: धन्यवाद।
5: तो आज हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करने जा रहे हैं और जब हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर महिलाएँ जो होती हैं वो इसका शिकार होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे भी होते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं ना कि जो पुरुष हैं वो भी इसका शिकार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर उन पे ज़्यादा जुल्म होता है। तो जब हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करते हैं तो वो किसके बारे में हम बात करते हैं?
6: आपने सही कहा, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो कई बार ये महिलाएं के लोग सोचते हैं ओ डोमेस्टिक वायलेंस तो ये एक वुमन अब्यूज है, महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन कई बार जो होता है वो पति भी होता है, पुरुष भी होता है और बच्चे भी इसमें आते हैं
5: जी।
6: हाँ, तो ये जैसे हमने कहा है डोमेस्टिक तो ये घर में होता है। तो जैसे कि जो कानून इसका रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। तो इसमें इसके अंदर ये डिफाइन होता है ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। कभी कभी कोई लोग सोचते हैं डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारना होता है, फिजिकल होता है, लेकिन नहीं, इस एक्ट के अंदर ये आपको बताता है कि इमोशनल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी होता है, फ्रेटनिंग भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होता है जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आता है।
5: तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हत्या के मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और अगर हम कानून की नज़र से देखें तो ये जो हिंसा आजकल चल रहा है, जैसे आप बता रही हैं कि उनके लिए कानून रखा गया है, तो कानून क्या करता है?
6: तो डिफरेंट सिचुएशन होता है, जैसे कि अगर एक महिला उसका पति उसको मारता है एवरी डे, तो वो क्या कर सकती है? तो पुलिस स्टेशन जा सकती है और एक प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट भी जा सकते हैं। कानून ऑर्डर्स हैं जो उसको कहता है कि तुम्हें ये मारना नहीं है, ये गलत करना है। अगर कोई बच्चा है उसका सेफ्टी क्वेश्चन, जैसे कोई मुश्किल है उस बच्चे के लिए, तो उस सिचुएशन के अंदर भी वो महिला वो एप्लीकेशन कर सकती है।

0: हैं, लेकिन क्या होता है कई बार ऐसे महिलाएं वो आगे नहीं बढ़ती हैं क्योंकि बाद में कहेंगे ये मेरा पति है, मैंने उसको माफ़ कर दिया. तो डिस्पाइट आप देखेंगे कितने केसेस हैं लेटली डोमेस्टिक वायलेंस में, लेकिन बहुत ऐसे सारे केसेस जो है जो हमें पता ही नहीं होता है जब तक उसका उस औरत ला उसका उसके हत्या हो जाती है. लेटली हमने सुना कितने महिलाओं के साथ की जान
1: जान गई है,
0: जान गई है. लेकिन कितने बार हमने सुना कि एक पत्नी ने उसके पति को जान से मारा, ये हम नहीं सुनते हैं.
1: हाँ, तो
0: इसीलिए
1: हाँ.
0: लोग सोचते हैं कि सिर्फ औरत के साथ होता है,
1: लेकिन जो सबसे पहले के साथ भी होता है. हाँ,
0: सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको आवाज उठाना है. जब तक आप नहीं बताएंगे किसी को पता नहीं होगा, और आपको भी नहीं पता होगा कि मुझे कौन सी मदद चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए. साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, पुलिस के पास जाना है, कोर्ट जाना है, वकील को देखना है. तो ये सिचुएशन पर निर्भर होगा,
1: क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो हमेशा से लाइक अपर हैंड होता है उनका, और महिलाएं जो होती हैं वो अपना घर, जैसे शादी होती है तो अपना घर छोड़ के पति के साथ आती हैं, उसके घर पे आती हैं, और वहाँ पे भी उसको सेफ फील नहीं होता. उसको भी लगता है कि अगर यहाँ से निकल गई तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि माता पिता के घर तो वापस नहीं जाऊँगी.
0: ये भी एक सिचुएशन होता है.
1: ये एक ऐसा है कि हर एक लड़की शादी करने के बाद अपने पति के घर पे जाती है, वहाँ पे नई फैमिली होती है, नए रिश्ते बनते हैं, उनको कहा जाता है कि ये तो अब से तुम्हारा घर है, कुछ भी हो तुम्हें इस घर को नहीं छोड़ना, तुम्हें वहीं पे रहना है. तो महिलाएं जो हैं उनके दिमाग में ये बिठा दी जाती है बात कि ये घर आज से आपका है और आपको यही से आपकी अर्थी निकलेगी. तो जब उन पे मारपीट होता है तो वो आगे बढ़ने से डरती हैं, बोलने से डरती हैं कि भाई अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी. तो ये पहला होता है. ज्यादातर जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए क्या है ना कि वो ओपन अप हो जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, उनको लॉ के बारे में पता होता है. लेकिन जो घर पे रहती है उनको सिर्फ घर का काम काज, बच्चा, परिवार, उनको बस
0: यही उनकी दुनिया होती है.
1: वो दब के रह जाते हैं. उनको पता है कि भाई हम काम नहीं करते तो हमें स्लेव बनना है, हमें यहीं पे काम करना है, नौकर बन के, कभी नर्स बन के सेवा करना है, और कुक बनना है, खाना बनाना है. उनके दिमाग में ये होता है, जो कि बहुत गलत बात है. लेकिन आजकल जब हम देखते हैं तो जो हमारी आज की पीढ़ी है वो उनकी सोच अलग है. उनकी सोच अलग है. आजकल के जो नौजवान हैं उसमें हम देखेंगे कि जो लड़के हैं वो भी घर का काम काज, क्योंकि वो हॉस्टल में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए,
0: और
1: हाँ माता पिता काम कर रहे हैं. तो बच्चे जो हैं घर पे वो सीख रहे हैं कि घर का काम काज करना, खाना बनाना, उनको पता है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. तो ये अलग बात है. लेकिन हम जब अभी बात करें केसेस के बारे में, ये रिलेट करते हैं उन महिलाओं के तरफ जिन्होंने सालों से सहा है. तो ऐसा होता है कि अगर उन्होंने मुंह खुला तो बस
0: और जो झापड़ मिलेगा.
1: हाँ, और जब हम बात करते हैं पुरुष की, अगर आपको कहीं दिखता है कि किसी पुरुष को मार दिया, पुरुष का इसलिए नहीं आता है ना क्योंकि हमेशा से वो पुरुष है, वो हमेशा कहते हैं अपर हैंड. हाँ, तो अगर उनको उनकी बीवी मार रही है तो अगर उन्होंने किसी बाहर वाले को बता दिया कि हाँ मैंने केस कर दिया, मेरी बीवी मुझे मारती है, तो उनके लिए एक शर्म की बात हो जाती है,
0: जैसे हम कहते हैं.
1: तो उनके लिए एक शर्म की बात हो जाती है ना, तो इसीलिए वो बताते नहीं है. लेकिन आप जब हम बात करते हैं अभी लॉ के बारे में, हम कानून के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कानून है महिलाओं के लिए वो पुरुष के लिए भी है.
0: हाँ, क्योंकि वो यूनिसेक्स है, ये कानून है. अगर आप पुरुष हैं या पत्नी हैं, ये कानून सबके लिए बना है.
1: तो ये डिस्क्रिमिनेटेड हम चाहते हैं कि नहीं आप है. उन पुरुष के लिए भी कुछ बताएं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जान जाने से अच्छा है कि आप जाकर अपने बारे में बता दें.
0: एग्जैक्टली, है ना? जैसे आपने कहा शुरुआत में कि जब लड़कियों की शादी होती है तो माता पिता कहते हैं जब तक तुम्हारा चिता नहीं उठेगा वहां से तुम नहीं आना. तो ये पुराने जमाने में होता था क्योंकि महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं थी फाइनेंशियली, एजुकेशन, फाइनेंस, ये सब प्रॉपर्टी नहीं था.
1: हो गई है अभी.
0: लेकिन ये जो डिफरेंस है पहले ज़माने और अभी के ज़माने में, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आप थोड़ा से एजुकेटेड होते हैं, या अगर एजुकेशन नहीं है तो एक बिजनेस भी कर सकते हैं. तो इस बदलाव के आने के बाद आप देखेंगे स्टैटिस्टिकली हमारे देश में डिवोर्स, तलाक जो है वो बढ़ गया है, और 90% या 80% एप्लीकेशन महिला

0: नहीं करती हैं क्योंकि ये आप देखते हैं एक चेंज है क्योंकि मैं अब नहीं सहूंगी क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार नाजुक से पाला है तो मैं क्यों एक आदमी को मुझे मारने तो ये एक बदलाव आया है लेकिन ऐसे भी महिलाएं अभी तक हैं जो आवाज नहीं निकालते हैं किसी को बताते नहीं है एग्जैक्टली या वो मतलब इन लोगों के साथ सासू माँ के साथ अत्याचार हो रहा है या पति के साथ अत्याचार हो रहा है तो आपने कहा इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या करना कानून पता नहीं है इसीलिए
1: वो पता है जब कोई कानून के बारे में नहीं जानते अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते तब वो मुंह खोलने से डरते हैं उनको पता नहीं है कि अगर आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे वो कहते हैं हाँ मुझे वकील के पास जाना पड़ेगा मुझे पैसे देने पड़ेंगे मुझे ये करना पड़ेगा मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा उनको पता नहीं क्या करना है तो अगर कोई महिला मान लीजिए कोई महिला है जो ये घरेलू हिंसा से गुजर रही है उनके उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है तो आप एक वकील हैं आप उनको क्या सलाह देंगे क्या बोलेंगे क्या करना है
0: सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है तो आजकल बहुत सारे उपाय हैं मिनिस्ट्रीज हैं हॉटलाइंस हैं इंटरनेट है आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं मेरे साथ ये हो रहा है
1: यूज करना नहीं आता उनको कुछ करना नहीं पढ़े लिखे
0: अगर ऐसे कोई आदमी है तो सबसे पहले ईजी है सबसे आसान तरीका है पुलिस स्टेशन जाना
1: जी
0: पुलिस स्टेशन जाना और कहना कि देखो मेरा पति मुझे मार रहा है तो मुझे एक केस करना है डिक्लेरेशन करना है अगर आपको वहाँ कोई मुश्किल हो रहा है पुलिस स्टेशन में तो आपको एक वकील को हायर करना है तो वकील आपके साथ जाएगा या जाएगी और आपको असिस्ट करेगा डिक्लेरेशन देने के लिए और सबसे ज़रूरी बात आपको एविडेंस रखना चाहिए अगर आपको सीरियसली बहुत गंभीर से मारपीट हुआ है तो फोटोज निकालिए एविडेंस रखिए अगर उसने आपको फ्रैक किया मैसेज पर तो वो मैसेज सेव कीजिए ये सब इकट्ठा कीजिए फिर आपको अगर आप पुलिस स्टेशन पहले जाएंगे फिर उसके बाद एक केस होगा तो जब हम कोर्ट जाएंगे तो एफिडेविट स्वेयर करना पड़ता है अगर आप एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगते हैं तो सबसे पहले एक क्रिमिनल केस हो सकता है जैसे कि असोल्ट या हरासमेंट जो भी है फिर साइड बाय साइड आपको एक सिविल केस भी कर सकते हैं जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर तीन ऑर्डर्स होते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर ऑक्यूपेशन ऑर्डर टेनेंसी ऑर्डर तो ये सब ऑर्डर क्या होता है आपको एफिडेविट स्वेयर करना पड़ता है तो आपको सब बताना होता है कि क्या हुआ मैंने क्या किया मैं हॉस्पिटल गई मैंने फॉर्म सेकॉन्ट्रीट लिया तो फिर आप कोर्ट जाएंगे तो कई महिलाएं जो होती हैं वो ये भी नहीं कर सकती
1: कोर्ट जाने से
0: डरते हैं पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं तो शायद आपको एक दूसरी मदद चाहिए जैसे मे बी एक साइकोलॉजिस्ट जो आपको ये हिम्मत देगा या सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा तब आपको जाके आप अपने लीगल हेल्प ले सकते हैं लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है तो मेरे पास आ सकते हैं या कोई भी वकील या अटोर्नी के पास जा सकते हैं
1: उनको लगता है कि उनको लगता होगा शायद कि हम घर से निकलेंगे जाएंगे किसी ने देख लिया तो फिर पिटाई होगी
0: हाँ, ये भी हो सकता है
1: ये भी हो सकता है कि उनको ये भी नहीं पता कि पता नहीं हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी
0: या नहीं लेकिन अगर आप किसी के पास जाएंगे मदद के लिए तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी पुलिस हो या वकील हो या कोर्ट हो
1: लेकिन पहला ऑप्शन पुलिस स्टेशन अगर आप
0: सबसे इमीडिएट इजी क्विकेस्ट अगर आपकी जान को खतरा है लेकिन अगर आप देखते हैं कि पुलिस नहीं आ रहा है मैं फ़ोन कर रही हूँ सिचुएशन बहुत गंभीर हो गया है तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकालिए अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे को के साथ लेकर एक दूसरी जगह जा सकते हैं अपनी माँ के साथ के पास या नेबर के पास
1: तो
0: अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं ये हम वेरी गंभीर और सीरियस सिचुएशन के बारे में बात कर रही है लेकिन ऐसे भी कोई औरत है जो या मर्द भी है जो अभी हमें सुन रही है जो एवरी डे इस टॉर्चर में जी रही है और कुछ नहीं कर रही है तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप आवाज़ उठाइए आप देखेंगे कितने बड़े कितने मदद हैं लीगली कितने लोग हैं आपको आपकी मदद करने के लिए लेकिन आपको सबसे पहले ये अवेयरनेस लाना होगा कि ये गलत है मुझे ये सहना नहीं है
1: तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस और मर्डर के बीच संबंध को आप इसको इसको आप कैसे देखते हैं
0: सबसे पहले
1: है ना क्योंकि जब वायलेंस होता है हो सकता है कि किसी को पता

0: भी नहीं होता कि जो महिला है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, अचानक से आपको लगता है कि मार दिया, कैसे मार दिया,
1: कैसे मार, क्यों मार दिया, कब से हो रहा है।
0: और कभी कभी इसको छुपाया भी नहीं, उसका पति तो बहुत अच्छा है क्योंकि महिला ने तो कभी कंप्लेन भी नहीं किया।
1: तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। मेरे जो एक्सपीरियंस और केसेस जो मैंने किया है, 90% जो पुरुष जो अपनी पत्नी को मारते हैं वो पब्लिक प्लेस में बहुत अच्छे लोग दिखते हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत स्वीट लगते हैं, लेकिन घर में अपने पत्नियों को मारते हैं। तो अगर आप एक दूर से देखेंगे इस कहानी को, आपको आश्चर्य होगा कि ओ ये अपनी पत्नी को मारता है। तो डिफरेंस क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस ये शुरुआत होता है और मर्डर अंत होता है। और ये दो डिफरेंट क्राइम्स होते हैं, मर्डर क्रिमिनल कोड के अंदर होता है और डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर होता है। तो अगर किसी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस, अगर वो जिंदा है तो वो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जाएगा, या एनी अदर क्रिमिनल ऑफेंस अगर उसके साथ हो रहा है। मर्डर तो वो आदमी या औरत अपनी जिंदगी से
0: हाथ धो बैठे,
1: हाथ धो बैठे, तो ऑब्वियसली ये मर्डर होगा। तो ये सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन शुरुआत होता है डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, एक थप्पड़।
0: यानी कि जिस दिन आपको एक थप्पड़ मिला, एक मूवी आई थी,
1: हाँ
0: थप्पड़,
1: या
0: एक मूवी आई थी
1: इनफ,
0: जिसमें वो सब कुछ करती है, बस वो एक थप्पड़ होता है
1: जो वो तलाक लेती है,
0: जो हाँ फिर वो डिवोर्स की कुछ लोग कहते हैं कि एक थप्पड़ ही तो दिया।
1: तो यही प्रॉब्लम है, एक थप्पड़ ही तो दिया, लेकिन आपको अपने आप को इतना चाहना है कि किसी को भी अलाउ नहीं करना कि वो आपको नीचा दिखाए या हाथ उठाए, तो ये आप पर निर्भर होता है।
0: यानी कि ये जो एक थप्पड़ है, वायलेंस यहीं से शुरू होता है,
1: यहीं से शुरू होता है, फिर दूसरी बार होगा, फिर तीसरी बार होगा।
0: लेकिन यहाँ पर आपने अगर उनका एक थप्पड़ माफ कर दिया तो कल आप उनको और एक थप्पड़ माफ करेंगी, फिर उसके बाद अब आपकी जान चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लो कि अगर कोई महिला जो है शादीशुदा है, शादी हो गई, घर पर है, जिस दिन उनको उसके पति ने एक थप्पड़ मारा, तो एक थप्पड़ के लिए वो पुलिस स्टेशन तो नहीं जाएगी ना। ये सोचने वाली बात है हमारे और
1: अगर
0: आपके बीच
1: में। पुलिस स्टेशन के पास नहीं जा रहे हैं, आपको सिचुएशन देखना है। अगर आपको अपने पति को या पत्नी को माफ करना है तो आपको बैठकर बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी
0: तो
1: है
0: दिया।
1: लेकिन ये फिर से नहीं होगा अगर आपको पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो एक थप्पड़ के लिए भी कोर्ट जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन आप पर निर्भर होता है आपको क्या करना है। लेकिन आपको पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाना है तो बैठकर बात करना है कि ये जो तुमने किया ये अच्छा नहीं है और मैं ये नहीं सहूंगी, अगर ये फिर से हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन प्रॉब्लम जो होता है, बहुत सारे लोग इस समस्या में रहते हैं सालों तक।
0: इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपको वो एक थप्पड़ मिला उस दिन आप उनको बिठा के बात करो कि सुनो अभी बता रही हूँ, अभी मारा, माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन इस थप्पड़ को मैं भूलूंगी नहीं। और याद रखना कि मैं नोट कर रही हूँ सब कुछ, तुम्हारा पहला थप्पड़ तुमने मुझे मारा है, फिर अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अगर ये धमकी दे दिया तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं मारते हैं किसी अपनी महिला को, अपनी बीवी को मारते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपने उनके दिल में ये डर बिठा दिया तो वो दूसरी बार अफोर्ड नहीं करेंगे उनको थप्पड़ मारने के लिए, मारने के लिए।
1: ये भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, आपको दो चार थप्पड़ और भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, यू नो इमोशनली ये जो पत्नी या पति है वो उस पौतने के चुंगल में होती है, के इन्फ्लुएंस में होती है।
0: ज्यादातर जो पत्नी होती है वो बड़ी इमोशनल होती है।
1: एग्जैक्टली,
0: क्योंकि महिलाएं जो हैं
1: वो आप माफ कर देंगे, ये मेरा पति है।
0: रिश्ते में महिलाएं कभी भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती।
1: नहीं,
0: दिल इस्तेमाल करती है वो, हमेशा सब कुछ दिल से करती है वो, अपना घर भी दिल। यानी कि जो भी शादीशुदा महिला जब भी अपने घर का कुछ भी हो उसमें वो अपने इमोशंस डाल देती है, इसीलिए उनको थोड़ा सा जैसे बेवकूफ बनाना आसान होता है। अगर मान लो पति ने एक थप्पड़ मार दिया, पत्नी बोला मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दिखाने, तो वो घुटनों के बल आ जाएंगे, आंसू रोने लगेंगे, हाँ तुम्हारी शादी हुई तुम भूल गए, मेरे गुस्से में था मैंने मार दिया, ये किया वो किया।

0: बार होगा,
1: दूसरी बार फिर होगा, है ना? तो ऐसे तो चलता रहेगा,
2: लेकिन ये आप पर निर्भर होता है अगर आपको ये सहना है। लेकिन कई लोग जो है क्या होता है, पहले इमोशनल अब्यूज होता है, इमोशनली जैसे वो गुस्सा करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे अगर वो गुस्सा कर रही है। इसीलिए कानून में ये लिखा गया है, ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनली भी होता है। अगर आप किसी को धमकी दे रही है, किसी को नहीं, स्पाउस, चाइल्ड ऑफ द स्पाउस जैसे कानून में लिखा गया है, या अनदर पर्सन जो सेम रूफ में रहते हैं, तो क्या है, जैसे कि आप जानते हुए किसी को धमकी दे रहे हैं, या किस अपने स्पाउस को कह रहे हैं मैं तुम्हें मारूंगा, या मैं तुम्हें, जैसे कि इंटिमिडेशन होता है, हरासमेंट होता है, स्टोकिंग होता है, जैसे कई लोग इंटरनेट का यूज करके मैसेज भेजते हैं, हरास करते हैं, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो क्यों कानून बदला, क्योंकि पहले सिर्फ फिजिकली था, तो इसके वजह क्या है कि रियलिटी में ये सब होता है, ये सब एक आदमी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देता है। तो इसीलिए ये सब जैसे ऐसे भी एक एग्जांपल है, जैसे अगर आप किसी को अपने स्पाउस को फ्रेट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी को डैमेज करूंगा या करूंगी, ये भी होता है। तो इस सब डर के वजह से कितने महिलाएं जो आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि इमोशनली उसने आपको ये इन्फ्लुएंस कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है।
1: और ये भी होता है कि हमेशा से क्या होता है कि मान लो कि पति का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, पत्नी को पता चल गया है ना, पत्नी को अगर पता चल गया और फिर उसके बाद पति जो है बार बार धमकी देता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, ये नहीं किया तो डिवोर्स दे दूंगा। यहाँ तक मान लो सोशल मीडिया पे उसने अपने पति के साथ कोई फोटो डाल दिया तो कहता है कि 10 मिनट में फोटो निकालो वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं ये इमोशनली वो उस महिला को अफेक्ट कर रहे हैं।
2: लेकिन सबसे पहले अगर आपके पति आपको कह रहा है कि अगर तुमने मेरे फोटो को नहीं निकाला मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, उस पत्नी को ही उसको डिवोर्स देना होगा, क्योंकि आप ऐसे इंसान को के पास कैसे रह सकते हैं जो आपको अपना पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, आपको फ्रेट कर रहा है। कई महिलाएं सोचे मैं बच्चों के लिए नहीं जाऊंगी,
1: एक्चुअली यही होता है, ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चों के लिए उनको सब कुछ सहना पड़ता है। यहाँ तक कई बार ये भी देखा गया है कि पति जो है उसका 8 साल उसका अफेयर चल रहा है, बाहर में है, बाहर में उनका चल रहा है, लेकिन पत्नी घर में है अपने बच्चों के लिए वो रह रही है। ये भी होता है कई बार,
2: ये बहुत ही गलत बात होता है, क्योंकि क्या होता है, एक बच्चा अगर उसकी माँ या पिताजी खुश नहीं है तो ये महसूस करते हैं। मैंने कई बार देखा है अपने कई केसेस में कि ये सब बच्चे इमोशनली अफेक्ट होते हैं, फिर क्या होता है, इन बच्चों को अच्छे रिजल्ट नहीं होता है स्कूल में, या वो खुद बुली बन जाते हैं स्कूल में, वो खुद मारपीट करते हैं या दूसरे बच्चे उनके साथ मारपीट करते हैं, ये मैंने कई बार देखा है। तो बच्चे के साथ अच्छा नहीं होता क्योंकि वो इस एनवायरमेंट में जी रहा है, वो सुबह उठ रहा है उसका पिताजी उसके माताजी को मार रहा है, ये ऐसे ही, तो ये सेम चीज करेगा, सेम बिहेवियर करेगा एक दिन अगर उसने शादी कर लिया तो, ये अच्छा नहीं होता है।
1: ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं नॉर्मली ये इनका कहना कुछ होता है करना कुछ होता है। तो जब हम बात करते हैं कि कोई महिला अगर इससे बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं जो क्या करती हैं, वो झुक जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके परिवार पे मान लीजिए उनके परिवार के कहीं कोई धब्बा ना आ जाए कि हाँ डिवोर्स कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तो चुप रहते हैं। ये सवाल है, लोग क्या कहेंगे, वो कहते हैं चार लोग, लेकिन ये चार लोग कौन है आज तक पता नहीं चला। तो इसीलिए महिलाओं से हम यही कहेंगे कि जब आप घरेलू हिंसा से गुजर रही हैं, जब आपको टॉर्चर किया जा रहा है, जैसा मैंने बताया ना कि आपको कि कभी कभी होता है कि महिला को पता होता है कि पति का अफेयर चल रहा है
2: और चुप रहती,
1: फिर भी वो चुप रहती अपने घर में रहती, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इमोशनली वो कहीं ना कहीं इमोशनली वो टूट रही है, और ऐसे में वो कई बार होता है कि वो गलत कदम भी उठा लेती है।
2: सबसे पहले ये आपने सही कहा कि वो चुप रहती है, सहम जाती है, क्यों, क्योंकि ये सब जो एक्शंस आपके, आपने एक बार इस इंसान से बहुत प्यार किया होगा
1: जी,
2: बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आपको

0: ये लगता है कि ये मेरे साथ कर रहे हैं तो शायद मैं ही गलत हूँ, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अटैक करता है. इसलिए आप किसी की, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी मदद नहीं कर पाएगा. तो आपको अपने आप पर काम करना होगा. कितने जैसे हम मूवीज देखते हैं, हाँ. क्यों होता है
1: आजकल बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज आ रही हैं
0: कि हाँ. आप आवाज उठाएं. जैसे ये पिंक मूवी था, अमिताभ बच्चन जो था, हाँ, जो कहता है अगर एक महिला ने ना नहीं कहा तो ये एक सेंटेंस है अपने आप में
1: जी.
0: तो अपने आप को इस सिचुएशन को बाहर निकालिए, मदद मांगिए. अगर आपके पास बच्चे हैं जो इस हालात में जी रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही निगेटिव होगा, या हेल्प होगा इमोशनली या एजुकेशन. आप देखेंगे कि ये बच्चा स्कूल में ठीक काम नहीं कर रहा है तो क्यों रहना है इस एनवायरनमेंट में, इस हिंसा के सिचुएशन घर में. क्योंकि आपका घर क्या है, आप एक दिन भर काम करके एक आपकी सेफ जगह है, लेकिन अगर ये आपके सेफ जगह नहीं है तो आपको वहाँ से निकलना है, आपको लेकर और आपके बच्चे को लेकर.
1: और ये भी है ना कि कभी कभी क्या होता है कि मर्डर जो है वो प्लान भी होता है कभी कभी. अगर आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं कभी कभी देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेती हैं, है ना. अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो घरेलू हिंसा होते हैं, कभी कभी पत्नी को मार दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद जब बर्दाश्त बाहर हो जाता है तो महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं. लेकिन कहीं देखो तो वो जानबूझकर अपना जान नहीं देती हैं. ये जो उनको फोर्स किया जाता है कि अब उनके लिए कुछ नहीं, उनको इतना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराया जाता है, उनके पास आगे कोई रास्ता नहीं होता. फिर वो क्या करती हैं, वो खुद की जान ले लेती हैं. लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी एक मर्डर होता है.
0: नहीं, ये मर्डर नहीं होता है,
1: एक फोर्स
0: सुसाइड होता है. इंडिया में एक कानून है सुसाइड के लिए, मॉरिशस में ये कानून नहीं है. लेकिन जैसे हमने एक एमिशन में ये बात किया था कि ये मर्डर नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस. अगर आपने सुसाइड किया, अगर आपके पास एविडेंस है, केस पर निर्भर होगा. लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप की मदद करनी होगी. जिंदगी में आपको बहुत सारी मुश्किलें होगी, कोई भी एज हो या कोई भी फेज हो, ऐसा नहीं होगा कि परफेक्ट लाइफ होता है. लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा.
1: हाँ, लेकिन ये तब होता है ना जब उनको कानून के बारे में पता चले, कानून उनके लिए क्या कर रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या क्या इंतजाम किया गया है. महिला तभी जाकर सुसाइड करती है, तभी अपनी जान देती है जब उनको लगता है कि अब बर्दाश्त से बाहर है, अब मेरे पास कोई
0: रास्ता नहीं है.
1: लेकिन उनको बताना जरूरी है. अभी कितनी सारी महिलाएं हैं जो इस समय हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी, हो सकता है कि वो घरेलू हिंसा से गुजर रही है और उनको लगता है कि भाई अब हम जिंदगी से उब गए हैं, अब हमें जीना ही नहीं है क्योंकि अब बहुत हो गया. बहुत नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी रास्ता है. अगर आपको लगता है कि घर में आपको इज्जत नहीं दी जा रही है, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपको दर्जा नहीं दिया जा रहे हैं पत्नी का, अगर आप काम करती हैं, आपके जितने भी पैसे हैं आपका पति वो आपसे छीन लेता है, क्योंकि किसी का हक नहीं होता कि आपकी कमाई पे वो आपके पैसे ले. क्योंकि बहुत बारी होता है जब पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होता है तो पति क्या करता है, पत्नी का पैसा ले लेता, कहता है हाँ ये किया वो किया वो किया, सारे पैसे खर्चे कर देते हैं, लोन लेकर किसी और को देगा, फिर उसके साथ पैसे लेगा. तो बहुत कुछ होता है ऐसे, पत्नी को लगता है पति ने लोन लिया है तो वो कंट्रीब्यूट कर रही है, जबकि पति क्या करता है, वो पैसा कहीं और लगा रहा है, अलग अकाउंट में उसके अलग से पैसे जा रहे हैं, वो अलग अलग चीजें कर रहा है जो कि आपको नहीं पता. एक रिश्ते में जहाँ पर पति पत्नी हो तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. मेरे पास ये बैंक अकाउंट है, मेरे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास ये है तो इतना पैसा है. अगर नहीं है तो नहीं, अगर दोनों एक दूसरों के बारे में नहीं. लेकिन कभी कभी पैसों के चलते भी महिलाओं का खून हो जाता है.

0: खून हो जाता है, सकते हो किसी वकील से मिल सकते हो, लेकिन मान लिया जाए एक महिला है, अभी उनके पति ने उनको मारा, ठीक है, तो वो निकलकर पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं, वहाँ पे जो फॉलो अप होता है, मान लो पुलिस स्टेशन गए शिकायत कर दी, तो पुलिस वाले घर पे जाते हैं, पति से मिलते हैं,
1: पुलिस वाले क्या कहते हैं, वो पति को ढूंढेंगे, फिर उसको कहेंगे आपके खिलाफ एक डिक्लारेशन है, तो आपको आपके डिफेंस में क्या कहना है, फिर पुलिस देखेंगे अगर इसके पास 10 सारे केसेस हैं प्रीवियसली, तो ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, तो उसको जेल भी हो सकता है, उसको बेल पर निकालना पड़ेगा, लेकिन डिपेंडिंग अगर उसके पास प्रीवियस कन्विक्शंस हैं या नहीं, तो फिर क्या होता है, डिक्लारेशन के बाद कहाँ जाएगा, वापस घर पे जाएगा, पत्नी उसको देखेगा, हाँ, और वो और गुस्सा हो जाएगा,
0: एक ही घर में रह रहे हैं,
1: तो ये क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस जो होता है वो आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर, क्या होता है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि आपको अपने पत्नी को मारना नहीं है, आपको उसके साथ दूर रहना है, ये सब कंडीशंस हो सकते हैं अटैच ऑर्डर के पास, अगर वो काम कहती है या विनर्स या ट्रिबेका या बागातेल, आपको वहाँ नहीं जाना होगा, 50 मीटर्स उसके पास दूर रहना होगा, तो ये सब कोर्ट कहता है, आपके पास पेपर भी होता है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कई बार कितने महिलाएं जिसकी जिनकी हत्या हुई है उनके पास प्रोटेक्शन ऑर्डर था। प्रोटेक्शन ऑर्डर एक कागज़ है, एक जज या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, तो आपको फिर सोचना है कि आप इस आदमी के साथ रहना है, अगर फिर भी वो आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं मेरे पास एक केस ऐसा था, एक महिला जो उसके पति पीने के बाद घर में सब कुछ मारपीट करता था और उसको पीटती थी, तो वो भाग गई घर से, फिर जैसे आपने कहा अगर आप मुश्किल में है तो आपके पास आंसर्स आएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके पास आंसर्स आएंगे, क्योंकि वो महिला मुझे देखने के लिए आई थी, मैंने उसको डिफेंड किया, फिर वो दूसरे घर पे रह रही थी अनोनिमसली, पति को पता नहीं था, ये बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं,
0: क्योंकि पति उसको मारना ही था,
1: वो उसको आपका कोई भी कानून डालेंगे, कितने भी सजा डालेंगे, वो रोज़ पीता है, उसको कानून के कुछ नहीं लेना देना है, अगर एक दिन होता है जैसे कि अगर उसको उसने अपनी पत्नी को हत्या कर लिया, तो वो ये सब कानून के बारे नहीं सोचेगा, क्योंकि क्या होता है ये पैशनेट क्राइम्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे किसी ने किसी को 20 बार
0: चाकू से
1: मारा, तो ये एक बार ही ख़त्म हो गया था, तो क्यों 20 बार होता है, क्योंकि उनके पास भी एक मेंटल या इमोशनल इशू होता है जो उनके काबू में नहीं होता है, तो फिर उसके बाद जब पुलिस आएंगे जेल जाएंगे तब वो ओ मैंने ये क्या कह दिया, तो ये बहुत देर हो जाती है। जैसे मैंने कहा एक पैशनेट क्राइम होता है, जैसे भी आप शुरुआत में ही अपने जितने भी रेड फ्लैग्स देखे हैं तो प्लीज़ उन पर एक्शन लीजिए, उन पर सोचिए कि उसके इसके बाद अगर मैंने इस इंसान के साथ शादी किया, मेरे कितने डिवोर्स क्लाइंट होते हैं जब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो वो पहले मारता था, पहले वो सिर्फ गुस्सा करता था, फिर एक बार एक थप्पड़ मारा, तो ये एक बार हुआ था, शादी के बाद ये और वर्स हो जाता है,
0: यानी कि शादी से पहले ही अगर आपको थप्पड़ मिलने लगे, आपको जलील किया जाने लगे, अगर आप को जैसे कहते हैं ना कभी कभी
1: इंटिमिडेटेड होते हैं या
0: लोगों के सामने बेइज्जती कर देते हैं आपकी,
1: या आपका बॉयफ्रेंड आपसे कह रहा है या आपका फियांसे आपसे कह रहा है मेरा फोटो सोशल मीडिया पर मत डालो,
0: तो
1: ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं, क्यों, अगर आप एक इंसान के साथ सच्चाई में जा रहे हैं रिश्ते में तो ये सब नहीं होना चाहिए, तो आप सोचिए अगर आप एक महिला हैं या एक पुरुष हैं, ये आप दोनों पर लागू होता है, आपको अगर ये कोई भी बिहेवियर हो रहा है जो आपके आप जानेंगे कि ये गलत है, एक फ्रेंड एक दोस्त के पास जाइए, अपने माता पिताजी से बात कीजिए, फ्रेंड के पास जाइए, किसी ना किसी को आपको मदद मिलेगी, लेकिन आपको कानूनी मदद भी लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि मैंने अपने आप के लिए खड़ा किया। हम रोज़ फ्रेंड्स के लिए बोलते हैं, नेबर्स के लिए मदद करते हैं, लेकिन आप अपने आप को आप हमेशा प्रायोरिटी में रखिए और हिचकिचाइए नहीं मदद मांगने के लिए।

0: तो जब हम बात कर ही रहे हैं अभी महिलाओं के बारे में, तो आपके पास पुरुष के लिए भी केसेस आए होंगे?
1: हाँ, कौन क्या कैसे, होता कैसे, है जैसे आपने कहा था शुरुआत में कि पुरुष क्या होता है, हमारे जो सोसाइटी है मॉरिशस में, पुरुष जब हम कहेंगे तो पुरुष स्ट्रांग होता है,
0: कहते ना बी

0: आपकी पत्नी आपको मार रही है तो आप क्या करेंगे? दोस्त से कहेंगे, वो आपको पर हंसेंगे।
1: हाँ,
0: पुलिस स्टेशन जाएंगे, कहते हैं ओ मैं ये यहाँ पर काम करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ या सीईओ हूँ, मैं कैसे कहूँगी, मैं कैसे कहूँगा कि मेरी पत्नी मुझे मार रहा है? तो ये एक टाबू सब्जेक्ट जैसे है, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप ने कितनी सैक्रिफाइस किया है, मैंने कितनी सैक्रिफाइस किया, तो क्यों एक एक आदमी या एक पर्सन के लिए ये सब बर्बाद करना? नहीं, आपको सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने पिताजी माताजी के बारे में सोचना चाहिए, फिर लीगली आप अपने आप के लिए फाइट कर रहे हैं। जो ऐसा एक क्लाइंट था मेरा, जो उसकी पत्नी ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज़ करती थी, तो फॉल्स एलिगेशन कि मेरे पति ने मुझे मारा,
1: हाँ,
0: या मुझ पर चिल्लाया, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है। तो फिर केस डाला, फिर पहली बार उसने वकील नहीं लिया था तो प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गया 6 महीने। फिर वो क्या करती हैं, 6 महीने कंप्लीट होने से पहले ऑन द 5th month शी विल लॉज अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि आपने कहा था ये मुझे मार नहीं सकता, ये उसने मुझे मारा। फिर दूसरा केस होता है, फिर तीसरा केस होता है, फिर उसको अपने जैसे जहाँ वो काम करता था वहाँ पर तुम बहुत छुट्टी ले रहे हो, सिर्फ कोर्ट जा रहे हो। तो मैंने उसको डिफेंड किया क्योंकि उस औरत के पास कोई एविडेंस नहीं था। आपको कोर्ट पे जाकर आपको बताना है जितने आपने डाला अपने एफिडेविट में, वो सेम टू सेम कोर्ट में आपको बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप भी सुनिए, क्योंकि ये भी एक ऑफेंस होता है। वो आपके जो अदर स्पाउस हैं वो आप पर केस कर सकता है, मजिस्ट्रेट आप पर चिल्ला सकता है कि आपने क्यों ये झूठा केस लगाया।
1: तो जो लोग झूठा केस करते हैं फिर उनको सजा मिलती है?
0: आपको एक केस करना होगा, एक डिक्लेरेशन करना होगा, तब उसके बाद कानूनी।
1: पति ने किया अपने पत्नी पर?
0: नहीं, हम केस जीत गए। तो फिर जैसे मैंने कहा था, प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, ऑक्यूपेशन ऑर्डर होता है। तो ऑक्यूपेशन ऑर्डर क्या होता है, मैं वो एप्लीकेंट जो होता है मजिस्ट्रेट से पूछेगा कि इसको इस घर से निकालिए। तो अगर आपका घर है लेकिन आप अपने पत्नी को मार रही हैं, तो कोर्ट कहेगा तो आप इस घर को छोड़कर चले जाएं, सिर्फ पत्नी और बच्चे रहेंगे। तो ये भी एक ऑर्डर होता है, और टेनेंसी ऑर्डर भी होता है। टेनेंसी ऑर्डर क्या होता है, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको एक घर रेंट, यू हैव टू पे द रेंट फॉर योर वाइफ अगर आप उसको मार रही हैं। तो ये भी एक ऑर्डर होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर।
1: चलिए, तो अगर किसी महिला को मान लिया जाए, उनको लगे कि उनको उनकी जान का खतरा है, तो वो क्या, उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मान लो उनका पति मारता है उसको, और उसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया, पुलिस वाले ने बात की कि पत्नी ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है, तो उनको ये प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है।
0: हाँ,
1: उसके खिलाफ भी अगर, उसके अलावा भी अगर पत्नी को लगता है कि अभी मेरी जान को खतरा है, क्योंकि
0: तो वो ऑक्यूपेशन ऑर्डर कर सकती है। ऑक्यूपेशन ऑर्डर क्या होता है, वो जो मारता है उसको घर छोड़कर जाना होगा। मारता है आपने या मारती है, कैन बी एनीवन।
1: तो जो मारता है उसको घर छोड़ के जाना पड़ता
0: exactly.
1: है। फिर महिला, और अगर उसके पीछे, अभी जैसे बताया ना कि उसके पीछे पीछे मान लो उसको थ्रेटन कर रहा है कि तुझे मार दूंगा, भले
0: तो ये आप पुलिस स्टेशन के पास जा सकते हैं, पुलिस के पास, और एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, फिर पुलिस उनको वार्न करेंगे। लेकिन पुलिस के भी एक सीमित होती है, वो हर आदमी को के पीछे नहीं जा सकता है। जैसे एक बार किया कि आपके पास एक कंप्लेंट आया है, आपको या उसको जेल में डालेंगे या डिक्लेरेशन लेंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले उसको सर्वेलेंस नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, कि जैसे वो आप दूसरे घर में जा सकते हैं या ऑक्यूपेशन ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आप वो आपको मैसेजेस में फ्रेट कर रहा है तो ये एक ब्रीच ऑफ इक्ता होता है। ये भी आप पुलिस के पास जा सकते हैं, या सोशल मीडिया जैसे देखते हैं बहुत सारे लोग इसका मिसयूज होता है। तो ये सब आपको एविडेंस रखना होगा, जब आप कोर्ट में जाएंगे या पुलिस स्टेशन में जाएंगे आपके पास एविडेंस होगा।
1: ओके, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बारे में। कभी कभी ये भी होता है कि जो इन लॉज होते हैं वो भी बहू पे

0: जुर्म करते हैं, है ना. हो सकता है कि उन बड़े स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्ट होना, जैसे कि मान लो कोई सुबह काम करने जा रहा है फिर उसके बाद शाम को काम पे आ रहा है, तो उनको जैसे कि सब कुछ उसी को करना पड़ता है, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, कहीं ना कहीं ये भी, क्योंकि वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे सो रहा है ना, तो उसको काम भी करना है, बाहर घर का काम भी करना है, और उसको गालियां भी पड़ती होगी, तो ऐसे में वो क्या करे. मान लिया जाए पति कुछ नहीं बोल रहा है
1: सासू माँ के खिलाफ,
0: हाँ, तो ये भी होता है. कई ऐसे केसेस आए हैं आपके पास?
1: सबसे पहले ये जो आपने एग्जांपल दिया कि
0: नहीं, हम लोग हर तरह से सोच रहे हैं,
1: एग्जांपल दे रहे हैं, एक पत्नी काम करती है फिर सासू माँ उसको हरास कर रही है, पति कुछ नहीं कर रहा है,
0: पति कुछ नहीं बोलता, बस
1: वो केस कर सकती है, लेकिन वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर नहीं होगा. लेकिन अगर एक वो सेम घर में रहते हैं, एक बच्चे जैसे मदर इन लॉ मारते भी हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप इसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल केस होगा, जैसे कि हरासमेंट हो सकता है. लेकिन क्या होगा, आपको इस घर में रहना होगा ना, आपने पुलिस केस किया फिर आप सासू माँ के घर में रहेंगे, तो क्या होता है, ये और वर्स हो जाता है. सबसे बेस्ट एडवाइस होगा कि आप सासू माँ के साथ ना रहें, क्योंकि अगर आपके पास वो हिंसा कर रही है ना, हरासमेंट हो रहा है. लेकिन अगर आपको रहना है, अगर आपको पुलिस केस करना है, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना होगा.
0: बापरे. चलो ठीक है. और
1: लेकिन अगर एक कोर्ट ऑर्डर देने से पहले ये बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, जैसे मेरे पास है वो देखेंगे, अगर कोई बच्चा के साथ जुल्म हो रहा है या लाइकली टू हैपन, अगर आपने एक फ्रेट किया कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा या एक झापड़ मारूंगा, तो ये सब कोर्ट देखेंगे. तो कोर्ट कैसे देखेंगे, आपको एविडेंस लाना होगा ना, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज.
0: लेकिन बच्चे भी तो ऐसे हैं ना, कि बच्चे अगर बच्चे को अगर आपने डरा धमका के बड़ा किया है, और किसी दिन अगर आपने बच्चे को मार दिया, बच्चा तो डर जाएगा. फिर बच्चा जब बोलेगा अगर तुम पुलिस के पास गए तो सोच लो तुम्हें इसी घर में रहना है.
1: हाँ,
0: तो
1: लेकिन अगर आप बच्चा वो डिक्लारेशन नहीं देगा, आपको देना होगा. अगर आप एक माँ हैं या पिताजी हैं, अगर आपके बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं, ऑथोरिटीज़ हैं मॉरिशस में, जैसे CDU, चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट, फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट, आप इनके पास भी जा सकते हैं अगर आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, तो क्योंकि उनके पास एक ड्यूटी है आपको सुनने के लिए, आपके लिए एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. तो अगर बच्चा है, चाहे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं.
0: यानी कि महिलाओं के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस उनको पता नहीं कि उनको कहाँ जाना है.
1: वकील के पास जाइए, फैमिली प्रोटेक्शन के पास जाइए, CDU के पास जाइए, एटलीस्ट आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है. अगर आप इस मिशन को सुन रही हैं, तो आपको पता हो गया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
0: अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया, तो बाद में बहुत देर भी हो सकती है, आप अपनी जान से भी जा सकते हैं. और ये भी है ना कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं आजकल, वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है. जब पत्नी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, मान लो 20 साल की शादी है, पति पत्नी साथ में है, पत्नी जो है उसको नौकरी में उसका ओहदा बढ़ गया है,
1: भी होता है कई बार.
0: हाँ, ये भी होता है कि इसके चलते पति जो है अपने आप को छोटा फील करने लगता है, फिर घर में झगड़े होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हिंसा शुरू हो जाती है, गाली गलौज होना शुरू हो जाता है, मारना पीटना हो जाता है, क्योंकि उसको बताना है कि तुम हमेशा मेरे
1: औरत हो, तुम मेरे नीचे हो. तो ऐसे भी केसेस होते हैं, जैसे कि अगर महिलाएं एक CEO है या डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो वो क्या कहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाती है, लेकिन घर में मारपीट हो रही है, और वो केसेस नहीं करती है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे.
0: एग्जैक्टली, बात यही आती
1: है. ये बहुत ही गलत बात होती है. आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है. अगर आप अपने आप को नहीं चाहेंगे, अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा. कानून भी नहीं, वकील भी नहीं, पुलिस भी नहीं.
0: आपको अपने लिए कदम उठाना
1: चाहिए.
0: और जब हम एक बार फिर हमारी जो बहनें सुन रही हैं हमें और हमारे भाई भी जो हमें सुन रहे हैं, जो माता पिता हैं अपने बच्चों को आपको यही

0: खाना है कि जब शादी करो अगर पति ने थप्पड़ मारा तो फिर चुप मत रहना, बताना कि पति ने थप्पड़ मारा और आपको बिठा के अपने, कभी कभी होता है ना माता पिता उसमें शामिल नहीं होना चाहते, तो हमें लगता है कि अगर कभी किसी पति ने अपने पत्नी को थप्पड़ मारा तो उनको बिठाकर लड़की के जो माता पिता हैं
1: बैठकर बात करनी
0: देखो
1: चाहिए।
0: अभी थप्पड़ मारा
1: और हम ये नहीं सहेंगे।
0: हाँ, हो सकता है आज आपने एक थप्पड़ मारा, कल दो मार सकते हो, किसी दिन मेरी बच्ची की जान भी ले सकते हो, इसीलिए हम अभी आपको बता रहे हैं कि एक बार मार दिया ठीक है, हम माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका अंजाम गलत होगा।
1: जाएंगे, हाँ।
0: अगर ये बातें हो गई, मुझे तो लगता है शादी से पहले ही अगर आपने लड़के को बता दिया या लड़की को बता दिया तो वो कुछ भी करने से पहले डरेंगे।
1: सबसे जरूरी यही है,
0: आपको लगता है
1: आजकल के जो कपल्स हैं वो बात नहीं करते हैं,
0: काउंसलिंग नहीं होती है ना,
1: काउंसलिंग नहीं होती है, उसको पता नहीं शादी क्या होती है। शादी कॉम्प्रोमाइज होता है, जैसे कि मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन आपको सारे रूल्स, आपको जैसे मारपीट पसंद नहीं है, चीटिंग पसंद नहीं है, आपको कहना चाहिए मुझे ये सब पसंद नहीं है, अगर तुम ऐसे इंसान हो तो हम आगे जा सकते हैं। कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन आपके जो गट फीलिंग होगा, आप जैसे देख रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रहा है या कर रही है, आपको यू नो थिंक अगर मुझे ये शादी करनी है या नहीं करनी है।
0: ये भी होता है ना कि कभी कभी मान लो कोई खूबसूरत लड़की है तो लड़का को लड़की चाहिए,
1: हाँ,
0: तो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते, और कभी कभी लड़की अगर किसी लड़के को देख लिया तो लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि कैसा लड़का है।
1: कभी कभी बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, जैसे मैंने कहा कहीं भी कितने भी जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं वो पुरुष बाहर में बहुत सबसे स्वीटेस्ट पर्सन होगा, ये एक साइकोलॉजिकल या चाइल्डहुड ट्रोमा जैसे भी कहेंगे उसके अंदर है, सिर्फ उसके पत्नी या उसके पति को पता होगा कि वो कैसे इंसान है। जब तक आप किसी के साथ नहीं रहेंगे आपको पता नहीं होगा।
0: वो कहते हैं ना कि वो ना कहते हैं ना कि जूते में कील कहाँ चुभ रहा है पहनने वाले को पता चलेगा,
1: आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाहर से जूता बहुत सुंदर
0: है, महंगा है, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा। जैसे हम कहते हैं ना आजकल की जो शादियां होती हैं, शादी जब हम कहते हैं तो शादी होते हैं डिजाइनर लहंगा,
1: डेस्टिनेशन
0: वेडिंग, डेकोरेशन कैसा होगा, खाने में क्या होगा,
1: कौन कितना बड़ा होगा,
0: कौन सा मेकअप आर्टिस्ट आएगा मेकअप करने, उनको लगते हैं शादी ये है, उनको नहीं पता कि शादी क्या होता है। तो शादी से पहले अगर काउंसलिंग कर लें, बैठ के बात कर लें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और स्पेशली ये भी है कि अगर कोई डिवोर्स्ड यानी कि किसी का डिवोर्स हो गया है तो आपको पहले जानना चाहिए कि डिवोर्स क्यों हुआ
1: है,
0: क्योंकि कभी कभी महिलाएं क्या होती हैं कि उनको लगता है कि हाँ लड़के ने बोला कि हाँ मेरी पत्नी तो ठीक नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो उसी में घुस जाती है और वो करेगा भी, फूल लेके जाएगा, तोहफे लेके जाएगा, पटाएगा, शादी करेगा, जबकि उसको पता नहीं है कि लड़की के पास इतना जमीन है, इतना जायदाद है। ये भी होता है, लड़की भले खूबसूरत ना हो, लड़की से भले प्यार ना हो, लेकिन लड़की के पास पैसा हो तो वो जो होते हैं वो किसी को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन असली गेम शुरू होता है शादी के बाद। शादी के बाद पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है, इसीलिए शादी करो, सोच समझ के करो, किसके साथ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और शादी करने के लिए प्यार है तो ठीक है और सिंसेरिटी है तो ठीक है, वरना पहले चेक तो कर लो, पहले बात तो कर लो। कभी कभी ये भी होता है ना, लड़कियां जब शादी करती है तो पूछती नहीं है पत्नी से आपने उनको क्यों छोड़ा, आपने डिवोर्स क्यों लिया,
1: और तो जब से इम्पोर्टेंट नो डोंट एक्सेप्ट एनी डोमेस्टिक वायलेंस,
0: एग्जैक्टली
1: ना कहना सीखिए, क्योंकि आपका शरीर एक मंदिर होता है जैसे हम कहते हैं, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना होगा अपने आप को, यू नो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो खुद को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और अभी हमारा जो कार्यक्रम है आज की चर्चा, यहाँ पर हमारे पास तो भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में हमारी जो महिलाएं उनके लिए मेन था अपने हक के बारे में जानना, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानना, शुरुआत कैसे होती है, आपको क्या करना है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अब क्लियर है। तो हम अपनी आज की हमारी जो मेहमान हैं वकील साहिबा दूरदर्शनी रूपसदा बस्की जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि
1: धन्यवाद मुझे निमंत्रित करने के लिए,
0: साथ आपने हमारे इस प्रोग्राम में सबको समझाया। हमारी महिलाएं जो हैं वो शायद धन्यवाद कहना चाहेंगी, तो उन सब

ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय श्रोताओं, हमारा जो आज का कार्यक्रम है, आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं समाचार अदिति के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थाई आरोप खत्म करना और मानवाधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रीय सभा में कल अटॉर्नी जनरल ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में बात की। डीपीपी दफ्तर ने इंटरमीडिएट अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स विभाग के उस फैसले के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अपील दायर की है, जिसमें डॉक्टर नवीन रामगुलाम के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई है। ये अपील 14 आधारों पर की गई है, जिसमें अदालत के कानूनी तर्क और उसके निष्कर्ष दोनों को चुनौती दी गई है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के वकीलों को अपील के नोटिस की कॉपी मिल चुकी है। डीपीपी ने ये भी संकेत दिए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई तय करने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि अपील की तेजी से समीक्षा करना न्याय के हित में है। इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस ने आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान बजट में जनरल इंश्योरेंस पर 5% टैक्स लागू करने के फैसले पर चर्चा की। संगठन के महासचिव वशिष्ठ रामखिलावा ने उम्मीद जताई कि ये नया टैक्स मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू न हो। उन्होंने पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी बात की। फेडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन यानी यूनिवर्सल पेंशन बनाए रखने का समर्थन किया है। आज सुबह पोर्ट लुइस में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्विट्जरलैंड और मेक्सिको की कई राहत और बचाव टीमें मदद के लिए वेनेजुएला पहुंची हुई हैं, जहां कल पेश आए दो सिलसिलेवार भूकंप में मरने वालों की संख्या 235 पार कर गई है और 4,300 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शुभ समाचार सुनिए। मैडम लोलो रोजबेल में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड श्री मुनेश्वर रामनोहर, जो ईश्वर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे श्री महेंद्र रामनोहर के मकान मैडम लोलो रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Center 95.5, North, South 95.6, East, West.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
2: आपकी चिट्ठी मिली आपकी चिट्ठी मिली। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 4:10 हो चुके हैं। ये रेडियो मनोरंजन का प्रसारण है और मैं हूँ रत्ना, आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम में, जहाँ पर आप ही के भेजे हुए खतों का हम यहाँ पर इस इन कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इतना ही नहीं, आपके किस्से कहानी जो आप खुद हमें भेजते हैं, बेशक या तो फिर चिट्ठियाँ या फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर हम कह सकते हैं कि मैसेज के द्वारा भी आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ बेशक जुड़ सकते हैं। वैसे आपको याद दिला दे, बिल्कुल रेडियो मनोरंजन का नंबर है 5250-6200। जी हाँ, 5250-6200, 5250-6200। साथ ही साथ आप यहाँ पर हमें कॉल भी कर सकते हैं 4028070। जी हाँ, 4028070। और आज की जो चिट्ठी है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बिल्कुल एक अलग प्रकार की ये जो चिट्ठी आई है आप बीती जो आपने हमें सुनाई है, और सच पूछिए तो मानना बहुत ही कठिन है कि ऐसा भी कभी किसी के साथ हो सकता है। वैसे जिनके ऊपर बीती होती है वही समझ सकता है, वही जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि हम इन सारी बातों को ये तो नहीं कह सकते कि ये सारी बातें झूठ है या अफवाहें हैं, पर ऐसा भी होता है। और आज की ये चिट्ठी भेजी गई है एक बिल्कुल, अब हम चिट्ठी के माध्यम से ये तो पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आप लड़के हैं या लड़की, पर आप जो कहना चाह रही हैं या चाह रहे हैं इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आपने जो भी लिखा है अपनी दादी के बारे में लिखा है। आप लिखती हैं कि आज की चिट्ठी एक आप बीती घटना है जो मेरी दादी, मेरे दादी के साथ घटी थी, और मेरी दादी ने जब ये किस्सा मुझे सुनाया तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये घटना उनके साथ उनके बचपन में घटी थी, तब लगभग उनकी 8 वर्ष की आयु रही होगी। आप बताती हैं कि दादी बिल्कुल आप बता रही हैं कि आप अपनी दादी के बारे में कि वे जब छोटे थे तो दादी का जो मायका था वो काफी रिच थे, जमींदार थे, और दादी की दादाजी यानी दादी के दादा के बारे में आप बता रहे हैं कि वे मांस मछली खाने के बड़े ही शौकीन थे, और वो रात के वक्त दारू पीते थे तो उसके साथ चखने के लिए उन्हें हमेशा तली हुई मछली खाने का बड़ा ही शौक था। और उनके यहाँ एक लड़का काम किया करता था जिसका नाम था सुधाकर, और एक पूर्णमासी की रात यानी पूर्णिमा की रात वो लड़का नदी से मछली पकड़ने गया था, रात के समय में आप बता रहे हैं, और नदी के पानी में चांद की रोशनी

रोशनी चमक रही थी और रास्ते में भी बिल्कुल बहुत काफी रोशनी छाई हुई थी क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी और दादी ने खेलते खेलते नदी के पास वे उनके साथ गई थी जहां पर सुधाकर मछली पकड़ रहे थे। शाम का समय था और देखते ही देखते वे सुधाकर के पास, क्योंकि सुधाकर काफ़ी बड़े थे उस टाइम और उस लड़के के साथ दादी भी थी, वो ज़िद पकड़ बैठी थी कि वे भी साथ जाएंगी और बिल्कुल घर जैसा माहौल था इसीलिए दादा ने उसे जाने की इजाज़त भी दी। तब दादी ने कहा था कि वो वहाँ बैठकर टोकरी में मछलियाँ भरेंगी। जब वो नहीं मानी तब सुधाकर ने जबरदस्ती एक हाथ में उनको हाथ में दादी को एक पकड़ा और दूसरे हाथ में मछली से भरी हुई टोकरी को पकड़ लिया और वहाँ से उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो रही है, अब घर जाने का समय हो चला है। तब दादी ने कहा कि वे और थोड़ा खेलना चाहती है। तभी दादी को दिल को दहला देने वाला एक बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई दिया। अभी भी ये बात बोलते समय उन्हें डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बांस के पेड़ थे और वो बांस के पेड़ सब एकदम से अचानक से नीचे की ओर झुक गए, सो गए और धड़ाम से जैसे बारिश के बूंदों की आवाज़ की तरह रेत वहाँ पर बरसने लगी। रेत बरसने लगी आप लिख रहे हैं। और फिर एक अचानक से उन्होंने एक साया देखा जो उनका पीछा करता हुआ उनके साथ हो रहा था, उनके साथ पीछे पीछे आ रहा था। तब अजीब सी चीखने की आवाज़ आपने सुनी और सुधाकर कुछ बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था और उसने टोकरी से कुछ मछली वहाँ पर फेंक दी। तभी कुछ क्षण बाद वो पेड़ फिर से खड़े हो गए और वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस जगह पे नदी के कुछ ही दूरी पर ऐसा कहा जाता है कि एक श्मशान घाट आज भी है। वहां के लोगों का कहना था कि जो भी लोग वहां मछली पकड़ने जाते थे अपनी टोकरी से कुछ मछलियां वहां फेंक देते थे, सीधे मुंह चले आते थे, कोई पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखता था। उस रात सुधाकर ने दादी को वहां से ले जाने के चक्कर में वो चीज करना वो भूल गया और कहते हैं ऐसा कर देने से वहां की आत्माएं पीछा नहीं करती। तभी ये बात दादी के सामने आ गई और हालांकि वो इन आत्मावात्मा चीज़ों में विश्वास उतना करती नहीं थी लेकिन वो चीज़ हमेशा उनके जहन में रह गई और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये घटना सच थी या कोई वहम। उस बात के 2-3 दिन के बाद उनके शरीर में बहुत ही तेज़ बुखार रहा और उस समय गांव के जो हकीम थे उन्हें दिखाया गया और उस वक्त चौंक गई वो, इसीलिए उनका जो बुखार था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था और उस दिन के बाद वो कभी वहाँ नहीं गई। पर वो दिन को आज भी वे भुला नहीं पाई हैं। वही बात अक्सर उनके दिमाग में घूमती रहती है और ये घटना उन्होंने जब मुझे बताई तो मुझे भी वहम सा ही लगा, मुझे भी लगा कि ये कोई कहानी ही होगी। पर दादी झूठ तो नहीं बोल रही ना? बिल्कुल, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं कई बार हमें कुछ ऐसी घटनाएं सुनाते हैं कि हम उन बातों पर आज भी आज के समय में हमें लगता है कि भाई ऐसा थोड़ी होता होगा, लेकिन देखा जाए तो बस जिसके ऊपर बीती होती है केवल वो ही जान पाता है। और सच में देखा जाए तो आज के समय में आज तो हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल ही एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ पर आधुनिकता के साथ हम बहुत लॉजिकल सोचते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती होगी शायद। ये ऐसी बात छेड़ी है और हमने भी सोचा
गुमनाम का

0: Continuous music. RM3.
1: जी हाँ, इस वक्त 4:30 बज चुके हैं और आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और बेशक आज की जो चिट्ठी थी वो भाई ऐसा लग रहा था जैसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमारे साथ एक और ऐसे श्रोता जुड़े जिन्होंने कुछ ऐसा ही बयां किया। भाई आज का जो टॉपिक है लाजवाब है, पर चलिए इसी के साथ, जिंदगी में कई बार ऐसे सनसनीखेज किस्से भी हो जाते हैं जिसे हम जिंदगी भर नहीं भुला पाते हैं। और यहाँ पर हमारे एक श्रोता ने भी हमसे कहा कि वे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ बनाव हुआ था जब वे बहुत छोटे थे। अपने पापा के साथ हमेशा जाते थे खेत, और हालांकि उनके दादा भी हमेशा कहा करते थे कि रात के समय में यानी शाम संध्या के समय के बाद अकेले ना निकले। और जब वे खेत से अपने पिता के साथ हेल्प करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में घना जंगल तो नहीं कहेंगे पर ऐसा खेत वाला रास्ता था जहां से वो निकलकर अपने घर की ओर आते थे। और ऐसे रास्ते से जब वो होकर आते थे वो पहाड़ों की ओर, यानी जैसे यहाँ बोलते हैं ना कि ऊंचाई पर, ढलानों पर उनका खेत हुआ करता था, तो जब वो उस रास्ते से घर की ओर आ रहे थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे चल के आ रहा है। पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर उन्होंने चलना शुरू किया। फिर एक दो बार उन्हें महसूस हुआ कि कोई पीछे बिल्कुल था। पलट के देखा, कोई नहीं। फिर चलना शुरू करते करते धीरे धीरे करते हुए जब वो ढलान से नीचे उतरे तब जाकर कहीं ऐसा उन्होंने महसूस किया कि अब कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। ये बात बहुत दिनों तक उन्हें सता रही थी, पर हिम्मत करके एक दिन उन्होंने अपने दादा से ये बात कही तो उनके दादा ने कहा कि इसीलिए अगली बार जब भी जाओ ऐसी कोई भी हरकत हो पीछे पलट कर कभी मत देखना। उनका ऐसा मानना था कि पहले के ज़माने में कई ऐसी जगहें थी जहां पर लोगों ने अपनी जान गंवाई, और आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आत्माएं भटकती हैं। अब इस बात में भी कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी जिन्होंने

महसूस किया, ये उन्हीं की जुबानी कहानी जो उन्होंने हमें बताई और हमने आपको बताई। जी हाँ, आपकी चिट्ठी मिली। ये कार्यक्रम इतना दिलचस्प कार्यक्रम है जहाँ पर आपके जीवन की बीती हुई घटनाओं को आप हम तक पहुँचाते हैं चिट्ठियों के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। जी हाँ, 4028070 पर आपके फ़ोन कॉल्स का हमें रहता है हमेशा इंतज़ार, और 5250600 पर आपके मैसेजेस बिल्कुल आप हमें भेज सकते हैं। और ये कार्यक्रम आप ही का कार्यक्रम, आपकी चिट्ठी मिली। और आज के ज़माने में बिल्कुल ऐसी दिलचस्प बातों से इस कार्यक्रम को हम सजाते हैं।

0: continuous music. RM3.
1: चलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही सनसनीखेज और कैसे कहते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जब भी बात छिड़ती है फैमिलीज में बैठकर जब भी हम इस टॉपिक पर बात करते हैं तो ऐसे किस्से कहानियां निकल आते हैं और सच मानिए तो ये हमें सच में अचंभित कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक और ऐसी श्रोता जुड़ी हैं जिन्होंने हमें यही बात बताई कि जब उनकी माता जी 15 वर्ष की थी और उनके नाना जी बिल्कुल काम किया करते थे, रात देर रात तक वे काम किया करते थे, मशीन बनाते थे, कई बार 1:30 बजे 2 बजे तक रात को उनका काम चलता था। और जहां पर वे काम करते थे आसपास में किसी महिला की मृत्यु हो गई थी और ऐसा कहा जाता था कि वो जो महिला थी वो रात को भटकती हुई नजर आया करती थी। और जब भी उनके नाना रात को काम पे से लौटते अपने सारे औजारों को लेकर, उन्होंने तो कभी ऐसा ना सुना ना देखा, पर उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त थे वे लोग कहा करते थे कि उस रास्ते से तुम कैसे आ पाते हो, क्योंकि वहां पर हर रोज किसी ना किसी को वो महिला दिखाई देती है। कितनों के तो भाई इतने बुरे हाल हुए कि वो बीमार हो गए, तेज बुखार में तड़पे उस औरत को देख लेने के बाद। पर उनके जो नाना जी थे वे हमेशा कहा करते थे कि हमेशा घर से बाहर निकलो तो पूजा पाठ करके निकला करो ताकि ऊपर वाला हमेशा आपके लिए एक रक्षा कवच सदा रहे। और सच में देखा जाए तो इन हमारी जो श्रोता है उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा ही एक और किस्सा हुआ था जहां पर उनके

पड़ोस में एक घर था जो भाड़े पर दिया गया था और वहां पर भी किसी की मृत्यु बहुत ही अचानक से हो गई थी और उस घर में जितने भी लोग रहते थे बाद में उनको भी ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई देता था। उस घर में एक बच्चा रहने जब आया तब उसने भी घर के पिछवाड़े में बिल्कुल एक पेड़ के पास किसी को पाया, किसी को देखा और वो वहीं पर बेहोश होके गिर गया। ना वो कभी इस बात का जिक्र कर पाया, ना वो ठीक से किसी को बता पाया। हालांकि ये जो महिला जिन्होंने हमें अभी फोन किया वे भी वहां से कई बार गुजरी पर उनके साथ ना आज तक उन्होंने कभी किसी को वहां देखा ना कभी किसी के बारे में सुना। इसीलिए कहा जाता है ना कि कई बार भाई कह सकते हैं, हो सकता है कि ये एक वहम हो और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बातें सच में एग्जिस्ट करती हों पर आपके आसपास आने से भी घबराती हूँ। चलिए आज का जो टॉपिक बहुत ही लाजवाब सा टॉपिक है, आत्माएं होती है या नहीं ये तो हम नहीं जानते। बिल्कुल शरीर के भीतर तो आत्मा होती है पर भटकती हुई आत्माएं होती है या नहीं आज तक हमने तो नहीं देखा। पर जैसा ये महिला ने कहा कि बिल्कुल ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास रखें और हमेशा कहते हैं कि पूजा प्रार्थना करके निकले ताकि कभी आपको ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। कई लोग आज के जमाने में भी ऐसी ही चीजों का सामना करते हैं और बस इसीलिए कहते हैं कि भाई ऊपर वाले पर विश्वास रखें और हमेशा प्रार्थनाओं को ज़्यादा हम सम्मान देते हैं और बिल्कुल प्रार्थना करके जब हम घर से निकलते हैं तो एक तरह से हमारे साथ एक सुरक्षा कवच सदा बना रहता है। और आज की आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ऐसे किस्से कहानी जो सामने आ रहे हैं। और चलिए गीतों के सफ़र में गीतों को भी सुनते हुए आगे बढ़ें।

बिल्कुल इस वक्त 4:52 हो चुके हैं और हम आपको याद दिला दें रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं शाम के 5 बजे तक। जी हाँ, 5 बजे आप सुन पाएंगे कलाकार के बाद, जहां पर हमारे स्थानीय कलाकार आते हैं इस मंच पर और इस कार्यक्रम को सजाते हैं रोशन हरनाम अपनी बहुत ही प्यार भरी बातों के साथ, अपने लाजवाब सवालों के साथ। तो बेशक आप उनका साथ दीजिएगा 4028070 पर और 5250-6200 पर अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है बिल्कुल आप ही के बदौलत लाजवाब बनता है। और चलिए आज के इस कार्यक्रम के ऑलमोस्ट समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं और आशा करते हैं आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में आपके भेजे हुए खत हम तक आते रहेंगे और बिल्कुल आपकी चिट्ठी मिली MBC मौका रेडियो मनोरंजन पर आप हमें भेज सकते हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है। आप सभी को याद दिला दें कि हमारी और आपकी मुलाकात रेडियो मॉरिशस पर ठीक 5 से 6 बजे के बीच होगी गीत और गजल कार्यक्रम में। तब तक के लिए बस हमें दीजिए अनुमति। शुभ संध्या आप सभी को।

0: 94.96, 98.2। आप सुन रहे हैं ORM 3।
1: दुनिया जालिम है लेकिन फिर भी कहा कर बात जिए के तब परी है जा करे के। और रत्ना जी से आप सुन ला, आपकी चिट्ठी मिली 5:01 तक हो गल बा।
2: कलाकार की बात, कार की बात।
1: भाई बहन लोगन, साथी लोगन, हमनी के भोजपुरी प्रेमी बहुत बहुत स्वागत बा तोहर प्रोग्राम कलाकार के बात में, जो चलेला है जा शुक्रवार के शाम 5 से लेकर 6 बजे तक। रोशन तोहर सेवक है, तोहर सेवा में उपस्थित है और तोहर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन ORM 3 जिकर बिना तो तोहर जीना मुहाल हो जाला। तरह तरह के प्रोग्राम रहेला है जहाँ पर तोहर मनोरंजन करे खातिर हमने औजेज दिन रात एक कर देला सा। और केवल हमने औजेज नहीं बल्कि हमने के स्टूडियो में जोन जोन कलाकार आवेलन जा ओ लोग के योगदान तक का बोली तोहरा। तो चल कलाकार के बात, और कलाकार के जब हम जिक्र कर ली तो 2000 महान कलाकार हमने के मध्य में आगल हो अंजा। अब तो बोलो तो अंसा कि एक से भले दो कहे नहीं, एक कलाकार तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन आज दो दो कलाकार वालों के नाम सुनबा तो तोहर दिल गदगद हो जाए। तो लोग के नाम हमें काहे बोला अभी सस्पेंस ना रखे के ना, चला है पहले गाना सुन ला दोनों के। थोड़ा एगो छोटा सुन टुकड़ा हम चलाए ला तो लोग अनुमान लगेबा कि ई केकर गाना है, के आल होन ओकर आवाज़ सुनबा तो खुद ब खुद जान जाएबा। तो चला है आवाज़ सुना पहले।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: कलाकार के बाद कार के बाद
2: जी श्रोतागण, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त लोगन, दोनों के मधुर आवाज, सुरीली आवाज सुन ला जा। और पहल का जो कलाकार रहल उ रहल हमनी के अपन जानल मानल कलाकार, मॉरिशस भोजपुरी जगत के गो महान कलाकार रंभा राम तोहल जी। और दूसर का जो कलाकार रहल नौजवान कलाकार जिकर आवाज तो लोग बेहद पसंद करे ला जा, और वह हमनी के भाई कुणाल हिरीलाल जी। तो चले हमनी स्वागत करी ला जा रंभा जी और कुणाल जी के साथ साथ। नमस्ते रंभा जी।
3: नमस्ते भाई जी। नमस्ते रोशन भाई, और नमस्ते सभी श्रोता लोगन के जो हमनी के सुनत हन जा।
2: हाँ जी, दोनों साथ साथ अइले जा, हमनी के निमंत्रण स्वीकार कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाजी और कुणाल जी।
4: धन्यवाद।
2: एक हला तो आ रहा जा दोनों
4: जी। हाँ, आज दोबारा आईली।
2: हाँ, तो आज थोड़ा के पॉटू है।
4: अच्छा।
2: सकेला आने वाले दिनों में पॉट फ्री भी हो जाए। बहुत चीज बात हो लोग से पूछे के इसी खातिर हम हमनी बुलाए करी ला जा। और हमनी के जो भोजपुरी के कलाकार है ना मॉरिशस में, एगो अनमोल रतन है जैसे बोली ला जा। तो लोग के अपन अपन क्रिएटिविटी, अपन रचनात्मकता जैसे रचना करे ला जा बहुत ही बढ़िया, और अपन विचार से ये सब गाना निकाले ला जा, म्यूजिक कंपोज करे ला जा, ये आसान काम तो नहीं है। का बोले ला भाई कुणाल
3: जी? जी हाँ।
4: और एगो परिवार तरह हमने झीला सा जितना कलाकार है जा।
2: रंभा जी और कुणाल जी, तो लोग तो जानल मानल कलाकार हुआ जा, और बहुत तजुर्बा बा तोहर, अनुभव बा भोजपुरी गाना में और संगीत के क्षेत्र में भी। तो चलो रंभा जी, तोहर से हमने सवाल करी ला जा। बचपन से लेकर आज तक तोहरा कैसे बुझाल बा कि सचमुच तू सब कुछ सीख ले हुआ संगीत में?
4: कभी नहीं। हमने के हा जौन जब तक हमने जीव सचना सीखते रहे के पढ़ते रहे के ई नहीं समाप्त हुई कबू।
2: ये कबो नहीं समाप्त हुई, बहुत अच्छी बात।
4: सोचा कि एकाद गो गाना सीख ले ला तो बहुत जान गए ला, नहीं हमने के रियाज करते रहे के चाहे सीखते रहे के पढ़ते रहे के।
2: हाँ, बहुत अच्छा। तो रियाज चला हमेशा करते रहे के, सीखते रहे के, पढ़ते रहे के। ये खाली हमने के नहीं बल्कि हम नौजवान के जो पीढ़ी हुआ, अभी जो लड़का लोग हुआ, वो लोगों के प्रति है बात बोलत हुआ जा।
4: जरूर जरूर। हाँ। उन लोग के भी बराबर चना सीखते रह के, नहीं सोच एगो गाना सीख ले तो हम बहुत बड़ा कलाकार बन गली, बहुत चीज सीख ले ली, ऐसे नहीं है।
2: ऐसे नहीं है,
4: हमेशा चना सीखते रहे के।
2: तो कुणाल भाई, जो रंभा जी जो बोलत हुआ इतना, ये तू बात माने ला?
3: जी जरूर। देखा कितने ही लोग बाकी जानी ना सह कि सीखल का वो फिनी नहीं होला।
2: हाँ।
3: और यही से जैसे बड़ा लोग, बड़ा जन लोग बोल ले आलबा, तो आज भी हवे परंपरा चलता कि ना भूला से कहाँ से आएगा सामनी, सीख के तो आल हैं सर। हाँ, और सीखते हैं सर। हाँ, और अभी फिनी नहीं हुई। हाँ,
2: अंतिम सांस तक सीखते रह जा।
4: जी जरूर जरूर।
2: और संगीत एगो अथा सागर है, जितना डुबकी लग गए बा उतना और बात सीखे के।
3: जी हाँ।
2: ये दरिया का एगो सागर है जेकर गहराई नापे के कठिन बा, असंभव बा। बहुत अच्छा। तो कुणाल भाई और रंभा जी साथ साथ अला जा, और एगो खास खास उपदेश बा, एगो खास

0: देशों बाकी हम तोहरा दोनों के साथ साथ बुला ले हैं तो चला तोहर जबानी हमने सुन ले जा कि कुछ बात तोहरा बोले के संगीत के क्षेत्र में तब बोले हुआ जा फिर भी भोजपुरी के भोजपुरी के उत्थान के लिए हमने के देश में बहुत कुछ करत हुआ जा गल हला जब आ रहा जा तो हमने से बोले लजा कि भोजपुरी कबो नहीं भुलाए बा ये तो हर मातृभाषा है और एक कर उत्थान करे खातिर हमने त्याग तपस्या करब सा और जो कुछ भी रही आके तोरा हमने जनाब जा तो तू अपन वादा नहीं भैले हुआ जा रंभा जी कुनर जी तू भी वादा नहीं भैले
1: वादा चला नहीं भाई की जब बोला
0: हम तनको नहीं भूल ली तोरा हमर डायरी में लिख दे ले हैं हम तो चला हमनी लेडीज फर्स्ट करी ला जा रंभा जी से पूछी ला जा कि बोला कौन उद्देश्य के अपन मन में अपन दिमाग में रख के तू दूसरा है जा जुन पौतू प्रोग्राम अथर संगे आल हुआ बोला
1: इसी तरह संगीत एगो कला है एगो पूजा है जब आयला सा संगीत के बारे में भी ज़्यादातर बात करी ला सा तो यही बोला था कि सबके के सीखे के सीखते रहे के हमने के मातृभाषा हमने के भोजपुरी भाषा ओके जीवित रख ओके जिंदा रख जहाँ तक हो सके लड़का लोग के से बतियाव घर में बतियाव स्कूल में बतियाव जहाँ भी जेब हिचकिचाव तनको नहीं एजिते हो जे एजिते हो तो जरूर उ पीछे जाए तो ये बोला था कि सीखते रह हर हमनी तो इतना उम्र के हो गए हैं सर वे हबीले सीखते हैं सर सिखाते हैं सर यही हमार उद्देश्य बाज के
0: बहुत अच्छा रंभा जी बहुत बढ़िया विचार बात हर ये सब विचार कैसे आ तोहर अनुभव से
1: जरूर
0: काहे कि तू जिंदगी देख ले हुआ कितना प्रोग्राम में गल हुआ कितना लोग संगे तोहर उठना बैठना बा
1: बहुत बहुत अभी ले तो उठ बैठ हुई थी बा कितना जनता परिवार महफिल
0: बहुत अच्छा और चलो हमने पूछी रहा जा है ये जो प्रश्न है जय रंभा जी से पूछ ली चलो कुणाल जी तोहरा तोहर खातिर है ये प्रश्न
2: जी देखा जैसे रंभा फूफू जी बोलन और आज हमने जुड़ल है सा एगो स्पेशल कार्य खातिर काहे दू जन बा और आउते शुक्रवार के और दू जन आई
0: अच्छा
2: हमने के वो बड़ा कंसर्ट आवता
0: एगो
2: बड़ा कंसर्ट आवता जेकर नामवे बा जलसा के रात बा
0: जलसा के रात जी तो हर गाना हो
2: जी वो हम नहीं चूज कर ले हैं ये एगो छोटा कमिटी बा
0: अच्छा
2: और हमने बैठी लासा कितना दिन से पहले लगभग हो गए एक साल से पहले
0: एक साल से
2: तैयार करते हैं सर हमने संगे
0: तो हर बात कहते थे भाई जी क्षमा करिए एगो ऐसी एगो शब्द के तू चर्चा करला एगो छोटा सुन कमिटी
2: जी
0: तो अगर भोजपुरी कलाकार तू संगठित करत हुआ सब सम्मिलित होके कमिटी बना देले हुआ ये बात बोला मुझे खुशत हुआ
2: जी हाँ
0: तो ये कमिटी में बहुत कलाकार बा
2: जी हाँ
0: चलो अब बात बढ़ावा
2: और हमने लगभग छह जना है सर
0: छह जना
2: काहे इतने ही और काहे ढेर नहीं
0: अच्छा बोला
2: ढेर और तीस रही ढेर मेंबर्स रही एक छोटा कमिटी में तो ढेर डिसीजन पर आतान करके छोटा कमिटी रही तो तुहर डिसीजन जनी सुन हाली से जाए और यही खातिर जैसे कि अब सब कोई अपन अपन अपन अपन करता तो हम जो के राहुल बात नहीं सुन
0: तनी करे
2: कुछ करे के
0: बिल्कुल और वो भी खासकर भोजपुरी के क्षेत्र में
2: जी हाँ और हमने जैसा भोजपुरी लिखी लाजा गावी लाजा तो कहे नहीं हमने के
0: अनुभव सुन संगठन
2: जी हमने के अनुभव जुन बा चाइना पौताजे करेगी
0: तो जलसा के रात एगो कॉन्सर्ट है एगो बहुत बढ़िया कार्यक्रम होई तो ओकर तिथि के बारे में बात करब जा कहाँ होई कैसे प्रोग्रामा होई एकर बारे में हमने बात करब तो हम बात करते जाब सा तो रंभा जी है जो जलसा की रात में जैसे भाई कुणाल जी बोलन अभी तो है जो प्रोग्राम है तू में भी शामिल हुआ जा
1: हम भी शामिल हैं भाई जी लोग के साथ
0: अच्छा
1: साथ में है जा साथ लेके चलब जा
0: अच्छा बहुत अच्छा
1: बढ़िया चली अच्छा रही हमेशा अच्छा सोचती सा अच्छा हुई
0: अच्छा तो कोई बात नहीं तो चलो हमने तोहरा जना दे लजा कि कलाकार के बाद प्रोग्राम है जेकर में आज कुणाल जी और रंभा जी आल हुआ अपन तजुर्बा हमने से बांटे

अपन अनुभव हमनी के बताए। 4:14 हो गल बा और तो लोग से प्रश्न पूछे के बखत भी तली चलाल बा। तो चला एगो छोटा सुन गाना सुना जा पहले कुणाल जी के आवाज़ में, तो एक बाद में बातचीत हमने जारी रखब जा। और अभी 5:14 हो गल बा।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार की बात, कार की बात।
1: कलाकार के बाद कुणाल जी और रंभा जी के साथ दुगो दिग्गज कलाकार हमनी के मध्य में आल हुआ जा स्टूडियो में बैठल हुआ जा और जोली छोकरी एगो बहुत ही सुंदर सा गाना कुणाल जी के आवाज में सुनना भी तो चला अपन नंबर वा मिला ल 402-8070-7072 का तो वैसा जिस पर तुहरा एगो जवाब दे

0: के बा हमने तो जानी ले जा कि तो लोग प्रश्न के इंतजार में बैठल हुआ चार हमने के कलाकार लोग के से कब तू बात कर बा एकर मौका तो ढूंढबे करत हुआ तो चला अभी कुणाल भाई के गाना में बात जोली छोकरी ऐसा नेगो भाषा है भोजपुरी बहुत ही मधुर भाषा बहुत ही का बोली तोहरा जेनरस जैसे बोली लजा उदारता बा भोजपुरी में जोन जोन भाषा फोरेन लैंग्वेज जैसे बा ओके सम्मिलित कर दे वेला जैसे पोमनामू बोली लजा त भोजपुरी में पन्नामून बन जाला सचमुच ऐसे हो जाला और जैसे रिबेली जोंगी बोलबा त लबर जांगी बन जाला तो चले जैसे भाई बोलन जोली छोकरी त जोली भोजपुरी में खूबे जोली से सम्मिलित होकर बा तब भोजपुरी में जोली के अलावा ऐसन हमनी के दू गो शब्द बतावा जोली जोन भोजपुरी में बोलल जाला जोली के अलावा ओकर सिनोनिम जैसे बोली सब प्यार ये वाची 402-808-7070 पर बोला कि जोली के और दू गो शब्द का बा भोजपुरी में तो चले हमनी रंभा जी से बात करी लजा जलसा की रात जब तक कि हमने के कलाकार हमने के जोन घर बैठे कलाकार लोग फोन नहीं कर ले तो हमने के है जा जोन हमने के दूगो संगे कलाकार हुए जाओ कैसे बातचीत अभी जारी रही तो रंभा जी हमने के स्टूडियो में आ रहे गो नौजवान चलाल बा अवनीश जी अवनीश जी भाई कुणाल जी
1: हाँ, बोलो जलसा की रात कॉन्सेप्ट के मैनेजर हुआ
0: अच्छा वही मैनेजर हुआ
1: जी
0: अच्छा
1: बहुत
0: कॉन्सेप्ट
1: जी
0: हाँ और अवनीश भाई कोनो कलाकार से कम नहीं है
1: जी हाँ
0: वो भी
1: आजे हवन
0: हाँ
1: और एमसी हवन प्रेजेंटर हवन
0: अच्छा हाँ। बहुत बढ़िया तो अवनीश भाई तो है स्वागत बा हमने के स्टूडियो में
2: धन्यवाद भाई बकू
0: और आप है जा अला अपन भाई कुणाल जी संगे और रंभा जी संगे एकर खातिर हमने आभार प्रकट कर थे जा और है जो कॉन्सेप्ट है जलसा की रात जैसे कुणाल भाई बोलन तकर बारे में और तनी जानकारी सकब हमने के दे
3: तो जोन जलसा की रात बा एगो कोंसिया एगो भोजपुरी कोंसिया है जहाँ पर हुआ था ब्लिस ब्लैंकेट होल और सिनाल
0: ब्लिस ब्लैंकेट होल और सिनाल
3: और सिनाल जोन होली 26 सितंबर की और ई भोजपुरी कॉन्सर्ट ई आयोजन बा जन हमने के भाई बा कुणाल वो अथीबा जैसे कि बोल रहे लातित बाऊ
0: अच्छा
3: हमने के पाछे और अथीबा भाई किशोर बा रोशन बा ए बा या विशाल बा भाई अच्छा। निशाल बा और बहुत कलाकार लोग हवन जैसे कि रंभा जी राम दोहल जी बा हमने के संगे और लाइव परफॉर्मेंस जो रही वो रंभा राम दोहल जी
0: अच्छा।
3: नीरज गुप्त मधु जी किशोर किमिया जी और हमने के भाई कुणाल इगिलाल जी
0: हाँ।
3: रोशन सदा सिंह जी कृषि मुनिक जी और हमने के चिकित हमने लॉन्च कर दिले हैं इसे तो आवा परिवार सहित हुआ जहाँ पर खान पान रही सब कुछ रही लयका वो खेले की सब कुछ रही तो आवाजा परिवार सहित के साथ आवाजा
0: बहुत धन्यवाद अवनीश भाई तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रही तब
3: एगो कमाल धमाल
0: हाँ
3: उससे भी बढ़कर रही
0: हाँ काहे कि इतना दिग्गज कलाकार इतना जोन के नाम चमकते रहे हमने के भोजपुरी जगत में वो लोग के कैसे तू इतना आसानी से बटोर लेला
3: ये आसान नहीं रहल मतलब एगो सहयोग से जो हमने के भाई कुणाल बा ओकर सहयोग से और बाकी लोग बाकी जो अथी बा जो कमिटी मेंबर्स बा वो लोग के सहयोग से ये काम अधिक
0: बहुत अच्छा तो चला हमने के पहला श्रोता लाइन पर हुआ न एगो प्रश्न पूछ ले रही राजा भाई कुणाल के गो गाना रहल जोली छोकरी तो जोली के जो न शब्द है ओकर प्यार वाची भोजपुरी में और कौन शब्द है चला हमने पहला श्रोता के स्वागत करी राजा हेलो
4: हेलो नमस्ते रोशन जी कते से आशा जानू बोलते
0: है आशा जानू जी तुहर स्वागत बा कलाकार के बाद प्रोग्राम में कैसे हुआ जा
4: बहुत बहुत धन्यवाद आज के तो कलाकार के बाद में जैसे 4 साल लग गए बाते
0: अच्छा।
4: कहे के कुणाल जी और रंभा जी आल हवन जा
0: संगे संगे
4: संगे संगे ऊपर से पहली बार के लिए हम इन दोनों के नमस्ते बोलते हैं
5: नमस्ते बहन जी
3: नमस्ते तोहरो
0: आशा जी भी भोजपुरी में गावेलन तनी हाँ थोड़ा बहुत आशा जी सुनला भी कुणाल जी के गाना न जोली छोकरी तो चल बोला जोली के और कौन शब्द भोजपुरी में सकब बोले
4: रोशन जी हम तो नहीं सकते सही बात की गलत पर एक कोशिश करते
0: बोला
4: दिमागी कसरत बोला था

0: चंदौली के पर्यावासिक भोजपुरी में
1: चचेला
0: हुए बढ़िया और सुंदर।
1: बढ़िया और सुंदर का बोले जा रंभा जी और कुणाल जी, ठीक बा कि नहीं?
2: एकदम करीब बा,
1: एकदम करीब बा, का बात बा, बहुत ही बढ़िया। तो चलो रंभा जी,
0: आज तो सब जल दे।
1: अरे बोला
0: बेहतर
1: बेहतर, का बोला थो तू
2: ई भी?
1: अच्छा बा,
2: अच्छा बा।
1: चलो जोली के जो दूसरा शब्द है वह बोला सुंदर, बढ़िया, खूबसूरत। लेकिन जो हमने शब्द ढूंढे खोजत रही सब चौचक के सब बेचारा बोले के सब
3: हमने के भाई के हाउ हाउ हाउ चटकारी
1: चटकारी जैसे रहल हो, लेकिन फिर भी तो हर दिमाग के हमने दाद दे ले जा। आशा जी ऐसे ही भाग लेते रहिए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बोलते हैं दोनों कलाकार के ऐसे ही चमकते रहिए, भोजपुरी जगत के सितारा बनते रहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद आशा जी तुहर बहुत ही सुंदर विचार के और मीठी शब्द के लिए भी धन्यवाद। आशा जी सही जवाब दिलन हमनी के जोन भोजपुरी के जोन शब्द है सचमुच बड़ा ही तड़का लगेला। ये कहती
3: जी, और एक चीज हम बोलती देखा, एक हम भाई से पूछ ले रानी कि भोजपुरी अभी एक्चुअल एक्चुअली कैसे लौकेला, वो हमके एगो रिस्पॉन्स दे रहा कि ना भूलैया कि भोजपुरी ऑंग्ले फ्रांसे कितना लौंगा से मिल के जस्ती बलवान हो गल बा
1: सच्चे के।
3: बस की अभी जो नौजवान लोग बा नवा नवा शब्द जो नहीं नहीं यूज करवा नहीं सेवी करवा तो वो लोगों सोचन से कि नहीं जन से कि कौन बोली है, पर हाँ ना भूलते हुए हम ये गाना में नवा और पुराना बोली जुड़ के तब जस्ती आगे बढ़ेगा।
1: बहुत अच्छा, तो ये जो हमने के बड़ा जन हो जा और जो नौजवान हो दोनों खुशी रह जा
3: जी हाँ
1: सुने के। हाँ तो रंभा जी ऐसा ही ऐसा शब्द तो हर गाना में धेरा वेला
2: तो बहुत शब्द
1: बहुत आवेला। हाँ तो चलो एगो दूसर का थे एगो दूसर तरह के प्रश्न हम पूछब जा तो लोग दोनों से।
2: अच्छा,
1: चला है पहले हाई विद्यक्ति सुन ला आगे।
4: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
5: Continuous music.
6: Music. Music. Radio.
5: RM3.
6: कलाकार के बाद
1: कलाकार के बाद कुणाल जी और रंभा जी के

0: अभी सुन ल एमबीसी प्ले ई एमबीसी आपके जरिए आप सब मैच जो है 104 मैचेस 104 मैच जो कुप जुमोन जैसे बोले राजा वर्ल्ड कप सब सकब देखे अगर अभी तक एमबीसी प्ले अभी डाउनलोड नहीं कर ले हुआ तक देर किस बात के डाउनलोड कर और जैसे ही तो एमबीसी प्ले काम करे लगी तो न्यू वर्ल्ड चैनल में जाइए NWC न्यू वर्ल्ड चैनल नंबर 1 और न्यू वर्ल्ड चैनल नंबर 4 इन दोनों पर तोरा सब फुटबॉल मिली देखे खातिर तो चलो हमने वर्ल्ड कप के बारे में बात कर ली सर रंभा जी अभी तो वर्ल्ड कप सभी मैच चलता टीवी पर देखा तो
1: सब झलक दिख ले ला देखे
0: को झलक देख ले ले हुआ बोल पाला तो फुटबॉल के अभी एक महीना आधा ले चलते बा तो हमने के बोला फुटबॉल में ध्यान देवे ला रंभा जी
1: बोली ना एगो झलक दिख ले ला उतना बैस के मजा उतना अप्रिशिएट नहीं कर फिर भी एगो झलक दिखी ला
0: और फुटबॉल खुशी रहे ला जा
1: चहला खुशी रहे के वो भी को कला है ना
0: बिल्कुल और हमने के कुणाल भाई वो तो खेले ला
2: पहला देखे से पहले तो सीखा नहीं खेले के और यानी वो प्रीमियर डिवीजन रीजनल खेले हैं
0: अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है
2: और डिफेंडर यानी
0: डिफेंडर
2: वाला हां जी
0: तो ये तो चाल ताली के गूंज रहा होई के प्रीमियर डिवीजन रीजनल में बढ़िया कलाकार एक बढ़िया खिलाड़ी रहता
2: जी जी
0: हां हां तो हर जो फुटबॉल करियर है बहुत ही फ्रूटफुल रहा था
2: जी हाँ
0: तो बाद में चलकर तनी समय के साथ इतना ज्यादा
2: जी हाँ जब शादी कर लेबा
0: और
2: रिस्पांसिबल हो जाएगा तो उतना समय नहीं मिलेगा पर हाँ अभी ले दोस्तों के साथ जुड़ के फुट फाइव है ने होने खेलिला सा हाँ
0: खेलिला जा बहुत अच्छा पन के फिट रख खेला
2: जी हाँ
0: हाँ चला इसने स्वास्थ्य पर ध्यान दे के तो रंभा जी जब बातों बातों में प्रोग्राम से पहले बोले रहे हमने के जे डिजिल दे लुसियो जब 2019 में आयोजित हो रहा मॉरिशस में एकर बारे में तनी चर्चा करब
1: हां तो है इसे गांव-गांव में जाता लन जा गावे तो हमके भी शामिल कर ल एगो सिगाची रहना कालीचरण वो हमार गांव में आ रहल एगो जगह में रहे तो हमार घर के एकदम करीब रहल त ओ रहल आर पेमाल
0: अच्छा
1: तो ओ लोग दुगो खाली से गाछी रहलन स न त एगो भोजपुरी के जरूरत रहल ओ लोग के तब हम के लेलन स त दु दिन गरली ओ लोग के संगे छुट्टी लेके गावी एक दिन गैली बेलेर वीएसएस सेवास्तोपोल एगो कॉलेज प्राइवेट रहल हुआ परी और फ्लाक एमजीएसएस लगी
0: हो जा गेल परफॉर्म करे
1: परफॉर्म ह तीन गो जगह त बखत हो गल अब सांझ हो गल त दूसरा दिन तुरंत गेली स पॉम्पलेमूस जादे लगे
0: अच्छा
1: फिर गेली स सुपेयु लगे लेनोवे में और फिर गेली स ट्रियोली ट्रियोली एगो दनिय गांव हमर लिए दिन करली त एगो झूर झाल ढोलक बजाइते अइलन स तो हमार साथ में गैलन सा जुबेदार लोटो लेके जाए
0: अच्छा बहुत अच्छा जुबेदार लोटो लेके जाए
1: तो हमरा बहुत अच्छा लगा रहल उ दिन के हमेशा हमके याद बा जब ई सब देखिला फुटबॉल त हो दिनवा हमरा
0: याद आवेला स्पोर्ट्स के बारे में जब सुनेला त हो दिनवा याद चलावेला
1: बहुत याद चलावेला हां के हम गैले रहली उ दिन ना
0: और स्पोर्ट्स और संगीत के जो मिलन है वो अनोखा है
2: जी हां
1: वो अनोखा
2: जैसे फाइनल में हुआ फाइनल खेला था जैसे फाइनल फिनिश हो तो नॉर्मली सगरो संगीत लगे बोझ
0: संगीत हां संगीत के जरिए तो लोग सेलिब्रेट करे लजा
2: जी हां
0: तो चलो वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं जाते रंभा जी तो हर कोनो फेवरेट टीम बा
1: नहीं हम सब के अप्रिशिएट करीला
0: और नेता जोन टीम के जीत होला ओकर ओकर संगे जुड़ जाला तो चलो कुणाल भाई सब में पूछी लजा कौन है तुहर फेवरेट टीम
2: देखा इतना टीम में से एक और टीम चुने के
0: कठिन
2: थोड़ा कठिन रही पर हम खुश रहिला फुटबॉल इंग्लैंड के फुटबॉल भी यहाँ पर मॉरिशस में मिलेला ढेर जितना भी स्पोर्ट्स मैन बा जितना फुटबॉलर्स लोग बा वो लोग के अच्छा लगा देखे के और जितना कोई अंग्लितिया में खेले लन जा अब अपन अपन देश खातिर खेलत होन जा तो वो लोग के अच्छा लगा देखे के ताकि कहे अपनी लोग के देखी लाशा लोग के स्टील फुटबॉल अच्छा लगा देखे के
0: और फुटबॉल जो है स्पोर्ट्स जो है संगीत है वो आदमी लोग के जोड़ेला
2: जी हाँ
0: बांटेला नहीं जैसे डिवाइड नहीं लोग के हमने के सब एक कर देवेला
2: जी हाँ
0: एकता और फुटबॉल जब

0: pas de tu as joué un je sais pas les esprits sportifs hamesha chala rahe ke
1: ji ha
0: apan jo un kalaka jo tu desh ha jo tuhar desh ke prati prem ha aur tu jo advyasi abhi ha pratidwandi o log ke chala samman karte rahe
1: ji
0: khali ko sports hai ko khel ha
1: और, में और और ना भूलते हुए स्पोर्ट्स देख बात अपन नॉर्मल जीवन में भी वो आवेला
0: हां
1: कि जैसे अभी बोला कि वो लोग के फेयर प्ले है और हमने यहां पर कूतवाजी सेवी के इलाशा तो चाहे ना वो सोच के उतने सुन दिमाग हम ये खुले रहा हां
0: अपन जीवन में भी ये साला अमल में लाने की
1: जी जी हां
0: बहुत अच्छा तो चलो हमने बात करब जा जलसा की रात प्रोग्राम के बारे में एक बार फिर अगर थोड़ा अनुमति देवा थवा जाता
1: जी हां
0: तो बोला मैं ब्लिस ब्लैंकेट होल जो आर्सेनल में है ना
1: जी हां
0: आर्सेनल में तो हो प्रोग्राम में जो है जैसे अवनीश जी बोले ना अभी कौन वक्त शुरू होता और कब फिनी होता
1: देखा पहला था नाम डले सा जलसा की रात बा
0: तो रात हुए के है तो
1: हां उस सांस के रही लगभग 7 बजे से शुरू हुई और 7 बजे से हमने के पहला लाइव कंसर्ट मॉरिशस में जो भोजपुरी क्षेत्र में बा हां वो शुरू हुई और हमने के 6 गो कलाकार जैसे अवनीश भाई बोलन और उनकर बाद हमने के 6 गो डीजे हो बा
0: अच्छा बहुत बढ़िया
1: जी और काहे कि देखा एगो एगो एगो रात्रि में एक दिन निकलला अपन परिवार सहित आइला हुआं पर देखे हमने के 30 लोग के सपोर्ट करे और एंटरटेन होए और उसके बाद हम भी घरे ने खुजब जाई के हाली से
0: बिल्कुल
1: हां आल हुआ तो चहला धमाल
2: एंजॉय
1: करेंगे हां
0: अपन कमाल दिखाए के अपन धमाल करेंगे
1: धमाल करेंगे अपन कलित के धमाल करेंगे
0: हां
1: हमनी के जलसा करेंगे
0: जलसा करेंगे
1: जी
0: और भोजपुरी एगो ऐसा प्रोग्राम है जब एगो कंसर्ट करेला जा एगो ऐसा महफिल सजावेला जा तो भोजपुरी ऐसा एगो प्रोग्राम है जहां पर खाली जो परफॉर्म करेला कलाकार वो लोग नहीं खाली जैसे बोलेला जा मनोरंजन है जो आवेलन से सुने देखे वो लोग भी
2: वो लोग भी एंजॉय
0: कर रहे हैं वो लोग भी सम्मिलित हो जा रहे
1: हैं
2: तो
0: यही कहती है तो वो लोग भी तनु मनु छोटा मोटा कलाकार बन जा रहे
1: हैं
0: है ना तो यही भोजपुरी के कमाल है यही कहती हमनी बोले जा भोजपुरी सीखा भोजपुरी बोला भोजपुरी में बात करा और भोजपुरी गावा भी सुना भी तो चला कुणाल जी और रंभा जी के तो सुनबे करेला जा रेडियो पर रोज के रोज भोजपुरी तड़का में ये लोग के बहुत ही गाने के फरमाइश होला सब लोग मांगे लंसा 402-808-85 पर मांगे लंसा रेडियो मॉरिशस में और चलेते रहेला जा और एक हरा दोनों कलाकार से हमने पूछ ले रहे जा कि कैसे तुहरा महसूस होला जब तुहर गाना रेडियो पर चलेला जा तो बोले जा कि बहुत ही संतोष प्राप्त होला पैसा के कोनो मोल नहीं है आर लेकिन जो थोड़ा संतोष मिलेला तोहरा
2: जो खुशी मिलेला
0: हां
2: वही बस बा
0: वही बस बा बहुत ही बढ़िया तो चला हमनी के बतावा कि एगो प्रश्न बा तोहर से पूछे कि अभी रंभा जी एगो गाना निकल ले रहल अभी एगो गाना चले ले रही जा रंभा जी के जोड़ी छोकरी ता उ भाई कुणाल जी से संगे हमनी सुननी तो चला रंभा जी को गाना ओकर चले रे शुरुआत में कौन गाना हो अगर ठीक तरह से सुनला ता अगर कलाकार के बात में तू सुनला ता बोला कौन गाना भी हमने रंभा जी के चले जा 402-808-70 पर जल्दी जल्दी जवाब दे हमने के तब तक हमने रंभा जी के दूसर गाना चलाब जाता ताकि तोहरा और कठिन परी सोचे के है गाना सुनबत तो हर और कंफ्यूजन हो जाए चलो सुना

0: कर पर कितना लोग अभी कमर थुम कैले हुआ जा कितना लोग पैर चले हुआ जा कितना लोग नाचे लन जाए तो बहुत ही बढ़िया है जलसा के रात बा चाहे जुबेदा लो तो लेके जाए ई दूगो गाना नहीं चली पार्टी में प्रोग्राम में तो कैसे बनी जैसे बोली ला जा फुलौरी के बिना चटनी कैसे बनी हो तो चलो हमनी मांग कर अब जापन श्रोता लोग एगो श्रोता तो कब से इंतजार कर थो जब हीरो सोना का है इतना बातू नहीं बा चलो हमर जवाब भी सुन ला चलो हेलो
1: हेलो नमस्ते रोशन जी नमस्ते हम दोनों मेहमान
2: नमस्ते
0: हाँ सरिता जी हुआ काठबोन से
1: जी काठबोन से
0: तो बोला हमने के प्रोग्राम हुआ तो हरा कैसे लगता
1: बहुत चौचक लगता
0: है चौचक अरे वाह
3: देखा ना कैसे कैसे बोलिया आल
0: बोलिया देखा कैसे चला
2: चौचक
0: ये सरिता जी हुआ ना भोजपुरी खूब सीखेलन जो रंभा जी पहला गाना हम चले लियो कर कौन गाना है तनी गा के सकब सुना
1: नहीं जानी ला
0: गाव
1: लाई लाई लाई ला तेरे लिए
2: फूल ले ले आए लाई लाई लाई लाई बलम तेरे लिए फूल ले ले आए
0: देखा तो हुआ फूल ले ले आए तोहरा भी ताली के फूल मिला था
2: डुएट होगा डुएट
0: आए को डुएट होगा देख रहा
1: सुनिला रात के भोजपुरी गाना मांगीला
0: हाँ मांगीला
1: हमारे राजो जब सुतल लीली पर हमारे छोटा राजो भोजपुरी प्रोग्राम सुनीला गीत मांगीला सब
0: अच्छा बहुत अच्छा था
2: बहुत बढ़िया मांगते रहिया
3: हाँ और हम एक चीज शेयर कर अब हमारा माँ सुना थी अभी तक उसके ला पहुंचाओ को राजू सौंसे हो गलबा राजू गिरेला नहीं चलेला पर उ
1: नहीं हमार बेटी हम एक छोटा राजू देला
3: जितना बेटा बेटी बा सब कोई काडू है ये देवेला पर मांगे
2: भोजपुरी गीत सुने खातिर
0: हाँ भोजपुरी गीत सुने खातिर हाँ सरिता जी तो घर में भोजपुरी बात में बात करे ला जा
1: हमार यहाँ नहीं
0: काहे
1: हमार बेटा एगो बेटा एगो बेटी की शादी हो गए एगो बेटा है वो नहीं भोजपुरी नहीं
0: चना बचाए के
1: हमार
0: जैसे बोला चौचक भाषा है तो चना चौचक
1: जानी ला
0: तो चना भाषा में बात करे के भी अपन घर से शुरुआत
1: में भी बात करी ला
0: अच्छा तो बहुत धन्यवाद सरिता जी
3: चाहे वो लोग बात नहीं करत होई तोरा चाहना बात करके पर काहे
1: के हाँ।
3: पर एक दिन वो लोग बात करी
1: अब तो कातरबोन रहने आए
2: फिर भी जाने ला बात करे तोरा तो धन्यवाद बोलत ही सा देखा कितना निमन से भोजपुरी बोलत हो
0: बहुत अच्छा तो तोहर
1: धन्यवाद
0: तो सराहना हमने के दुगो कलाकार कर लन जा बहुत बहुत धन्यवाद ओके
1: धन्यवाद
0: ओके तो ये रह सरिता जी और तचला रंभा जी और कुणाल जी इतना फैंस तो हर फैन बेस हो गया मॉरिशस में अनगिनत जहाँ जहाँ जाल तो सब लोग इकट्ठा हो जा रहे जैसे से ओतो गाप दर तनी तनी सीए कर रहा
2: इसे ढेर को इसे कर रहा था हमने भी खुशी हुई ला सा देख रहा समझ के कितना फैंस लोग हमन समझ के खुशी रहे लन सा
0: बिल्कुल जब 20 में तो लोग सफर करे ला जा तो तोर गाड़ी में जहाँ चलत हुआ सड़क पर तो कठिनाई हो रहा तो लोग दोनों के
3: नॉर्मल लाइफ हम नॉर्मल लाइफ जी ला
0: नॉर्मल लाइफ
3: और मिलजुल के सभी को
0: हाँ लेकिन जब सब लोग तो हर पीछा हुए रन जा बोले जा कि एगो प्रोग्राम बा है बाहुक बा करे के हम थोड़ा दिख रहे उ दिन हुआ तो कैसे तुहरा तुहरा तू इरिटेट हो गया या खुशी हो गया
3: नहीं इरिटेट की कोनो बात नहीं बा देखा हम हमेशा बोली ला जितना शेयरिंग करब जितना चीज बांटब भगवान तोरा
0: और दे बिल्कुल
3: एक जना तोर से बात कर रहा था कैसे ओकर से बोलवा की देखा हमरा दिखाओं से नहीं कर रहा हमरा
2: नहीं औसे नहीं कभी नहीं बोली ला सा बल्कि बोल देला सा हमने के नंबर ले ला बाद में फोन ला गया ऐसे बात करी ला सा हमने के चला निमन से बात करे के सब कोई खुशी रहला हमने के ना और हम जहां चाहिला देखला हमरा जे देखा था हम के नमस्ते बोली ला सुचिला वो हमके जाना था तब ना त हम कोई रही हम नमस्ते बोल
0: दिला हमारे आदत हो गल बा यही हमार जो उद्देश्य है हमने एमबीसी के जो ऑब्जेक्टिव है जा कलाकार लोग के आने के काहे कि जब कलाकार लोग बात करे ना जा तो हमने के जो घर बैठल श्रोता है हमने के भाई बहन लोग कलाकार के जस्ती मीटित करे खोड़े रह जा हो कलाकार ऐसे बोले रहा तो हम भी ऐसे करब तो लोग के अपन एगो आइडोल मान देवे रह जा तो वही खातिर कलाकार के जस्ती हमने मीटित करे जा हम छोटे से फिल्म सब देखब त है अभिनेता बात ओकर बनब तो यही खातिर जब

0: माने के मॉरिशस में कलाकार लोग के जैसे बोली ला जा उत्पत्ति होई लगल त हमनी के जो मॉरिशन कलाकार हमनी मॉरिशन मॉरिशन वासी ह ओ लोग हमनी के भोजपुरी कलाकार नियर बने खोज रहन जा
1: और हम एक चीज बोलती जैसे कि अभी हम के गोलो काजो मिनल बा एक के गो प्लेटफार्म में बैठे के त ई बात बिना भुलाइले चाहला बोले के कि हम छोटा से बड़ा होल हैं अभी ले रंभा जी के गाना सुन सुन के उनका सीख के ओकरा देख के जैसे तू बोलत हुआ बॉलीवुड आर्टिस्ट के हाँ बॉलीवुड आर्टिस्ट की कबूरे बुरे आसपास के लोग हमने के हर रोज के जीवन में हन संगीत द्वारा फिल्म द्वारा कहूँ परी रह सब हमने गाओ अब सब गए बहु कर अब सब तक अपन गीत तनी सुन गौ मैं फिल्म के गाना जस्ती गाया सा और जैसे कि बाहर रंभा जी हवन यहाँ परी और कितना भी अनेक हमने के पूर्वज लोग बाके ताज बड़ा जन चल गल हमन वो लोग के देख देख के सीख सीख के और
0: उसे तो देखा बचपन से रंभा जी के देखते आल हुआ बड़ा हो गए ल और आज तुहरे को मंच में ओकर से अभी बांट के दोनों बात कर रहे हुआ जा इतना को बहुत ही
1: जी बहुत ही बढ़िया बात
0: हमारा बढ़िया बात है हाँ बहुत अच्छा तो रंभा जी तुहरा नहीं बोलब कि कैसे प्रेरणा पहले हुआ वो हला बोल रहे
2: हाँ इतना हमेशा हाँ, बोलती आल हाँ, हाँ कहाँ से शुरू हो बा कैसे शुरू हो बा किसे सीख ली कैसे सीख ली तो हमेशा तो ये बोलते आल हाँ
0: तो चलो तुहर से हम प्रेरित हो गए हाँ दोनों से तो हम तुहर से गो मांग करब कि गो छोटा सुन एगो फिल्मी गाना गा दो हमने खातिर
2: आज तो फिल्मी सुने खोजा
0: तो एगो फिल्मी गाना गा दे और अभी हम भाई कुनल जी से भी मांग करब तो हई दूगो गाना सुनिया एकर पर एगो अंतिम प्रश्न पूछब जा तोरक संगे तो चल रंभा जी शुरू हो जा।

0: बहुत ही बढ़िया। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलेंगे, जब साथ साथ कदम रख के चल बजा तो मंजिल अवश्य मिली,
1: जरूर मिली, जरूर।
0: तो चला ये रंभा जी के गाना है, ओकर पर को प्रश्न हम अवश्य पूछब। तो चला कुणाल जी, अब तो हर बारी बा।
2: देखा हम पहले से ही मुकेश जी के बड़ा फैन हैं,
0: जबरदस्त फैन
2: हैं। हमार मामू बा वो कई कितना हाल आके एमबीसी में प्रतियोगिता में भाग ले हवन।
0: तो हर मामू के सकब जाने को नाम है
2: जी, उनका नाम है सुरेश मती।
0: सुरेश मती
2: और वो भी कहीं पर भी वो और हम मौसा मौसा के सुनत हो कहूँ परी भी रह लोग दोनों जना या किशोर कुमार या मोहम्मद रफी या मुकेश जी के गाना वो लोग गयन सा बजयन सा और ऐसी हमने हमने के घरे ऐसी चला।
0: बहुत अच्छा
2: जी,
0: देखो संगीतमय परिवार है तब
2: जी। हाँ।
0: चला तो हर गाना सुनावा।
2: चांसी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांसी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
0: क्या बात बा कुणाल जी, नौजवान होते हुए भी मुकेश दा के गाना गेला और तुहरा आवाज भी तनी मुकेश दा के तरह बना देला।
2: जी बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया तरंभा जी के बहुत ही सुरीली आवाज में सुनना एगो फिल्म के गाना और कुणाल जी की भी। तो चले 4028070 पर हमने के बताओ कि जो दो गाना अभी हमने के कलाकार जी गेलन वो दोनों कौन फिल्म से रिवॉल्व कर बा। बहुत ही आसान सा प्रश्न बा, जल्दी जल्दी अपन बॉलीवुड के जानकारी हमने के बतावा जानी ना, बहुत जानकार हुआ जा। तो चले को चैलेंज है तुहर खतीर, को चुनौती है 4028070 पर हमने के जल्दी जल्दी जवाब दो, ई दू गो गाना जो है कौन कौन फिल्म से लेवल गरबा। और अभी 5:50 हो गल बा, तो चल जल्दी जल्दी एगो फोन ले हुए राजा एक बाद में।

0: बात कर अब जा हमने के दुगु कलाकार से. हेलो हेलो
1: हेलो नमस्ते रशन जी.
0: नमस्ते जी. और बोला कौन नाम है तुहर?
1: अनीता मोदालबिया से.
0: अनीता जी मोदालबिया से कैसे हुआ? ठीक हुआ?
1: हाँ ठीक है.
2: हाँ.
1: जो मेहमान को भी नमस्कार करती हूँ.
2: बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते.
0: तो चला अनीता जी प्रोग्राम तो सुनते जात हुआ ना.
1: हाँ
0: हाँ बोला कौन जवाब देबा जो रंभा जी गैलन कौन फिल्म था?
1: पहला रंभा दिन गैला.
0: हाँ.
1: एक हसीना दो जुआन
0: है. एक हसीना दो दीवाने.
1: गाना हिमालय के गोद में.
0: हिमालय के गोद में. अच्छा बा
2: जी. हाँ
0: अच्छा अच्छा
3: एकदम बढ़िया
0: एकदम बढ़िया. बोले थोन जा तू भी तो गो कलाकार बन गए अनीता जी. बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया. धन्यवाद अनीता जी ऐसे ही भाग लेते रहिए. धन्यवाद. तो चलो हमने के और फोन कॉल आवा था लेकिन दुर्भाग्यवश फोन नहीं ले नहीं सकब सले ही काहे कि 6 बजे आप समाचार सुन बजा. तो चलो जल्दी जल्दी हमने रंभा जी से और कुणाल जी से बात करब जा. तो चलो रंभा जी अपन अंतिम संदेश का देब हमने के कलाकार लोग के कलाकार की ओर से हमने के मॉरिशस वासी के अपन श्रोता के का संदेश देबा और जलसा की रात के बारे में का बात बर बोला.
3: हाँ ये बोले थे कि हम सब मॉरिशन वासी के इनवाइट करत हैं सब हाँ जन बड़ा प्रोग्राम रखल बा भोजपुरी के 5-6 गो कलाकार मिल के जन आयोजन कर ले हैं सब. आशा करत है कि सब कोई बड़ा झूर में अब बजा. हमार ख्याल से एगो पहला वाला ऐसा एगो बढ़िया प्रोग्राम रखल बा बड़ा कॉन्सेप्ट भी आव जा सुन जा झूम जा खुश हो जा. सितंबर के महीना में है 26 तारीख के. आशा करत है हमार है ये अंतिम वाक्य बा बोले कि आव जा
0: बहुत
3: बड़ा झूर में.
0: बड़ा झूर में आइया जैसा कि रात में खूब भाग लिया और गमत भी करिया. चला कुणाल जी.
2: जी हम ना बोलते हुए कि हमने की जो भाई बा कमिटी में लोग के नाम लेती ए भाई सुरज रिलाल उमर बड़ा भाई वन
0: बड़ा भाई हो. हाँ, हाँ, वो भी एगो कलाकार हो
2: जी. और वो आर्टिस्ट आर्टिस्ट पेंटिंग आर्टिस्ट हमन.
0: बहुत बढ़िया ई तभी कलाकार.
2: हाँ निशाल बाबू जी वो भी पेंटिंग आर्टिस्ट हमन. भाई यश रामचंद भाई किशोर केमिया और अवनीश भाई और हमने की दुगो डीजे बा नील भाई नील दुलन और आबी पहसान.
0: अच्छा.
2: हाँ तो हमार यही मांग बा सभी को इसे देखा ऐसे तक चूड़ी ला से नहीं कहूँ पड़ी. कोई ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं होता इतना बढ़िया से. तो एक जना जोन अभी हमने कमिटी में जोन खड़ा हो के एक चीज करा था ऐसा तो सपोर्ट करा आवा एन्जॉयमेंट आवा ई एन्जॉयमेंट शेयरिंग करे.
0: बिल्कुल.
2: ओकर लाइटनिंग ओकर साउंड सिस्टम.
0: हाँ.
2: जितना चीज बा सब चीज दो लोग खातिर
0: तैयार
2: तैयार करा जाता.
0: हाँ.
2: और ना भूलते हुए हमने के डीजे भी डीजे भाई लोग हवन जा स्पाइकी वी नीलका भाई वकील आबी और आनी.
0: अच्छा.
2: और आवा हमने के नया अनुभव में हमने के मन शेयर करा
0: बिल्कुल. हाँ.
2: और ना भूलते हुए टिकट सगरो बेचाता अभी पूछते बाहर आई कहाँ कहाँ पर टिकट बा. और नहीं तो हमारे में को टेलीफोन बा 5796-6-6 ई पर सब अपन रिजर्वेशन करे.
0: बहुत अच्छा. तो इहर जलसा की रात प्रोग्राम जो तो बहुत ही मच अवेटेड प्रोग्राम जैसे बोली ला जा पहला ऐसा प्रोग्राम होता मॉरिशस में. और ई में सब लोग अपन सहयोग दिया अपन योगदान दिया काहे कि हम जानी ला मॉरिशस भर में बहुत भोजपुरी प्रेमी बा. तो चल हमने के कलाकार लोग के हौसला चला बढ़ाए कि अगर ऐसा एगो बढ़िया प्रोग्राम के आयोजन करत हुआ जा तो हमने के कर्तव्य बनेला कि हमने आके ई में अपन योगदान दे के अपन साथ दे के ई प्रोग्राम के कामयाब देब सर एक ही प्रोग्राम के सफल बनाब सर तभी हमने के भोजपुरी के उद्धार हो. काहे कि हई जोन प्रोग्राम है ई एक्सक्लूसिवली 100% भोजपुरी में रही. और हमने के जोन मस्त ऑफ सेरेमोनी रही वो अभी बात कर लन भाई अवनीश जी और कुणाल जी तो वो प्रोग्राम में होइबे करियन. रंभा जी कहाँ कोनो से कम हो भी तो बहुत ही महान कलाकार होवन. तो इतना इतना दिग्गज कलाकार के एक साथ देखब कहाँ तोहरा मिली ये सब करे के. अगर हाई प्रोग्राम वहाँ सफल हो जाए तो वादा करे तो अंजा कुणाल जी और रंभा जी के ऐसा और प्रोग्राम के आयोजन करते रहे अंजा. तो चला हर एगो सुंदर

0: एगो सुंदर इवेंट के एगो सुंदर जैसे बोले राजा महफिल खातिर एगो शुरुआत तो छना हो के त है जोन शुरुआत है इह जलसा की रात ब्लिस ब्लैंकेट रोड आर्सेनल में 26 सितंबर शाम के 5 बजे से लेकर रात तक तोहर खातिर केवल तोहर खातिर केवल तोहर खातिर। तो चला कुणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद और राम भाजी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भाई जी हम के आज निमंत्रण दिला यहाँ पर आई के और हम के ये मंच दिला बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
2: बहुत धन्यवाद मौका दिला दोबारा आए के
0: फिर दोबारा अभी दोबारा से तिबारा हो जाए तीन बार हो जाए बाद में। तो चलो तो लोग जैसे कलाकार के जितना बोला आप सब उतना ही कम है और हमनी के जो मॉरिशस के कलाकार हुआ जाए तो हमनी के एगो गर्व के बात है कि ऐसा ऐसा कलाकार हमनी के मॉरिशस के भूमि में पैदा हो बा और भोजपुरी के उद्धार करत हुए कंसर कैसे जात हुए सब
2: हमनी धरती पर लेके आल है सन
0: बिल्कुल धरती पर लेके आल हुआ जा गॉड गिफ्टेड है जैसे भगवान की देन है जब ईश्वर तुहरा देन करे लन जा तो कल छहला नतमस्तक होकर स्वीकार करके एक आगे बढ़ाए तो श्रोतागण ही रह भाई कुणाल जी और रंभा जी की ओर से तुहर खातिर कलाकार के बात 5:56 हो गल बा थोड़ी देर में आप सुनबा देश विदेश के समाचार हम तोहर से आज्ञा चाहत हैं या नमस्कार और शुभ रात्रि आपको।

0: नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। विपक्ष नेता जुलेश नोगा ने यूनिवर्सल पेंशन से मींस टेस्ट हंसने के बाद बदले बजट अनुमानों का हवाला देते हुए बहस स्थगित किए जाने की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि सेकेंड रीडिंग और कमिटी स्टेज की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव ने बजट में सामान्य बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स को मेडिकल इंश्योरेंस से बाहर रखने का आग्रह किया। उन्होंने पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी अपनी राय रखी। ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में कल पेश आए जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या 235 पार कर गई। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। विपक्ष नेता जुलेश नोगा बजट 2026-2027 पर हो रही बहसों को तब तक रोकने की मांग कर रहे हैं जब तक कि बजट के अनुमानों में बदलाव न कर लिया जाए। उन्होंने इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि यूनिवर्सल पेंशन के लिए मींस टेस्ट खत्म करने के फैसले के बाद अनुमान बदल गए हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल विपक्ष नेता की इस मांग को निराधार मानते हैं और दूसरी परत तथा कमिटी स्तर के बीच स्पष्ट अंतर की ओर इशारा करते हैं। औद्योगिक तथा व्यापारी ग्राहकों के लिए पानी के टैरिफ में बदलाव लाए जाने पर अभी विचार किया जा रहा है। खेल मंत्रालय मॉरिशन डायस्पोरा से प्रतिभाएं आकर्षित करने के लिए एक नया कानून ढांचा तैयार कर रहा है। साथ ही थ्रियोली और फ्लैक में स्विमिंग पूल बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में एजेंडा में फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी शामिल है। साथ ही इसमें बैंक ऑफ मॉरिशस कमर्शियल बैंक को प्रीशियस स्टोन्स की बिक्री तथा प्रवासियों को मॉरिशन समाज में शामिल करने से जुड़े एक नए कानून का भी प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय डायबिटीज के इलाज से जुड़ी पहल फिर से शुरू कर रहा है, जबकि अन्य मुख्य परियोजनाओं में ई हेल्थ फ्लैक में ड्रग इस्तेमाल करने वालों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर और पॉम्पलेमोसिस में नए एसएसआईएन अस्पताल का निर्माण शामिल है। मंत्री अजय गणेश के अनुसार राष्ट्रीय मूल ढांचों के क्षेत्र में पश्चिम में नए मोटरवे के निर्माण से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि आएगी। उधर कृषि उद्योग मंत्रालय में श्रम शक्ति की कमी पाटने के लिए विदेशी कामगारों की भर्ती 15 जुलाई से शुरू होगी। ये थे बजट बहसों में लिए गए चंद फैसले। और अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानवाधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रीय सभा में कल अटॉर्नी जनरल ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में बात की। मंत्रिमंडल ने पिछले 9 दिसंबर को मेलरोज कैदखाने में कैदी एंडी सेल्मो की हुई मौत के मामले में पूर्व जज पॉल लाम शांगलिन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। कई कमियों की तरफ संकेत किए गए हैं और प्रस्तावित सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पेश है कैबिनेट की बैठक में लिए गए चंद अन्य फैसले।
1: कैबिनेट ने राष्ट्रीय सभा में क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार बलात्कार के मामलों में आरोपी ये दलील नहीं दे सकेगा कि घटना के समय वो पीड़िता का पति था, चाहे विवाह सिविल हो या धार्मिक। इसके अलावा घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट 2026 और उससे संबंधित नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसके तहत सर्टिफिकेट

0: टिकट और कैरेक्टर के लिए आवेदन डीपीपी के पास किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी जानकारी दी कि यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 जो 1 जुलाई को लगाया जाने वाला था अब 6 से 9 दिसंबर 2026 तक मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने जायजा लिया कि 23 जून 2026 को सऊदी अरब की मंत्रिपरिषद ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस्लामी मामलों दावत एवं मार्गदर्शन मंत्री या उनके प्रतिनिधि को मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के साथ मस्जिदों के सहयोग संबंधी एक एमओयू पर चर्चा और हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब में मॉरिशस के राजदूत और सऊदी अरब के इस्लामी मामलों दावत और मार्गदर्शन मंत्रालय के बीच बातचीत जारी है। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी जुलाई 2026 में 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सह मेजबानी करेगी। इनका उद्देश्य खतरनाक कचरे के अवैध सीमा पार तस्करी पर रोक लगाना तथा कर और सीमा शुल्क से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच क्षमता को मजबूत करना है। कैबिनेट ने इसका भी जायजा लिया।
1: डीपीपी दफ्तर ने इंटरमीडिएट अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के उस फैसले के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अपील दायर की है जिसमें डॉक्टर नवीन रामगुलाम के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई है। ये अपील 14 आधारों पर की गई है जिसमें अदालत के कानूनी तर्क और उसके निष्कर्ष दोनों को चुनौती दी गई है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के वकीलों को अपील के नोटिस की कॉपी मिल चुकी है। डीपीपी ने ये भी संकेत किए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई तय करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि अपील की तेजी से समीक्षा करना न्याय के हित में होगा। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस ने आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान बजट में जनरल इंश्योरेंस पर 5% टैक्स लागू किए जाने के फैसले पर चर्चा की। संगठन के महासचिव वशिष्ठ रामखिलावन ने उम्मीद जताई कि ये नया टैक्स मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू न हो। उन्होंने पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी बात की। पेशा रिपोर्ट।
2: सामान्य बीमा पर 5% कर लगाए जाने की घोषणा के बाद इंश्योरेंस क्षेत्र में कई सवाल उठ रहे हैं। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव का कहना है कि नई कर व्यवस्था से मेडिकल बीमा को छूट दी जानी चाहिए।
3: Et une partie qui est déduite dans l'income tax. Pourquoi tout le monde qui a un plan de pension la santé, je connais que je peux déduire une partie dans l'income tax. Ça veut dire en main gauche, je peux donner un tax incentive.
2: हम लोगों को बता रहे हैं कि जब कोई एक हेल्थ पेंशन प्लान लेता हो तो इसका एक भाग इनकम टैक्स में घटाया जा सकता है। एक हाथ में हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूसरे हाथ में हम 5% टैक्स लगा रहे हैं। स्वास्थ्य प्रणाली पेंशन प्रणाली के समान ही फंडेड होना चाहिए। इसका बड़ा हिस्सा सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, लेकिन रकम का एक हिस्सा निजी क्षेत्र में काम करने वालों की जेब से आएगा। हम आज स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 35 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस दुर्भाग्यवश बहुत महंगा है और सबकी पहुंच में नहीं। पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी बातचीत चली।
3: PRGF, quand nous pétions ali, nous pétions ali dans NPPF. Vous pensez, c'est très important qu'il nous maintienne l'obligation du gratuity. Mais de l'autre côté, ça, pour faire tout un employé, parce que sinon, il prend un gros shortfall.
2: PRGF को निकाल कर MPPF में डाल रहे हैं तो ग्रेच्युटी की अनिवार्यता बरकरार रखनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि MPPF में योगदान देने वाले एम्प्लॉयर को दुगनी रकम चुकानी पड़ जाए। यदि वो पेंशन स्कीम को बरकरार रखकर MPPF और ग्रेच्युटी फंड का भुगतान करे तो 3 गुना हुआ। सीएसजी में 3 और 6% रकम को एमपीपीएफ में शामिल किया गया है, जो अच्छा कदम है। पेंशन स्कीम वाले मात्र 4.5% का चयन कर सकते हैं और जो पेंशन स्कीम में नहीं है वे 4.5% रकम काट सकते हैं। ये हमारा प्रस्ताव है ताकि कोई असमानता ना हो।
3: Et ben c'est qui paye en groupe pension scheme quand je calcule gratuité, je suis capable de déduire la portion qui est ramenée par ça 4.5%. Ça c'est ce qu'il nous proposait parce qu'il est là il y a une fairness to all.
1: Federation of Public Sector and Other Unions ne basic retirement pension yani universal pension banaye rakhne ka samarthan kiya hai. आज सुबह पोर्ट लुइस में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। विजय बंधन ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में प्रस्तावित सुधारों की भी आलोचना की।
2: फेडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेने वाले स्टेज एज पेंशन के कदम का कड़ा खंडन किया। इंडिपेंडेंट पेंशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी और पेंशन के संचालन के लिए सेंट्रल पेंशंस एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की स्थापना का भी विरोध किया गया। इन संगठनों की क्या आवश्यकता है, इनका काम क्या होगा, पेंशन कैसे निर्धारित करेंगे। बजट में नहीं बल्कि अलग से ही पेंशन पर बातचीत की जानी चाहिए थी, जहां सार्वजनिक क्षेत्र और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों को साथ लाना चाहिए था। हम कोई समाधान लाते। श्रमिक संघ मात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कर्मचारियों के हित के लिए भी कार्यरत है। इसके अलावा सार्वजनिक जुटावों से संबंधित पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट पर भी चर्चा की गई।
1: 1986 में स्थापित तेहूश के रिहैब सेंटर के मुख्य रूप से नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने, लत से जूझ रहे लोगों की मदद और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के वास्ते संघर्ष किया है। ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सेंटर ने लोगों की बातें सुनने, उन्हें सहारा देने और उनके जीवन को फिर से संवारने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि किसी भी लत के पीछे न सिर्फ एक परेशान व्यक्ति बल्कि अक्सर एक ऐसा परिवार भी होता है जो खुद को बेबस महसूस करता है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। स्विट्जरलैंड और मेक्सिको की कई राहत और बचाव टीमें मदद के लिए वेनेजुएला पहुंची हैं, जहां कल पेश आए 2 सिलसिलेवार जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या 235 पार कर गई है और 4,300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कई इमारतें ढह गई हैं और मलबों से लोगों को निकालने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज दिन के दौरान एक महिला को मलबों तले से जिंदा निकाला गया। विस्तार विधि मासी बोरन के साथ।
0: वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूचाल ने पूरे देश को गहरे संकट में डाल दिया है। सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों घायल। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस बीच मलबे से जिंदा निकाले गए लोगों ने इस भयावह त्रासदी के बीच उम्मीद की नई किरण जगाई है। बुधवार को वेनेजुएला में 1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए। इस आपदा में अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,300 से अधिक घायल रहे हैं। हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान का सबसे बड़ा केंद्र उत्तरी क्षेत्र लागुआरा बना हुआ है। यहाँ बचाव दल और स्थानीय स्वयंसेवक भारी मलबे के बीच लगातार जीवित लोगों की तलाश में जुटे हैं। खबरों के अनुसार राहत अभियान के दौरान एक ध्वस्त इमारत के मलबे से एक दूध मुहे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। ये भूकंप पिछले 100 वर्षों में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में इमारतें जमीन में धंस गई हैं, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, बिजली और संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं तथा हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। मृतकों और घायलों के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं।
1: और उधर कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह यूके भीषण गर्मी का कहर झेल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज उत्तरी वेल्स,

और उत्तरी यूके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, कई इलाकों में बिजली की आंधियों का अनुमान भी है। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर आज रात से हमारे इलाके पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज शाम ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। देर रात और कल सुबह भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाली इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। कल दोपहर बाद से मौसम में सुधार आने की उम्मीद है। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:45 पर सूर्योदय, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा।

मौसम के हाल के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में लुडोविक हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। लाबोद स्ट्रीट बोआरूज पॉम्पलेमूसेज में, लाबोद स्ट्रीट बोआरूज पॉम्पलेमूसेज में 76 साल के 76 इयर्स ओल्ड श्री मनलाल रामसौ जो आनंद बाली नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री राम सिंह रामसौ के मकान लाबोद स्ट्रीट बोआरूज पॉम्पलेमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉम्पलेमूसेज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मैडम लुलो रोज़बेल में 75 साल के 75 ईयर्स श्री मुनेश्वर रामनोहर जो ईश्वर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे श्री महेंद्र रामनोहर के मकान मैडम लुलो रोज़बेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांग जानी रोज़बेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। अवेन्यू माइकल लील पाई में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री कृष्णा गणेश जो माजी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे श्री आश्ले गणेश के मकान एवेन्यू माइकल लील पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। साइजिन रोड न्यू ग्रोव में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती गौरी गोबिन पैदाशी नाम लुफो जो जामुनती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह दस बजे इनके बेटे श्री संदेश गोबिन के मकान साइजिन रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। मामबहाल रोड बुआ शेरी में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बानुमती माताओ जो बानू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह दस बजे इनके भाई श्री विजय माताओ के मकान मामबहाल रोड बुआ शेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौम बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। नंबर 136 शातोदो स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री विजय रामनाथ जो विजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी श्रीमती दमयंती रामनाथ के मकान

नंबर 136 शतदो स्ट्रीट थोंगबाओ पोर्ट लुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाओ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। कालीमार रोड रोशनोमी 63 साल के 63 years old श्री केपाचार्य ठाकुर सिंह। श्री केपाचार्य ठाकुर सिंह जो मितानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी का सुबह 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमार रोड रोशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। रॉयल रोड बेलवेदिया में 42 साल की 42 years old श्रीमती ज्योति चातुआ पैदाइशी नाम सुकन जो करिश्मा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 11:15 बजे इनके पिता श्री राजेंद्र सुकन के मकान रॉयल रोड बेलवेदिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11:15 AM। श्वाजी रोड पर्स डिफ्लैक में 81 साल की 81 years old श्रीमती निराधा रामा पैदाशी नाम सीमोची जो डीलावती नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनकी बेटी श्रीमती सनियो बंदीप के मकान श्वाजी रोड पर्स डिफ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। काली लेन बॉम्बू में 80 साल के 80 years old श्री हरिबस तुप सिंह जानकी जो दो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताज साहब पिया बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 12:00 PM। रिवर व्यू लेन वेदर में 75 साल के 75 years old श्री राजेश्वरन पीले नलातोंबी जो इंदिरा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनकी पत्नी श्रीमती सेवा क्योंवादी नलातोंबी के मकान रिवर व्यू लेन वेदन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्तान सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: RM3 Radio.
1: नमस्कार, इस समय 6:23 हुए हैं और ये है रेडियो मनोरंजन आप लोगों की सेवा में। रेडियो मनोरंजन में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत ही सफल गुजरा होगा, आपकी हर प्लानिंग सफल हुई होगी, आपने जो सोचा था वो आप कर पाए होंगे। लेकर आए हैं हम आपके लिए नई सोच कार्यक्रम।
2: नई सोच।
1: आपका स्वागत करते हैं हम नई सोच कार्यक्रम में। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और साथ दे रहे हैं हम ऐसे गानों के साथ जिससे जीवन में हमको मिल जाती है ऐसी खुशियाँ, ऐसे पल जहाँ पर हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है। तो चलिए ज़रा हम सुनते हैं शिवाजी चट्टोपाध्याय जी का गाया हुआ ये गाना, 1942 अ लव स्टोरी मूवी का ये गाना है।

कहीं रुकेंगे कहीं पे, रुकना तो सफ़र को तय करने के बराबर नहीं होता है, रुक जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो मंजिल होता है और अगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सो रुकने से हमारा उद्देश्य कहाँ पूरा होगा, चलते जाना है, थोड़ा ठहर जाना है, थोड़ा सुस्ता लेना है, फिर भी हमें आगे बढ़ते जाना है। जीवन के दिन बहुत छोटे सही है पर बहुत बड़े भी हैं, क्योंकि इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि सफलता हमारी राह देख रही है। अगर हम सफलता की राह देख रहे हैं तो सफलता भी हमारा इंतज़ार ज़रूर कर रही है, मंजिल पर बैठ के मंजिल पर हमारी राह तक रही है।

सोचना हो अगर तो आप ज़रूर सोचिएगा कि किस तरह तय करें हम अपना ये रास्ता। इस रास्ते से गुजरते हुए जो हम चलते जाएंगे तो ये रास्ता हमें खुद ब खुद ले जाएगा मंजिल की ओर। ये है नई सोच कार्यक्रम आप लोगों के लिए और आप लोगों के मनोरंजन का ये है सिलसिला। आप लोगों के इस जीवन में आपको हमेशा खुशियाँ मिले, यही हमारी उम्मीद है। वैसे खुशियों की तलाश हर किसी को होती है, सुख की तलाश हर किसी को होती है, पर अपना लक्ष्य बहुत ही साधिएगा, बहुत अच्छी तरह से साधिएगा, क्योंकि दूसरों का सुख देखकर आप ये ना समझिए कि वही सुख मेरे लिए भी होना चाहिए। क्योंकि ये गाना कहता है जसपाल सिंह की आवाज़ में कि गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। हर किसी को देखना है कि हमें क्या सुख देने वाला है। दूसरों का सुख पाकर सुखी होने में कोई भी अकलमंदी नज़र नहीं आती। आप ज़रूर अपना रास्ता तय कीजिएगा, अपनी मंजिल तय कीजिएगा।

चलिए जरा जिंदगी में हम कुछ मुस्कुराना सीखें, कुछ गाना सीखें, मुस्कुराते हुए चलें, गाते हुए अपना ये जीवन बिताएं, और जहां भी गम नजर आए उन गमों को हम कहीं ना कहीं अपनी मुस्कुराहट में, अपने गानों में छुपा लें और इन गमों को खुशियों में बदलने की कोशिश कर डालें।

कहते हैं इस जहां में हर किसी को हर कोई चीज़ नहीं मिल जाती, कभी ये मिलता है कभी वो मिलता है, पर हर चीज़ नहीं मिलती, और जो मिल जाता है उसमें खुश रहना, जिसको आ जाता है ये ज़िंदगी, उनके लिए बहुत ही हसीन हो जाती है।

चलिए जरा हरी हरण की आवाज़ में ये जिंदगी का सफ़र मूवी का ये गाना सुनते हैं और देखते हैं कि ज़माने में जितने भी गम मिलते हैं उन गमों को कैसे सजाया जा सकता है, उन गमों को सजा के खुशियों को खुशियों में ढाला कैसे जा सकता है।

0: बस यहीं पर समाप्त हो जाएगा हमारा आज का नई सोच कार्यक्रम। नई सोच कार्यक्रम में जो गाने हमने आपको सुनवाए उससे मन आपका बहुत ही शांत हुआ होगा, यही हमारी उम्मीद है। आइए आप लोगों के लिए हम पेश करते हैं दिलों की आवाज़, और दिलों की आवाज़ कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं आपके लिए रेडियो मनोरंजन पर।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं और जहां भी होंगे आप खुश होंगे, बहुत ही तसल्ली होगी आपको, संतुष्ट होंगे आप, ऐसी हमारी उम्मीद है। जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको सफलता ही सफलता नज़र आए, ये हमारी दुआ है आपके लिए। लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम आज का दिलों की आवाज़ कार्यक्रम और आपके दिलों से जितनी भी आवाज़ें निकलेगी, यानी कि जितने लोगों के लिए आप गाने सुनना सुनवाना चाहेंगे, आप ज़रूर हमें बताइएगा 5250-6200 पर मैसेज के जरिए, 4028070 कॉल के जरिए। तो चलिए, इन दो नंबरों पर हमारा आपका कांटेक्ट रहेगा, आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में भाग लीजिएगा। क्रिमिनल मूवी का ये गाना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हम, और ये गाना हम आप सबों के नाम करते हैं। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ें हैं।

तो बस साथ हमारा आपका है, निभाएंगे हम 9 बजे तक, और हमारा आपका साथ दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में है। हम हैं सुरेखा, आपके साथ हैं और आपकी फरमाइशों को आप तक पहुंचाने में हम व्यस्त हैं। चलिए आप ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा और इस प्रोग्राम की शान बढ़ाइएगा अपनी पसंदों के साथ। वैसे हमारा आपका साथ 9 बजे तक दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में है और इसके बाद हमारे इस चैनल पर आप उर्दू प्रोग्राम सुन पाएंगे, फिर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम भी सुन पाएंगे। फिलहाल तो चलिए 9 बजे तक हम दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में जो शामिल हैं आपके साथ, तो प्रकाशवती जी भी हमारे साथ हैं, फिर उषा जी ब्रह्मस्थान से हमारे साथ हैं, किचन में काम कर रही है और कुकिंग के साथ सिंगिंग भी कर रही है। हमारे गानों को सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाइएगा उषा जी, हम भी आ जाएंगे थोड़ा सा चखने के लिए, या फिर अगर आप परमिशन दें तो आपके साथ बैठकर डिनर करने के लिए। चलिए हम हैं सुरेखा आपके साथ साथ और लेकर आए हैं पसंद श्रेनल जी की। श्रेनल जी अपने प्राइमरी स्कूल डेज को याद कर रही है, तो चलिए उनकी पसंद है तारे आसमां पे। वैसे ये गाना है किंग अंकल मूवी का और ये गाना शायद श्रेनल जी खूब गुनगुना रही होंगी प्राइमरी स्कूल डेज में। तो चलिए उनकी तरफ से ये गाना हम पेश करते हैं उनके भैया श्रवण के लिए, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान, नाव्या और पूरे तिलक फैमिली के लिए, आंटी श्राम सरन जी के लिए जो इस वक्त स्विट्जरलैंड से सुन रहे हैं हमें। हमारा साथ देते रहिएगा ज़रूर।

आसमां के तारों को देखिए बचपन हमारा नजर आ जाएगा, इन तारों के बीच जो बचपना था वो मजा दे जाएगा। इस समय 7:13 हुए हैं और बढ़ेंगे हम खेल मूवी के गाने की ओर। ये खेल मूवी का गाना भी कुछ न कुछ याद तो लेकर ज़रूर आएगा आपके जहन में। और ये गाना हम सुदेवी जी के लिए बजवा रहे हैं। वाकवा की सुदेवी जी ने गाना सुनना चाहा है, खतों में जो बातें हैं वो बातें सुननी चाहिए। ये गाना हम पेश कर रहे हैं सुदेवी जी की तरफ से त्रियोले की दीदी ललिता जी के लिए, कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया के लिए, मालगा के राम रतन परिवार के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेवी जी।

खतों की बातें भी कैसे क्या हुआ करती थी, मैसेजेस की बातों में भी दम है पर खतों में जो दम था वो अलग ही था। खतों के मैसेजेस का इंतज़ार करना, पोस्टमैन का इंतज़ार करना, वाओ क्या ज़माना रहा। चलिए ज़रा हम इस बार बढ़ते हैं उन बातों की ओर जिन बातों में फूलों का जिक्र नज़र आता है। जिक्र जो नज़र आता है फूलों का, तो उनमें जिक्र नज़र आता है नज़ाकत का भी। चलिए इस नज़ाकत को सुनते हैं हम तलत अजीज़ की आवाज़ में। गायत्री जी की पसंद है ये, पिछली वर्ष सैं पिया से गायत्री जी ने मांगा है ये गाना अमृता जी के लिए, उनकी बहन अमृता, उनके बच्चों के लिए बेटी नेहा, क्षिति और दिव्या के लिए, बेटे सुधीर और कमलेश के लिए, बहू सुधा के लिए और साथ में भाभी मीरा, उनकी दो बेटियाँ गिरिशा और मेधा भी हैं, उन सब के लिए उन्होंने ये गाना मांगा है। चलिए ज़रा सुनते हैं वो बात जो छिड़ चुकी थी रात को, वो बात जिसमें फूलों की चर्चा नज़र आई, खुशबू की चर्चा नज़र।

बिखरा रहे हैं हम भी खुशबुएं, खुशी की खुशबुएं, संगीत की बिखरा रहे हैं हम। बस इस खुशी, इस खुशबू में शामिल हो जाइएगा। हमारा ये कार्यक्रम है दिलों की आवाज़, हमारी ये महफिल है दिलों की आवाज़। आपके दिल से जो आवाज़ निकलती होगी किसी गाने को सुनने की, तो हमसे हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम 5250-6200 पर, और जो कॉल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा 4028070 पर। हम सुरेखा आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस अटेंड ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल तो मैसेज मिला है हमें गुलशन जी का। गुलशन जी सुनना चाह रहे हैं ये गाना जिसे लिया गया है प्यार इश्क मोहब्बत से। उन्होंने ये गाना मांगा है टू माय लवली एंजल ऐशा, उनकी लवली एंजल ऐशा के लिए ये गाना, उनकी मामा प्रभा के लिए, उनकी बहन दीक्षिता के लिए, और भोला परिवार के लिए, और हमारी सखी हंसनी के लिए।

थोड़ा थिरकने का मन कर रहा है शायद सचिन जी को। सचिन जी ने पॉम्पले मुझसे मांगा है नाच बेबी नाच का ना। चलिए जरा खौफ मूवी का ये गाना दिलर मेहंदी और आशा जी की आवाज़ों में सुनते हैं और हम रिक्वेस्ट पूरी करते हैं सचिन जी की जो पॉम्पले मुझके रहने

0: Continuous music. RM3.
1: नजर आता है कोई अजनबी कभी कभी जो जाना पहचाना सा लगता है क्या बात है अजनबी जो जाना पहचाना सा लगता है कुछ यूं ही इस तरह पहचान में नहीं आता सदियों का रिश्ता होता है जन्मों का रिश्ता होता है चलिए इसी रिश्ते का जिक्र सुनते हैं अगले गाने में हम सब उस्ताद है मूवी का ये गाना है आप लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिएगा ये गाना और इस गीत की फरमाइश करने वाली है ललिता अजीत खयोले से उन्होंने ये गाना अपनी बहनों के लिए मांगा है सुदेवी जी

ये बस दिल टूटने की आवाज़ है, वैसे तो आवाज़ नहीं आती है दिल के टूटने पर, शीशा टूटे जोर की आवाज़ आती है, बस दिल टूटता है तो खामोशी से टूटता है। ये है अलका याग्निक की आवाज़, कसूर मूवी का गाना, और इस गीत की फरमाइश करने वाली है लाल माटी से सुनीता जी।

और चलिए जरा हम 7:50 जो हुए हैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 8 भी बजेंगे और 8:30 भी बजेंगे, साथ हमारा आपका रहेगा तब तक। 9 बजे तक है हमारा आपका साथ। चलिए ज़रा हम पेश करते हैं जीना सिर्फ मेरे लिए मूवी का ये गाना, मोका की सुदेवी जी की तरफ से। उनकी बेटी युधिष्ठा का जन्मदिन है और उनके पति राजीव जी की तरफ से, बेटी चस्का की तरफ से, बहन जो विदेश में रहती है, सारे कजिन्स की तरफ से ये गाना हम पेश करते हैं युधिष्ठा जी के लिए। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद सुदेवी जी की तरफ से, उनकी माता जी की तरफ से। और इस वक्त हमें सुन रहे हैं राजेंद्र कुपत जी भी, जो लंदन में है। इस वक्त बहुत गर्मी हो रही है लंदन में। राजेंद्र कुपत जी हमारे इस प्रोग्राम से थोड़ी सी ठंडक पा रहे हैं।

और त्रियोले से हमें सुन रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी, साथ भी दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम की शान भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी फरमाइश के साथ। चलिए सूरज शर्मा सजादा जी को हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ये गाना मांगा है अलग अलग मूवी से, और अलग अलग मूवी का ये गाना अपने बेटे निशाल के लिए मांग रहे हैं, पूरे बिसेसर फैमिली के लिए मांग रहे हैं और रेडियो मनोरंजन फैमिली के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने ये गाना मांगा है हमारी सखी हंसिनी के लिए, सखी नितिशा, सखी पूनम और पूजा के लिए। तो चलिए

0: गाना हम हमारे सभी श्रोताओं के लिए पेश करते हैं जो हमारे साथ है इस वक्त सूरज की तरफ से।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको
2: हाँ?

लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गाना है और ये गाना हमने जीने की राह मूवी से लिया है। इस गाने की फरमाइश करने वाली है विधा जी। विधा जी रहती हैं तेहोश, उन्होंने इस गाने की फरमाइश अपनी माँ श्रीमती जी के लिए की है।

से लिया गया और ये गाना हम उनके लिए पेश कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार के लिए भी पेश कर रहे हैं उन्हीं की तरफ से। तो अनीता जी की तरफ से उनके पति राज के लिए, बेटे आंतिश के लिए, अंकुश के लिए, बहू मनीषा और अशीमा, पोती हिमेशा और आध्या, पोते अंश के लिए, और थैंक यू हमारी पूरी टीम के लिए ये गाना

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: अब चलिए जरा हम चलते हैं किरण जी की ओर, सुखी नाम की ओर. सुखी नाम की किरण जी ने मांगा है, हम इंतजार करेंगे मूवी का ये गाना.

उन्होंने भी सुनना चाहा है और हम अपने सभी श्रोताओं को भी सुनवाना चाहेंगे ये गाना है आशा भोसले की आवाज़ में। जी हाँ, आशा भोसले की आवाज़ का ये गाना आप सुनिएगा और इस आवाज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसकी गहराई में डूब जाइएगा।

तो अब चलिए जरा हम छोटी जी को थोड़ी खुशियां दे सके तो देते हैं। छोटी जी को हम सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज का ये गाना, प्रोफेसर मूवी से लिया गया। और इस गाने को हम छोटी जी की तरफ से बजवा रहे हैं। छोटी जी जो पुलौजे रहती है, उन्होंने ये गाना ललिता जी को सुनवाना चाहा है, आत्माराम जी, हरीश जी और प्रभावती जी को।

और इस बार रेहाना जी क्या मैसेज मिला है? रेहाना जी सुनना चाह रही है फिल्म आशिक का गाना, और उन्होंने ये गाना फिनिक्स से मांगा है। तो चलिए हम रेहाना जी के नाम करते हैं, और ज़रा वैसे रेहाना जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। रेहाना जी तो हमारी रेगुलर श्रोता है। चलिए रेहाना जी के नाम करते हैं उनकी पसंद का गाना।

आशिकी मूवी का ये गाना है. उन्होंने ये गाना अपने पति अरविंद जी के नाम किया है और कुछ ज़माना याद करने का ये मौसम है, सो वो ज़माना याद किया है.

बस चलिए अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ पर से बुलावा आया है. इनफैक्ट मुकेश की आवाज़ का ये गाना अपने हुए पर आए मूवी से लिया गया. हम पेश कर रहे हैं इब्राहिम जी के लिए जो पोर्ट लुइस के रहने वाले हैं, उन्हीं की पसंद का ये गाना.

0: You're listening RM Free Radio Radio Radio.
1: और इस बार यादों का ये समंदर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. यादों का ये समंदर हरीश जी ने सुनना सुनवाना चाहा है बबासे से अपने सभी दोस्तों के लिए.

और इस बार जो ले चलेंगे आपको हम, तो हम आपके नाम करेंगे अब्बू जी की पसंद का गाना। अब्बू जी ने असली नकली मूवी के गाने की फरमाइश की है और उन्होंने ये गाना मांगा है अपने पूरे परिवार के लिए, आफेज जी के लिए, असलम, आयाज, जायान, जाहिरा, रईस, कला चोटी, अपी जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: चलिए ये गज़ल सुनते हैं हम तलत अज़ीज़ की आवाज़ में, और ये गज़ल हम बजवा रहे हैं भुज वैद्य के दिलीप जी के लिए, उनकी पत्नी करुणा के लिए और उनकी बेटी दिव्या के लिए। और इसी गज़ल के साथ समाप्त हो जाएगा हमारा आपका ये साथ दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के ज़रिए। और थोड़ी ही देर में 9 बजने वाले हैं, 9:10 पर आप एक विशेष कार्यक्रम उर्दू भाषा में सुनिएगा शूरा के अवसर पर। और हमारा आपका साथ फिर 10:10 के लगभग होगा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के दौरान, तो ज़रूर साथ देते रहिएगा। विशेष कार्यक्रम होगा शूरा के अवसर पर 9:10 पर।

مجرى خلق.

0: तो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
1: अलैहि। हज़रात वक्त असर है, मौला हुसैन जीन से ज़मीं की तरफ आते हैं, लेकिन बदन पर इतने तीर लगे हैं कि मौला का लाशा मौला का बदन तीरों पे मुअल्लक है। एक दुखियारी माँ अपने लाल के करीब आती है, चाहती है अपने लाल को बढ़कर गले से लगा ले, लेकिन बदन पर इतने तीर लगे हैं कि दुखियारी माँ के बहन समात फरमाए हज़रात से। लिपट के शाह से

मैं कितने तीर निकालूं कि तुमको चैन मिले। ये बन भी देखें बतौर मैं कि

0: अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
1: इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म्बे खदा यही तस्लीमन ले अम्रे अज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बेमसाबिना बिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम वजालना व इयाकुम मिनत तालबीना बिसारही मा वलीहिल इमामल महदी मिन आल मुहम्मदिन अम्मा बाद فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم

अगर तन से सर जुदा हो जाए तो नहीं बोलता, मगर इस ज़ाते गिरामी ने तिलावत करके बताया कि अल्लाह ने क्या कहा, जो राह खुदा में शहीद हो जाए उसे मुर्दा ना समझना। आयत की लाज रख ली, आयत को दलील बन करके इमाम ने तिलावत करके बताया कि शहीद जिंदा कैसे होता है, तुम्हारी निगाह में जिंदा वो जो बोले। लिहाजा इमाम ने दुनिया की बातें नहीं की, कुरान के तिलावत करके, मसायब नहीं पढ़ा, तिलावत करके बताया दीन के लिए आए थे, दीन की बातें करते हुए दुनिया से जा रहे हैं। एक सलावत इरशाद फरमा दें। मेरे साथ जुड़े रहिए। रोने के लिए मैं जिस तरतीब से मैं चंद फ़ज़ाइल के हिस्से दे रहा हूँ, इसको जमा कर लेंगे तो खुद ही रोने लगेंगे। रोज़े आशूरे मुझे पता है और ये भी पता है कि क्या पढ़ना है, मगर मेरे साथ रहिए। जिंदा मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। देखिए, मैं आले मोहम्मद की एक फजीलत का गोशा और यहीं से मसाए। क्या दिन है आज? जुमा है, रोज़े जुमा। कहने दीजिए, दिनों में सारे दिन बराबर नहीं, दिनों में जुमा का मुकाबला नहीं। सारे महीने बराबर नहीं, महीनों में रमज़ानुल मुबारक का मुकाबला नहीं। यानि दिनों में सारे दिन बराबर नहीं, जुमा का मुकाबला नहीं। महीनों में सारे महीने बराबर नहीं, रमज़ानुल मुबारक का मुकाबला नहीं। आगे चलते जाइए, ईदों में सारे ईदें बराबर नहीं, ईदों में गदीर का मुकाबला नहीं। किताबें सब हैं, बहुत से सहीफे हैं, किताबों में कुरान का मुकाबला नहीं। मजहब बहुत सारे हैं, लेकिन मजहबों में आले मोहम्मद की विला रखने वालों का मुकाबला नहीं। इसी तरीके से खानवादे बहुत सारे हैं, मगर आले मोहम्मद का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे जैसा खानवादा नहीं। अल्लाह ताला ने इस खानवादे की मदहा की, किस शक्ल में की? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज़्ज़ा। नजासतों से जो बचे उसे उम्मत कहते हैं, नजासत जिससे दूर हो उसे आले मोहम्मद कहते हैं। उम्मत आपस में मोहब्बत करेगी, मगर अहले बैत से मवद्दत की दावत दी ये कहकर, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। उम्मत खाते हुए खिलाएगी या बच जाए तो देगी, मगर जिसे खुदा अपनी तौहीद के लिए जरिया समझता है कि यही मेरी मारिफत का जरिया है, जिन्हें अपनी तौहीद शनासी के लिए दुनिया में भेजा, तौहीद के पैगाम के लिए, बका के लिए जिस कानवादे का इंतखाब किया, ये वो कानवादा कि जिन्होंने लम्हा बा लम्हा दीन का ख्याल रखा। उम्मत बच जाए तो दे, खा ले तो दे, मगर जिसका इंतखाब खुदा करता है वो कौन है? युत एमून तआम अला हुब्बे ही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये वो हैं जो खुद ज़रूरत के होने के बावजूद भी ये मिस्कीन यतीम असीर को खिला देते हैं। अजीज, छोटा सा वाक़िया यहीं से, यही मसायब है अगर आप जाग रहे हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ात गिरामी हैं कि जिसे रसूलत माब ने सिर्फ इमाम हुसैन दोनों नवासे, ये नवासे हैं रिश्ते के एतबार से, मगर क़ुरान के एतबार से बेटे हैं, इसलिए कि मुबाहला में अबना अना व अबना अकुम की जगह रसूलत माब ने नवासे की शक्ल में नहीं, बेटों के शक्ल में लेकर गए। कितना चाहते हैं, खुतबा दे रहे हैं, अगर हुसैन आ गए, बच्चे हैं, खुतबे को रोक दिया, फौरन कहा हाजा हुसैन उन फ़ारिफ़ु, ये हुसैन है इसे पहचानो। नमाज पढ़ रहे हैं, नवासा पुश्त पर आ गया,

रसूल दे दिया। तवज्जो करना, कुछ कहने जा रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रब्बिल आला। अरे दो चार पाँच छः सात, उसके बाद तो खुद ही मजमा उठ के देखेगा हो क्या गया जनाब को। लोग कहते मौलाना ये कैसे हो सकता है, अरे बदहजमी हो जाहिलो, तुम्हें पता ही नहीं है उम्मत में आले मोहम्मद में फ़र्क है। अभी मैंने मौत के हवाले से कहा, तवज्जो कीजिएगा मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ कि कैसे हो सकता है कि तूल दे दिया हो। कुछ नहीं, अभी नमाज होती है, बस औकात देर से आने वाले सजदा उठा के पहुँचते हुए कहते या अल्लाह, सारा मजमा रुकू में है, मौलवी रुकू में है, पेश इमाम रुकू में है, एक बंदा जिसे हम जानते भी नहीं हैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसने कहा या अल्लाह, हमने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बंदा अगर या अल्लाह कहे तो पूरी जमात रुक जाती है। जब एक बंदे के आवाज़ पर वजह से जमात रुकू में रुक जाए और हुसैन के लिए नबी सजदे में रुक जाए तो क्यों ताजुब है। हुसैन हुसैन है हादा हुसैन फ़ारिफ़ु, कौन हुसैन अलैहिस्सलाम के जिन्हें बाग बहुत पसंद था। अब ये मसाइब के करीब के लिए रब्त है, बहुत ज़्यादा पसंद अहले बैत को बागबानी बहुत ज़्यादा पसंद, उसकी वजह मैं पढ़ चुका हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है आपने अगर कोई दरख्त लगाए हैं तो वो खजूर कैसे होंगे। कुछ लोग आए इमाम से कहा हुजूर बहुत रोएंगे, बस यहीं से मसाइब हैं समझिए, आखा आज खजूर खाने को दिल चाहता है। इमाम ने हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा चलो चलो, लेकर गए और जैसे ही बाग में दाखिल होना चाहते हैं निगाह पड़ गई कि आपका गुलाम खा रहा है, जानवर सामने खड़ा है कुत्ता उसे खिला रहा है। क्या कौन सी बात है इसमें तो, लेकिन इस काम को देख के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरख्त के आड़ में आ गए और चाहने वालों से कहा जरा देखो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है जानवर को खिला रहा है। जब खा चुका तो इमाम आगे बढ़े सलाम किया, अहले बैत हमेशा सलाम में सबकत करते हैं, सलाम किया, तवज्जो कीजिएगा बहुत रोएंगे मगर मेरे साथ रहिए, सलाम किया साफी सलाम हो तुम पर सलामुन अलैकुम। और ये जो जुमला है ना इसको आप भी महफूज रखिएगा, साफी माफ़ करना तेरी इजाज़त के बगैर आ गया। साफ़ी ने गौर नहीं किया, साफ़ी माफ़ करना तेरी इजाज़त के बगैर आ गया। बाग है इमाम हुसैन का, जुमला है इमाम हुसैन का। अंदर जैसे ही पहुँचे का साफ़ी ये बता कर क्या रहा था, कमौला एक लुखमा खा रहा था, एक लुखमा जानवर को खिला रहा था। बोले जानवर को खिला रहा था, हाँ राज क्या है वजह क्या है। कमौला ये बाग है ना, मैं भी हिफाजत करता, मेरा काम पानी देना है और इसका काम जो पौधों को छोटे दरख्त को जानवर आके खा जाते हैं बकरियां, उसे भोंक कर बाहर कर देता है यानी दरख्तों को बचाता है। अच्छा मैंने ये सोचा कि जब बाग का काम करने वाला मैं हूं और ये भी है तो खाने में दोनों का हक बनता है। इमाम रोने लगे, साफी जा मैंने राह खुदा में तुझे आज़ाद किया, 2000 दिरहम इमाम ने दिए, मेरे साथ रहिए बहुत रोएंगे, 2000 दिरहम इमाम ने दिए। बोला आपने मुझे आज़ाद कर दिया, खुश नहीं हुए आगा आज़ाद कर दिया, रोने लगे मौला क्या बात है कि आप मुझे आज़ाद कर रहे हैं। कहा साफी मैंने तेरे उस अमल को देखा। अच्छा आगा अगर आप आज़ाद कर रहे हैं तो एक गुजारिश है, मैं अब तक नौकर के उनवान से काम करता था, अब आज़ाद होके काम करूँगा। बोले कहाँ काम करेगा, बोले इस बाग में। बोले कैसी बातें करता है, मैंने आते हुए क्या कहा था बता, ये कहा था माफ़ करना तेरी इजाज़त के बगैर आ गया। अरे साफी तेरे अमल को मैंने दूर से जब देखा कि तेरे पास एक जानवर के भी हक को समझने की सलाहियत है कि ये बाग की मैं भी हिफाजत करता हूँ, जानवर भी करता है, खाने में तूने उसे अपना शरीक बना लिया, तेरा ये अमल मुझे इतना अच्छा लगा कि एक जानवर के हक को तो समझता है। उसी वक्त मैंने इरादा किया कि यह बाग तेरा है, इसीलिए अंदर आके मैंने कहा माफ़ करना तेरी इजाज़त के बगैर आ गया। साफ़ी रोने लगे, इमाम ने कहा बाग तो जब दे दिया था मैंने आज़ाद अब किया है, ये बाग तेरा है मेरा नहीं है,
अगर तू राजी हो तो मेरे असहाब चाहने वाले साथ आए हैं अपने बाग के खजूर।

थोड़े से हम लोगों को खिला, कितना सकी है मेरा मौला, नहीं समझ सकते। एक जानवर के साथ हक अदा करने की वजह से पूरा बाग दे रहे हैं और साथ में कह रहे हैं हमें थोड़े से खजूर।

है, जो आए वो आपके बाग से खा के जाए। ये हैं इमाम, और ये ऐसे होते हैं इमाम के चाहने वाले। जिस हुसैन ने जानवर का ख्याल रखने वाले को एक बाग दे दिया था, उसी हुसैन का पूरा कालवादा तपती जमीन पर भूखा प्यासा है, अल अतश की सदाएं लगा रहा है। करबला में दाखिल होने से पहले इमाम हुसैन ने हुर और हुर के लश्कर को सैराब किया था, दुनिया को पैगाम दिया था, भूख और प्यास के बारे में किसी को सताना नहीं चाहिए। मैं हुसैन हूँ, एक जानवर का ख्याल रखने वाले को इतना इनाम देता हूँ, मगर आज़ादारों, वो हुसैन के जिसने दुश्मन के लश्कर को बेसैराब किया था, वो भी प्यासा, उसका पूरा कानवादा प्यासा था। आज़ादारों, आज के मजलिस में मैं एक तोहफा आपको दे रहा हूँ, यही रोने के लिए काफ़ी है। थोड़े से मैं मसाइब का पहलू रखूँगा। मुझे आप ये बताइए, आदाब मैयत क्या हैं, आदाब ज़िबा क्या हैं? आदाब ज़िबा क्या है? करबला में, करबला की शहादत पे रोने वालों, मैं आपकी खिदमत में एक पैगाम देना चाहता, आदाब ज़िबा क्या हैं? आदाब ज़िबा ये हैं कि जानवर को जब ज़िबा करना हो तो पानी पिला लिया करो। जानवर को ज़िबा करते हुए पानी पिलाया करो, तीन घुंट मुस्तहवेद। जानवर को ज़िबा करो तो पानी पिला के ज़िबा करो, गिनते जाइएगा। एक दूसरे, जानवर को जब ज़िबा करो तो उसे क़िबले रुख का ख्याल रखो, और जानवर को जब ज़िबा करो तो इस बात का ख्याल रखो जो छुरी तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो कुंद ना हो, वो तेज़ धार हो। मुझे नहीं मालूम मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ और आप कहाँ बैठे हैं। आज़ादारों, जानवर को ज़िबा करो तो तेज़ धारी से ज़िबा करो, जानवर को जब ज़िबा करो तो पानी पिला के ज़िबा करो, जानवर को जब ज़िबा करो तो जानवर को जानवर के सामने ज़िबा ना करो, जानवर को जब ज़िबा करो तो हलक के जानिब से ज़िबा करना, पसे गर्दन ज़िबा ना करना, और जानवर को जब ज़िबा करना तो एक बार में ज़िबा नहीं, ज़िबा करते हुए गर्दन को जुदा ना करना। ज़िबा में है कि जानवर को ज़िबा करना तो हलक के जानिब से, मगर गर्दन को यानी सर को जुदा ना करना। अगर आप इतने आदाब सुन चुके हैं तो मेरे साथ करबला चलिए, जानवर को भी पानी पिला के, मगर हाय रे हुसैन, एक कतरे हाब नहीं दिया गया। और फिर आदाब ज़िबा है कि जानवर को जानवर के सामने ज़िबा ना करे, और चाकू तेज हो, शुमरे लई अपने खंजर को कुंद कर रहा था, तेज था, कुंद कर रहा था, ताकि हुसैन जल्दी से ज़िबा ना हो। ओ ज़िबा करो तो हलक के जानिब से, पसे गर्दन नहीं, ज़िबा करो तो सर को जुदा ना करना। वाह हुसैन, बहन खड़ी देख रही है, जालिम हलक से नहीं पसे गर्दन ज़िबा कर रहा है। लिखा यह है आदाब ज़िबा में, जुदा ना करना, बहन देखती रही, सर जुदा कर लिया गया। आज़ादारों ने सैयदु शहदा खुदा आपके रोने को कबूल फरमाए। आइए आज़ादारों, आज का दिन या आशूर का दिन है, एक रवायत आप सुने काफ़ी है मजलिस के लिए। आज़ादारों, तारीख बताती है कि जब एक बाद दीगर सब शहीद होते रहे, हुसैन ने लाशों पे लाशें उठाईं, और जब आखिरी वक्त आया तो आपने हसरत भरा ये कैसा इस्तगासा, हल में नासिर यंसुर ना, कोई जो मेरी मदद करे, दुश्मनों को पिलाने वाला मेरा हुसैन, भूखो प्यास के आलम में बे यारो मददगार। अज़ादारा ने सैयद शोदा तारीख ने लिखा कि वो वक्त भी आया कि हुसैन जब कैमे में दाखिल हुए, एक एक से रुख्सत होने में टाइम लग सकता था, लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा सारे मुकद्दरात को सफ बना लो, मैं तुम्हारे दरमियान से गुजर जाऊं। जब हुसैन दरमियान से निकल रहे थे, बीबियां इमाम के

पकड़ रही थी, आका आप जा रहे हो, आपके बाद हमारा क्या हाल होगा। अरे कयामत का वो समा था, बीवियों के आजादार रोने में कोताही ना करो, या आज आशूर का दिन नसीब हुआ है, ना जाने आइंदा साल हमारी जिंदगी का। अल्लाह हमें आले मोहम्मद की खिदमत गुजारों में शुमार करे, आजादारों में शुमार करे। आजादारों वो वक्त भी आया, तारीख ने लिखा कि हुसैन जब जाने लगे तो सब बीबियां दामन थाम रही थी, सबको तसल्ली देने के बाद खैमे से बाहर निकले। जनाबे ज़ैनब आई, भाई के बाहों में बाहें डालकर गले के बोसे देने लगी। इमाम हुसैन ने कहा, बहन खैरियत है, हमेशा पेशानी चूमती थी, आज मेरा गला चूम रही है। कहने लगी, मुझे अम्मा ने कहा था कि जब हुसैन वक्त आखिर रुखसत होके जाए तो हुसैन के गले का बोसा ले लेना, फिर उसके बाद शुम्र का खंजर होगा। वाह मोहम्मद, अजीब कयामत का समय था। हुसैन ने निदा हटाई, बोसे लेने लगे, भैया तू मेरे बाजू के बोसे ले रहा है, मुझे बाबा ने कहा था जब तू वक्त आखिर रुखसत होके जाना ज़ैनब के बाजू के बोसे ले लेना। हुसैन तेरे बाद ज़ैनब के बाजू रसन बांधे जाएंगे। सर दादा ने सैयदु शोहदा, अजीब कोहराम था, तारीख ने लिखा। आजादारों, इमाम हुसैन ने बहन से कहा था, इमाम बहन मुझे वो एक कुर्ता दे दो जो मेरा फटा हुआ है, लेके खुद भी जा बजा फाड़ दिया और जेब तन कर लिया उसके यानी अपने लिबास के अंदर। बहन ने पूछा, भैया ये क्या है। कहा, ये बहन इसलिए कि जब मेरे लिबास को छीने तो कम से कम मेरे आखिरी वाले इस लिबास को देख के मुझे छोड़ दे, अजादारों में कौन से मसाइब मेरे आका के पढ़ूँ। हुसैन चले, बहन रोती रही, वो बहन जो मदीने से जाते हुए कहती थी, अब्दुल्ला मुझे रोकना नहीं, मैं बहन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, अब्दुल्ला मैं भाई के बगैर। आज वो बहन भाई के बगैर अकेले हो रही है। अजीब गिरिया था, लेकिन जिम्मेदारी ज़ैनब की ज्यादा थी। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, भैया तुम बहन से रुख्सत होके जा रहे हो, ये बहन तुम्हें कैसे रुख्सत करे। ऐ मेरे माजाए हुसैन, भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे, हुसैन रुख्सत होके चले। आज़ादारों थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर लो, जनाबे फातिमा जहरा को तुम्हारे आंसूर आवाजें बहुत पसंद है, इसलिए कि हुसैन को फातिमा जहरा ने चक्की पीस के पाला था। हुसैन चलने लगे, घोड़जुल जना पे बैठा, अब बैठने के बाद आगे जाना चाहते हैं। एक बार मुड़ के देखा, ताजुब ना करना साहब औलाद हो, आप छोटे से सफर भी जाते हो, छोटे बच्चियां अगर छूटती हैं बार बार पलट के देखते हो। हाय सकीना जिसे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। पलट के देखा, अभी तो खड़ी हुई थी, सवार होके जाने लगी। हुसैन ने इधर नहीं देखा, मैदान की तरफ थे, लेकिन सकीना बाबा के पीछे जा रही थी। अचानक एक जगह जुलझना रुका, आपने कहा है जुलझना मुझे पता है तू भी 3 दिन से भूखा प्यासा है और तू भी जख्मी है, मुझे किसी तरीके से मैदान कारजार तक छोड़ दे। जुलझना ने कहा, मैं आपका ताबे मगर मैं मजबूर हूँ, मेरे कदमों की तरफ देखिए। ओ आज़ादारों कयामत का समा था, इमाम ने देखा सकीना कदमों को लिपट के कह रही है, ऐ मेरे बाबा के जुलझना मेरे बाबा को ना ले जा, सुबह से जो गया वो वापस नहीं आया। अरे मेरा अकबर नहीं आया, मेरा चचा नहीं आया, अरे जो गया वो वापस नहीं आया। हुसैन जुलझना से नीचे आए, घर में रेती पे लेटे, सकीना को सीने पे सुलाया, तसल्ली दे के कहा, सकीना आज से असगर मेरे पास और तुम भी अम्मा के पास रहना। हुसैन मैदान कारजार में आए, मैं कौन से मसाइब सुनूं, बस आखिरी चंद जुमले। जब मैदान में आए, ना जाने कैसी कैसी रजज और कैसे कैसे जुमले आपने फरमाए, जालिमों ने ना एक कतरे आब दिया ना हुसैन की सुनी, चारों तरफ से घेर लिया, तीर वाले तरवार वाले ने

वाले जिनके पास कुछ नहीं था, पत्थरों को जमा करके अब जब सबने मिलके हमला किया, हुसैन कभी दाएं कभी बाएं, अरे इतने तीर थे कि बाबे जमाना फरमाते हैं सलाम है जद्दे मजलूम पर कि जिसका लाशा ना जीन पे था ना जमीन पे था। अजादारा ने मजलूम करबला तीरों पे गिरते हुए रह गए। जालिम यदि जालिम शिमर ने बड़ी जसारत की, इधर के तीर उधर हो गए और अजादारों इन्हें कुछ नहीं, सरे हुसैन की ज़रूरत है। वो वक्त भी आया कि जनाब जैनब तिले जैनब यहाँ पे आ गई। जितने जायरीन हैं थोड़ा तसव्वुर करे, बहन आ गई, भाई सामने है, शिमरे लई पलट रहा है पेशानी की तरफ और वो कंजर के जो तेज था जमीन पे पत्थर पे मार के सख्त कर रहा था ताकि हुसैन एक वार में जिबाना हो। आजादारा ने मजलूम करबला कुंद खंजर से हुसैन को कई वार में पसे गर्दन से जिबा किया। आदाब जिबा में यह है कि सर को जुदा ना करो जानवर से, मगर हुसैन के सर को तन से जुदा कर रहा था। ये एक सदा थी जनाब ज़ैनब की, आवाज दी उम्र साथ तू खड़ा देख रहा है मेरा माजा यहाँ जिबा हो रहा है। हो गई मजलिस आखिरी जुमले। अजादारो वो वक्त भी आया कि जुलजना ने पेशानी पे खून रंगीन किया और जब जुलजना खैमे के तरफ गया ज़ैनब जनाबे सकीना की निगाह पड़ी, दौड़ते हुए आके फिर लिपट गई। जुलजना मैंने कहा था मेरे बाबा गुना ले जा, वाह हुसैन।

ऐ मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का।

पॉइंट ऑफ व्यू के शशि जी मंगले हवन ई गाना और ई गाना शशि जी अपन भाई अरविंद के नाम कर ले हवन रविन के नाम और सुदेश के नाम पूर्णिमा फकीरा जी के गावली गाना सुनत हो।

स्वास्थ्य जिकर अच्छा बा सच में उकरा सबसे बड़ा धन प्राप्त हो गलबा 10:20 होलबा अपन स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान रखा जा अपन स्वास्थ्य पर बहुत बहुत प्रिकॉशन के साथ अपन सब कार्य करिया जा साहिल जगारू जी के गावाली गाना हा और विवेक जी गाना मंगल है पत्नी रेणुका के नाम

चटनी चटनी रानी पूर्णिमा जी मंगले हवानी गाना पोंपले भूसे पूर्णिमा जी गाना मंगले हवन अपन तीनों गोतनी खातिर सबके चटनी पीसे के खुशी रह जा मतलब चटनी खाए के खुशी रह जा अब खाए के खुशी रह जा तब पीसे के तपर भी करी ना। हाँ तो चला हमने गाना पूर्णिमा जी बगल से उनकर गोतनी सुनीता जी और उनकर गोतनी रेणुका जी खातिर बजाओ थे जा ई गाना सुखदेव राम खिलावन जी गए हवन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में अभी जनगाना हमने सुनवाओ अब जाओ फरमाइश है राजन लक्ष्मण जी के। राजन लक्ष्मण जी मंगले हवन महेन हरपाल जी के गावल गाना और गाना लाफलोगा से राजन लक्ष्मण जी अपन पत्नी माला खातिर, बेटी प्रगति प्रार्थना खातिर, बहिन मानती भगिनी उर्मिला तुलसी और पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर मंगले हवन। चल सुनी जामनी सीता जब मांगे अयोध्या के राय।

विशेष गणपत जी के गावल सेल्फी जरा हमने सुनी जा, रोज रोज के तो सेल्फी करी ला जा, आज झलक सेल्फी सुनी जा। हमने विशेष गणपत जी के गावल ही गाना हमने बजाओ थे जा, अनूप जी खातिर सुखी नाम से अनूप जी गाना मंगले हुआ अपन पत्नी विद्या के नाम।

विनोद शिवदत्त जी के गाना तो ढेर कोई पसंद करे लंजा चरा सुरेश जी के पसंद के गाना ई गनवा सुनी राजा सुरेश जी पसंद कर ले हवन मौसे मौसे तो ऐसे ई गाना अपन पत्नी के नाम कर ले हवन ई गीत माया जी के नाम

चला ही प्रेम कहानी सुनी जा कबूतर कबूतरी के ही गाना हर शशिश सहादेव जी के गावल और ही विनोद जी गाना के फरमाइश कर ले हवन विनोद जी ये गाना मंगले हवन घोंगुब से और मंगले हवन अपन भाई दयानंद खातिर।

आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावली गीत है और ये गीत मंगले हवन विद्यानंद जी अपन बेटी श्रद्धा के नाम करत हवनी गाना जिनकरा अभी थोड़ा दिन होल बा लिसेंस मिलल बा यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलल बा आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावली गीत

सफर सुहाना लगा था तो हम लोग के ही उम्मीद करे थे जहाँ हमनी के भोजपुरी के गीत चला था और इस सफर में साथ ही भोजपुरी संगीत देवता तो हम लोग के बस आगे बढ़ते चली जा चलते चली जा और इस सुहाना सफर बना दिला जाए इस सफर के इस सफर में हमनी के साथ देवा था वन राघव जी हमने से गाना मंगले हवन प्लान डी पापा से चला सुनी जा आशीष रामफल जी की आवाज़

और अंतिम गाना ही हमने के कार्यक्रम के हसदेश बोझ जी के कवल मुर्गा मुर्गी की कहानी। उम्मीद करे थे जा हमने के श्रोतालो के चुनल चुनल गाना तो लगे पसंद परल हो और उम्मीद भी करे थे जा कि तोहलोग के इस समय बहुत प्यार से गुजरल हो। अभी अभी हमने सुनब जा सुहाना सफर सुनहरे पल कार्यक्रम, सुनहरे पल कार्यक्रम की निशा से सुनिया जा पुराना पुराना गीत के कार्यक्रम रही। जरूर साथ दिया जा रात के 12 बजे लेकिन अभी हमने की मुलाकात समाप्त हो जाए। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त यानी कि गिनिशा, लेकर आ गई हूँ यादों से भरा एक खूबसूरत सफर सुनहरे पल में। हम साथ मिलकर सुनेंगे वो पुराने बॉलीवुड गीत जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की कहानियां हैं। तो बस आप आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और चलिए लौट चलते हैं उन हसीन लम्हों की तरफ सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

कभी कभी एक पुराना गाना सुनते ही पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है। बचपन की वो यादें, पहला प्यार, दोस्तों के साथ बिताए हुए पल। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं लम्हों को फिर से महसूस करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि आने वाले हैं हर गीत के साथ जुड़ी है एक प्यारी सी कहानी जो खासकर आप लोगों के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे।

रेडियो मॉरिशस के प्यारे श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि पुराने गीतों का जादू आज भी दिल को छू लेता है तो ये महफिल सिर्फ आपके लिए है। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर गीत, वो अमर नगमे जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल, आइए मिलकर संगीत भरी शाम को यादगार बनाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस सफर में ऐसे ऐसे गीत हम पेश कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। वो गीत जो हर खुशी में साथ रहे, हर गम में सहारा बने। सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है, लेकिन अगला गाना जो हम पेश करने वाला है ना, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और वो भी दिल से। हम आपका साथ देंगे रात के 12 बजे तक। सिर्फ यादों और संगीत की दुनिया में खो जाइए हमारे साथ।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। हर गीत एक एहसास है, हर धुन हमेशा एक कहानी सुनाती है और हर सुर में छुपा है एक अनमोल लम्हा। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के बेहतरीन गीत जो आपके दिल को सुकून देंगे और चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। मैं हूँ निशा जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं।

खूबसूरत गाने तराने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुनाते सुनाते. फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू. बिल्कुल जी, आप हमें इजाजत दीजिए ताकि दोबारा फिर से लौट के आप आए आपके लिए एक और खूबसूरत सुनहरे पल के शो में. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर और अपना ख्याल रखना जी.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।

तो सोच भी नहीं सकती थी कि बिन माँ बाप के बच्चे मेरे मरे हुए माँ बाप का मजाक उड़ा सकते हैं। ये सब आप लोगों ने इसलिए किया ना कि मैं चली जाऊं। I'm going। आप जैसे लोगों के लिए नौकरी करने से तो अच्छा है मैं अनाथ आश्रम में उन बच्चों की देखभाल करूं जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि उनके खुद के दिल टूटे हुए होते हैं। बाय।